107.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। आज दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, शक संवत 1948, तदानुसार 20 जून सन 2026 है। प्रातः के 5:55 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

में राम क्षण क्षण में श्याम, हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो प्रभु।

नमस्कार श्रोताओं, एक नई सुबह, नई किरण और नई आशाओं के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। घड़ी की सुइयां बता रही है कि सुबह के 6:01 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर अपना मनपसंद कार्यक्रम पुष्पांजलि। इस पावन प्रभात की वेला में अपनी आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ हम मंगल मूर्ति विघ्न विनाशक भगवान गणेश के चरणों में सादर वंदना के साथ करते हैं। आइए उनके पावन स्मरण से अपने अंतःकरण को अलौकित करें ताकि जीवन का प्रत्येक मार्ग निर्विघ्न और कल्याणकारी हो।

श्रोताओं, सुबह का ये समय केवल जागने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को जानने के लिए है। पुष्पांजलि की ये सुर आपको उस सत्य से अवगत कराएंगे जो शाश्वत है, जो मर्यादा के साक्षात प्रतिमान हैं, जिनकी कृपा मात्र से मन के सारे संताप मिट जाते हैं। ऐसे करुणा के सागर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में आइए अगला भजन सुनें।

कहते हैं जहां शब्द कम पड़ जाते हैं वहां प्रार्थना काम आती है। जब दिल से कोई पुकार निकलती है तो वो सीधे उस असीम सत्ता तक पहुंचती है। सुरों के इसी पावन सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आइए एक बार फिर अपने मन को प्रभु की भक्ति के रंग में सराबोर करते हैं और सुनते हैं अगली प्रस्तुति।

श्रोताओं, 6:37 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि मेरे यानी तरुश्री के साथ। श्रोताओं, जो कर्मों के विधाता हैं और जो हर जीव को न्याय की राह दिखाते हैं, उन सूर्य पुत्र शनिदेव की कृपा, उनकी कृपा दृष्टि जिस पर हो जाए, उसके जीवन के सारे कष्ट और अंधकार दूर हो जाते हैं। आइए इस पावन वेला में नीलांजन समभासम परम शांत स्वरूप शनि महाराज के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए ये पावन भजन सुनते हैं।

श्रोताओं, जहां जहां श्री राम का नाम लिया जाता है वहां पवन पुत्र हनुमान अदृश्य रूप से साक्षात विराजमान रहते हैं। हनुमान जी की भक्ति का वो पावन शिखर है वो, जहां सेवक और स्वामी के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। आइए राम काज में सदैव तत्पर रहने वाले और प्रभु श्री राम के हृदय में बसने वाले संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में वंदन करते हैं।

कहते हैं कि हनुमान जी को पाना है तो राम नाम की ओट ले लो, और अगर श्री राम तक पहुंचना है तो हनुमान जी की शरण में चले जाओ। जिनके रोम रोम में सियाराम बसते हैं और जो प्रभु महिमा के साक्षात प्रतीक हैं, आइए एक और सुरीली भजन के साथ उनका नमन करें।

और श्रोताओं इसी मधुर भजन के साथ पुष्पांजलि की यात्रा यहीं तक। 7 बजे आप हिंदी में समाचार सुनेंगे और उसके बाद मैं लौटूंगी प्रोग्राम लेकर सदाबहार गीत। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, सुबह के 7 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है। इस आयोजन के अंतर्गत प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में रुदौली विधानसभा क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय समेत 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत और विकास के विजन को साकार करने की दिशा में डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने एसआईटी जांच बिठाई है। एसआईटी की जांच से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल बिहार के छपरा जंक्शन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वांचल को सौगात देते हुए धौरीघाट औड़ीहाट ट्रेन सेवा का वाराणसी सिटी तक विस्तार और मऊ आनंद विहार नियमित एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मऊ के रास्ते संचालित होने वाली छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी जो दिल्ली से लखनऊ और वाराणसी होते हुए पटना और सिलीगुड़ी तक

जाएगी। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विभिन्न देशों को मशीनरी, परिधान, चमड़े के सामान, गलीचा और बहुमूल्य रत्नों का निर्यात कर रहा है। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: साथ हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।
5: सुबह मुस्कुराती हुई गुनगुनाती हुई,
6: हौले से जिंदगी को छूती हुई जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
5: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

नमस्कार, आदाब और एक बेहद खूबसूरत सुबह की शुरुआत। जी हाँ, 7:05 का वक्त और प्रोग्राम सदाबहार गीत का आगाज हो गया है। और सदाबहार गीत में जैसे कि हम इंतजार करते हैं उन रूहानी पलों का जो आप और हमें जोड़े रखे हैं कुछ ऐसे ही रूहानी एहसासों से, और कैसे इन सदाबहार नगमों से।

जी हाँ दोस्तों, बस ऐसे ही गीतों से नूर आ जाता है और आपके रहने से, हमारे और आपके साथ से ऐसे ही नूर बना रहता है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार गीत मेरे यानी तरुश्री के साथ, और हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें मेल भेजिए fmakashwani@lucknow.com पर। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। सदाबहार गीत प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और साथ ही आप अपने मेल्स इसलिए भेजिए मुझे ताकि मुझे पता चले कि क्या आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं या फिर आप किस तरह के गाने और सुनना पसंद करेंगे। सुबह सुबह की इस खूबसूरत सी शुरुआत के लिए, आज वीकेंड है, सैटरडे है, और हो सकता है थोड़ा सा आप आराम तलब हो, लेकिन इसी आराम के साथ अगर इन गुनगुनाती सुबह मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा है। तो इसलिए ये गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेरी तरफ से।

दोस्तों, अभी जो हमने सुना, ये सुनकर ऐसा लगता है ना जैसे उसी फिर से उस दौर में पहुंच गए। कितना खुशनुमा वो पल, वो एहसास होता है जब हमारे लिए कोई एक खूबसूरत सा गीत गा दे, हमारे लिए जब कोई ये मेहनत करे, ये कोई शिद्दत से कोशिश करे कि हम खुश हैं। और दोस्तों, कहते हैं ना कि वक्त की धूल से आईने धुंधले हो सकते हैं पर यादें नहीं। और इसी शोर शराबे वाले दौर

में ये जो पुराने गीत हैं, ये जो पुराने गाने हैं, ये महज संगीत नहीं है, बल्कि ये वो टाइम मशीन है जो हमें सीधा हमारे बचपन के आंगन में, हमारी पहली मोहब्बत के उस एहसास के पास, या फिर वो अधूरी चिट्ठी हो या स्कूल सी उस पुरानी गली में ले जाते हैं जहाँ पर शोर नहीं, सुकून है, वो एहसास है। तो आइए एक और प्यारा सा गाना आपके लिए।

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

दोस्तों 7:29 का वक्त हो रहा है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार गीत मेरे यानी तरुश्री के साथ। और कहते हैं जमाना नया है, नई रंजिशें हैं, मगर यादें वही पुरानी अपनी सी लगती हैं, है ना। और इन्हीं यादों को समेटे हुए है ये पूरा प्रोग्राम सदाबहार गीत, क्योंकि ये नगमे जो हैं वो हमें उन्हीं एहसासों से रूबरू कराते हैं। और एहसासों की बात करें तो आप सबके मेल्स मुझ तक पहुँच रहे हैं और भी मैं मेल्स इंतज़ार कर रही हूँ आपके मेल्स का। बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो रेगुलर हमें मेल करते हैं और रेगुलर अपनी बातें, अपने विचार हमसे शेयर करते हैं। तो एक बार फिर से मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगी कि आप हमें मेल भेजिए fmakashwani@gmail.com पर। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। 7:29, 7:30 प्रोग्राम सदाबहार गीत।

दोस्तों बहुत सारे मेल्स मुझ तक पहुंच गए हैं, कुछ मेल्स मैं शामिल कर लेती हूं और निधि चौरसिया जी का मेल शामिल करती हूं। लिखती हैं, गुड मॉर्निंग, और आपको भी बहुत प्यार भरा गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। 6 बजे से आज प्रोग्राम सुन रही हूं, मॉर्निंग अच्छी हुई उसके लिए थैंक यू। मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है ये, और आपको भी बहुत प्यारा सा थैंक यू क्योंकि आपने मेरी सुबह बना दी। सदाबहार गीत तो हमेशा से ही बाहर लेकर आता है, और किसी भी टाइम, जैसे कि आज गीतों ने दिन बना दिया। सॉन्ग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच निधि आपके इस मेल के लिए। मुनीश कुमार जी हमें मेल भेज रहे हैं और लिख रहे हैं, बहुत ही हिट गाने बजा रही हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, पुराने गाने सुनकर वो बचपन लौट आया जब रेडियो पर गाने सुनते सुनते पढ़ाई किया करते थे। आपकी आवाज़ में वो मिठास है जो सीधे दिल को छू जाती है। ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह गानों ने दिन बना दिया, थैंक यू सो मच आपके इस खूबसूरत से मेल के लिए मुनीश जी। घनश्याम सिंह जी भी हमें मेल कर रहे हैं, और ये हमें फैज़ाबाद रोड लखनऊ से मेल कर रहे हैं और लिखते हैं कि मेरे घर में बहुत बड़ा जामुन का पेड़ है, बहुत मीठे मीठे पके हुए

जामुन गिर रहे हैं और मोहल्ले में मिलकर मिलनसार घरों में दो दो किलोग्राम बांट रहा हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा आपका मेल पढ़कर। और सच में ये जो हमारे अंदर का व्यक्तित्व है ना, ये जो हमारे अंदर का इंसान है, और सच में ये हमारे इंडिया में ही है कि जो मोहल्लेदारी होती है वो इसी तरह निभाई जाती है। आपके यहाँ कुछ ज़्यादा बन गया, आपने कुछ नई डिश बनाई, आपने पड़ोस में भेज दी, पड़ोस में यहाँ कुछ नया अच्छा बना तो वो उन्होंने आपके यहाँ भेज दिया। बस इसी तरह से तो ये जो मिठास बनी हुई होती है इस रिश्तों में, इसी को तो कहते हैं हम मोहल्लेदारी, है ना। बहुत अच्छा लगता है आपके मेल पढ़कर घनश्याम सिंह जी, थैंक यू सो मच। सुधांशु जी भी हमसे जुड़े हुए हैं और इन्होंने हमें बख्शी का तालाब लखनऊ से मेल भेजा है। पुष्पांजलि बहुत अच्छा लगा, भजन बहुत ही अच्छे बजाए और कार्यक्रम सदाबहार गीत बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक यू सो मच सुधांशु, आपने ये मेल हमें भेजा। और जैसा कि मैं हमेशा अपने श्रोताओं से कहती हूँ, आप भी अपने मेल्स, अपने बातें हमें लिख सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। प्रोग्राम चल रहा है सदाबहार गीत, मेरे यानी तरुश्री के साथ बने रहिए हमारे साथ।

जी 7:47 का वक्त, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत, आपके दोस्त तरुश्री आपके साथ है, ओनली ऑन एफएम रेनबो 100.7। और दोस्तों कुछ और मेल्स भी आ गए हैं, शामिल कर लेते हैं उन्हें, नहीं तो फिर नाराजगी बनती है। पवन कुमार जी ने मेल भेजा है और लिखते हैं, ये मैं सिधौली सीतापुर से सीधे, और लिखते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, भजन बहुत बढ़िया बजे और ये सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे बज रहे हैं, थैंक यू सो मच। वारिस अली जी ने भी हमें मेल भेज दिया है और हमेशा की तरह कुछ पंक्तियाँ लिख के भेजी हैं, तो हम पढ़ देते हैं। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगन को नारायण मिल जाए। ये तो बिल्कुल सही कहा पुष्पांजलि, बड़ी अच्छी लगी। और उन्होंने कहा, जहाँ भजन है वहाँ भाव है, और जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। और सदाबहार गीत सुन रहे हैं, गीतों का आनंद ले रहे हैं, और अच्छा लगा इन्हें हमारा अंदाज़, तो हमें आपकी मेल करने का अंदाज़ भी अच्छा लगता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप हमसे जुड़े हैं। और भाई अपना काम वाम छोड़ छाड़ के नहीं जुड़िएगा, वैसे भी रेडियो की सबसे अच्छी बात क्या है, आप तो हमसे जुड़े रह सकते हैं हमेशा अपने काम के दौरान, तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: सात रंग का इंद्रधनुष है,
2: सात सुरों की सरगम है,
0: सात जन्म है सात समंदर,
1: साथ हमारा हरदम है,
0: जिंदगी के सतरंगी रंग
2: एफएम रेनबो के संग।
3: दोस्तों देखिए, अच्छी बातें और अच्छे गानों का सिलसिला जब होता है ना, तो समय का पता नहीं चलता। बातें करते करते कैसे ऐसे समय बीत गया पता नहीं चला। 7:55 का वक्त हो रहा है और अब इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम आ गया है, लेकिन कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, ना आपको छोड़कर जाने का मन कर रहा है और ना ही ये गीतों का सिलसिला रोकने का मन कर रहा है। इसी तरह का कुछ हमारा गाना भी है जो आपको चलते चलते मैं सुनाऊंगी, लेकिन आपको बता दूं कि 8 बजे आप हिंदी में समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, और उसके बाद मैं फिर लेकर आऊँगी 8:15 पर गुड मॉर्निंग लखनऊ एक और दोस्त के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए क्या एफएम रेनबो, और ये खूबसूरत गीत ना जा कहीं अब ना जा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो नीरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन।

स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो नीरोग। करो योग, रहो नीरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो नीरोग। करो योग, रहो नीरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
4: पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष।

0: अध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रिज रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दास गुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं था चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: We have been able to achieve that in the first.
5: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे

0: एडवांस चिप्स हैं, इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं, और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
1: दे आर ऑल डिजाइन्ड इन इंडिया नाउ।
2: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल एक से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाह का, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
4: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से PM किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और SEBI ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल,
2: सांस्कृतिक गतिविधियां और सेहत का ख्याल,
0: अखबारों की सुर्खियां और देश दुनिया के समाचार,
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान। द कंप्लीट ब्रेकफास्ट।

0: मॉर्निंग लखनऊ ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है।
2: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, कितनी अच्छी लाइन से शुरुआत की तनुश्री ने। और हम भी यही कहना चाहेंगे कि भाई थोड़ा सा उठिए और उठने के बाद धन्यवाद कीजिए ऊपर वाले का, धन्यवाद करने के बाद मुस्कुराइए और उम्मीदों भरे एक नए दिन की शुरुआत करिए बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ। और अपनों के साथ मिलकर अगर आपका वीकेंड में कुछ प्लान है तो वो भी इंजॉय करिए। इन सब बातों के साथ आपके दो दोस्त यानी कि तनुश्री और रत्ना शुक्ला आपके बीच में आ चुके हैं, लेकर आपसे कहते हैं
3: गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।
2: आज का मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र।
3: जी हाँ दोस्तों, अब देते हैं दिन को एक पॉजिटिव नोट और उसकी शुरुआत करते हैं एक अच्छे से मंत्रा के साथ। तो आज का मंत्रा क्या बोलता है रत्ना?
4: मंत्रा कुछ बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही पॉजिटिव सा है कि अगर आप कहीं फेल होते हैं, कहीं किसी भी जगह पे फेल होते हैं, तो कभी भी हिम्मत ना हारें, क्योंकि फेल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ऐसा कहा गया है, एक फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है, यानी सीखने का पहला प्रयास।
3: बिल्कुल सही कहा। और अगर कहा है कि दिन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा तो उदास रहने की क्या जरूरत है, क्योंकि आज बेहतर कर पाने के लिए बेहतरीन कल होना चाहिए। तो इसके लिए आप जो फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं उसमें अगर फेल भी हो गए तो क्या बात है, आपने कुछ सीखा ही तो है, है ना? तो इसी सीखने वाले प्रयास को जारी रखिए
4: और कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी।
3: बिल्कुल, क्योंकि हौले हौले से ना ये सारी शुरुआत होती है और फिर आप आगे बढ़ते हैं।
4: राइट।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: हाँ जी दोस्तों, 8:29 का वक्त हो गया है और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज का दिन जो है वो खास क्यों है
3: जी, है ना। कई मामलों में कई दिन अलग अलग तरीके से खास हो सकता है, लेकिन आज हम कौन सा दिवस मना रहे हैं उस बारे में आपको सबसे पहले बता देते हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, यह है विश्व शरणार्थी दिवस। आज के दिन दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस जो आज मनाया जा रहा है, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया। ये दिन उन लाखों लोगों के साहस और शक्ति को सलाम करने का दिन है जिन्हें युद्ध या उत्पीड़न के कारण अपना घर बार छोड़कर किसी दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी। ये दिन हमें याद दिलाता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है।
2: जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आज का दिन हम मना रहे हैं और साथ ही साथ आज एक और महत्वपूर्ण दिन है, वो है वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी डे। जी हाँ, आज है विश्व उत्पादकता दिवस। तो आज का दिन क्यों हम ये इस पे बात कर रहे हैं, वो ये इसलिए ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम अपने समय, एनर्जी और जो संसाधन यानी रिसोर्सेज हैं उनका सही और स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कैसे करें। तो आज के दिन में आलस को वैसे तो बाय बाय कहना चाहिए, लेकिन आज है इत्तेफाकन वीकेंड तो आलस तो बनता है। लेकिन कहते हैं कि कभी भी जो प्रोडक्टिविटी है वो कई सारे मायनों में हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारे पास जो संसाधन है उस पर बहुत तेज़ी से डिपेंड करता है। तो इसीलिए आज का दिन जो है वो सुपर प्रोडक्टिव हो और हर दिन आपका सुपर प्रोडक्टिव हो, इसके लिए आपको सोचना है, समझना है कि आपके पास जो संसाधन है उसका सही तरीके से, स्मार्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है।
3: बिल्कुल, अपने वर्क प्लेस को खासतौर से आप एनर्जेटिक और थोड़ा सा हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ सजा बजा के रखिए और उसके साथ पॉजिटिविटी के साथ जुड़े रहिए। बस यही है, इन्हीं बातों के साथ हम सबसे कहेंगे हैप्पी वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी डे।

0: सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा।
2: हाँ जी दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मुद्दे की। और आज का मुद्दा जो है ना, वो आज की प्रोडक्टिविटी डे हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ है आज का मुद्दा, क्योंकि ये बहुत मायनों में बहुत अहम बात है और हम अक्सर ये चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं और आलस में हमारा समय चला जाता है।
3: बिल्कुल।
2: या फिर कोई डिस्ट्रैक्शन है ना, और डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारी प्रोडक्टिविटी पर। तो आज का मुद्दा यही है कि क्या ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जो आपकी प्रोडक्टिविटी को डिस्टर्ब करती है या डिस्ट्रैक्ट करती है।
3: जी, पूरी तरह से अगर बात करते हैं प्रैक्टिकली, तो सुबह उठने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ है, ये कौन सा ऐसा आदत है जो आपके पूरे दिन को सुपर फास्ट या सुपर प्रोडक्टिव बनाने में कहीं ना कहीं अटकल लगाती है, थोड़ी सी कहीं से आपको रोकती है या थोड़ा बहुत आप अलसा जाते हैं। ऐसे कई चीज़ें हो सकती हैं कि आपका ध्यान थोड़ा सा भटक गया, सोशल मीडिया की तरफ आप थोड़ा सा रुक कर लिया, आपने कहीं गॉसिप करने बैठ गए, या फिर कुछ नोटिफिकेशन के वजह से आप थोड़ा लेट हो गए, या कुछ रील्स वगैरह या कुछ भी आप ऐसा कुछ करने लगे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है आप बहुत अच्छी तरह से फाइन तरीके से कर सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी देर हो जाती है, आलस हो जाती है, या फिर वो कहीं ना कहीं डिम डिम डिम डिम हो जाता है। तो ये सब बातें हैं, तो इनमें आप क्या बताना चाहते हैं, आप हमें मेल करके बता सकते हैं आज के इस मुद्दे पर कि आपके क्या व्यूज हैं।
2: बिल्कुल, और खासकर ये भी बता सकते हैं वर्क प्लेस में प्रोडक्टिविटी बहुत मैटर करती है ना। और रत्ना, जैसे कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों की नेचर की वजह से हम लोग प्रोडक्टिविटी हमारी स्लो हो जाती है, क्यों, क्योंकि हम उनसे कतराते हैं या कोशिश करते हैं कि हम उनसे बात ना करें या उनको अवॉइड करें, तो उससे भी बहुत प्रोडक्टिविटी में फ़र्क पड़ता है ना।
3: बिल्कुल पड़ता है, और कहीं कहीं ना कहीं आपको वर्क प्लेस पे सब कुछ पीछे छोड़ के कूल माइंड के साथ अपनी एनर्जी के साथ उस चीज़ को करना चाहिए जो आपके वर्क प्लेस पे आप करने के लिए आए हैं।
2: जी, तो देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी कई मायनों में है मैटर करती है, चाहे वर्क प्लेस हो चाहे आपका घर हो, और घर में भी प्रोडक्टिविटी बहुत मायने रखती है। अगर बोला जाए घर में होता ही क्या है, बाहर वाले बहुत मेहनत करते, घर वाले करते ही क्या है।

0: आप एक बारी जरा पूरा पूरा दिन आप देखिए, अगर हम किसी महिला की बात करें तो वो महिला जानती है कि उसका सुबह उठते ही दिनचर्या कैसे स्टार्ट होती है। अब तो ये कहा जाने लगा है कि जिस तरह से वो काम करती है ओवर द क्लॉक 24/7 मुझे कहना चाहिए,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना, उनका लिमिटेड सोने का जो समय है ना उसमें भी उनकी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है,
1: रहती है, माइंड में बहुत सारी चीजें चलती हैं और बेड छोड़ने के पहले भी माइंड में लगता है कि आज की डेट में हमको ये हमने क्यों कर रखा है, इन सारे कामों को अंजाम देना है और बहुत ही बेहतर ढंग से देना है, ये सब चीजें हमारे माइंड में चलती रहती हैं। तो आपके साथ क्या होता है आप हमें बता सकते हैं मेल करके fmakashwani@gmail.com पर।
0: जी हाँ, तो फटाफट फोन उठाइए, मेल भेजिए, हम इंतजार कर रहे हैं, तब तक ये गाना एंजॉय कीजिए। See you.

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत।
1: गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
2: हाँ जी, तो चलिए बता देते हैं, कल है संडे और संडे को हमेशा हमारे पास बड़े स्पेशल प्रोग्राम रहते हैं हमारे पूरे दिन के लिए। तो क्या क्या है कल का स्पेशल?
3: सिर्फ अपने श्रोताओं के लिए हम बहुत कुछ सजा कर लाते हैं, हम बहुत कुछ तैयारी करके लाते हैं। तो कल के बारे में अगर बात करते हैं तो संडे के दिन 21 जून 2026 की बात करते हैं। सुबह 10 बजे, प्रातः 10 बजे आकाशवाणी लखनऊ FM रेनबो 100.7 MHz पर, और या फिर आप न्यूज़ ऑन AIRF पर भी सुन सकते हैं, DTH पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी का जो कार्यक्रम है FM रेनबो पर, कार्यक्रम होगा आज के मेहमान। सुबह 10 बजे की बात हम कर रहे हैं और आज के मेहमान में हमारे साथ होंगे श्री रंजन कुमार, प्रमुख सचिव आयुष विभाग उत्तर प्रदेश। और आपसे जो भेंटवार्ता आपके बीच में प्रस्तुत की जाएगी, ये भेंटवार्ता करेंगे सुभाष खन्ना जी। तो सुनना मत भूलिएगा कार्यक्रम आज के मेहमान, प्रातः 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर।
2: जी हाँ, और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और 12 बजे से हमेशा आपको इंतजार रहता है कि कुछ ना कुछ आपको खास सुनने को मिलेगा। आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम है हेल्थ एंड फिटनेस, 12 बजे से आप सुनते हैं। और ये विशेष कार्यक्रम कल, जैसा कि आप जानते हैं, योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस में आप सुनेंगे। हमारे साथ होंगे श्री कृष्ण दत्त मिश्रा जी, जो कि योगाचार्य हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से। तो ये हमसे जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में और आप ये स्पेशल प्रोग्राम सुन सकते हैं 12 बजे से। तो आप इसमें जुड़ना ना भूलिए और खासकर ये जो योग दिवस है इसमें आपको बहुत अच्छी जानकारियां सुनने को मिलेंगी, तो ये प्रोग्राम बिल्कुल मत मिस करिएगा। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ की, और आज हम प्रोडक्टिविटी डे मना रहे हैं और आज हम अच्छे से प्रोडक्टिविटी डे अगर हम समझ गए ना, तो कल तो योग दिवस है, हम तो योग दिवस में भी 4 चांद लगा देंगे। तो हम लोग अभी जो बातें अभी यही डिस्कस कर रहे थे, कल का दिन बड़ा स्पेशल होने वाला है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डे हैं कल। वो तो आपको कल के गुड मॉर्निंग लखनऊ में तो बड़ा विशेष तरीके से सजा हुआ कार्यक्रम सुनने को मिलेगा ही,
3: और इन दिनों योग सप्ताह भी चल रहा है तो उसमें भी बहुत से कार्यक्रम कई जगह आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें खास तौर से कल जो प्रेजेंटेशन होने वाला है, बहुत से कार्यक्रम होने वाले हैं उनकी तो बात आपको कल पता चलेगी, जैसे कि तरुश्री कह रही हैं। और इसके साथ साथ आज के मुद्दे की बात हम जो कर रहे थे,
2: प्रोडक्टिविटी डे,
3: तो प्रोडक्टिविटी डे पे हमने जो आपसे मुद्दा दिया कि आपकी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको प्रोडक्टिविटी को रोकती हैं, उस बारे में आप हमें बता सकते हैं। तो आपके कुछ व्यूज हम तक आ गए हैं और आपके मेल बहुत सारे आ गए हैं, तो उनको हम शामिल करते हैं।
2: हाँ, अभी शामिल करेंगे, पहले एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम शामिल करते हैं, तब तक और भी मेल्स आ जाते हैं, है ना
3: जी।
2: तो हम लोग बिल्कुल शामिल करते हैं, चलिए तब तक एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा ट्रैक आपके लिए।

0: चलिए दोस्तों अब शामिल करते हैं मेल्स जैसा कि वादा था.
1: बिल्कुल शामिल करेंगे. बहुत सारे एक नए कई सारे मेल आ गए हमारे बीच में. मोहम्मद आसिफ जी का मेल हम शामिल करते हैं और इन्होंने लिखा है, मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहा हूँ. सॉन्ग बहुत अच्छे अच्छे बजे और गुड मॉर्निंग हम दोनों को कहा. आसिफ जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए.
0: और अगले मेल पर बढ़ते हैं. अरविंद यादव जी का मेल आया है. इन्होंने बस खाली हमें ये भेजा है कि कहाँ से इन्होंने मेल किया है. ये नगवा गोविंदपुर जैतीपुर डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से मेल कर रहे हैं. जब कोई जल्दी उठने को बोल दे तो आगे मेरे ख्याल से मेल लिखना भूल गए. तो कोई बात नहीं, आगे का मेल मैं इंतज़ार कर रही हूँ. अरविंद जी मुझे भेजिए आप.
1: बिल्कुल. और मोनू सेठ जी भी ईमेल के जरिए हमसे जुड़ गए. लिखते हैं, काट दिए जंगल सभी कंक्रीट हर छोरा, दूषित कर पर्यावरण हम विकास की ओर. इस खराब जगह पर कोई पक्षी नहीं गा रहा है, बढ़ता लालच कर देगा इस धरती को सुनसान. पर्यावरण बिगाड़ते वो सब है बेपरवाह. ये मुद्दे से थोड़ा अलग है लिखा है,
0: लेकिन फिर भी मैं मुझे लगता है कि आपने जो मेल भेजा वो अच्छा एक संदेश था.
1: बिल्कुल.
0: और आगे बढ़ते हैं. घनश्याम सिंह जी का मेल शामिल करते हैं और लिखते हैं, रत्ना शुक्ला जी और तरुश्री को सच्चे हृदय से प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद. और लिखते हैं कि ये शायद हाँ सदाबहार गीत की बात इन्होंने की, तो उनके मनपसंद गाने हमने बजाए, बहुत अच्छा लगा. और लिखते हैं कि सीसी कैब प्रोडक्ट करता हूँ, उससे पहले लखनऊ प्रोडक्शन, अच्छा प्रोडक्शन की बात ये कर रहे हैं, इनका इनके काम के सिलसिले की ये बात कर रहे हैं. तो मेरे हिसाब से मैं हम लोग ना आपके आय या आपकी जो प्रोडक्टिविटी है लाइक ये आपके काम की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं, हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि आपके काम करने की स्टाइल को.

0: या कहते हैं ना कि आपने कुछ सोचा कि आज आपको ये काम करने हैं और किस किन कारणों की वजह से. फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देती हूँ, एग्जाम्पल देके हो सकता है कि हमारे बहुत सारे श्रोता जो है वो नहीं समझ पाए,
1: नहीं समझ पाए उनको किस तरह से रिलेट करना वो हम बता दिया.
0: हाँ, तो जैसे कि एग्जाम्पल ये है कि आज आपने आपको एक कोई डॉक्यूमेंट रेडी करना है, मान लीजिए एक, मगर मैं वर्क प्लेस की बात करूँ या काम के सिलसिले में बात करती हूँ, कि आज आपको एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है. आपने बहुत सोचा समझा, मान लीजिए हिसाब ही करना है आपको, तो हिसाब के लिए आपको बैठना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है, आपको अपनी चीज़ें टटोलनी पड़ती हैं कि कहाँ कहाँ खर्चा किया हमने, दिन का खर्चा या महीने का खर्चा, अगर आप हिसाब लगा रहे हैं कि आज आपको ये करना है, लेकिन आप फिर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बीच में, क्या ऐसा लग रहा है या मन नहीं लग रहा है या आलस आ रहा है. तो ये सब कारण हो सकते हैं कि आपका दिन का वो जो आपने काम सोचा ना वो नहीं हो पाया.
1: कुछ आपको अचानक से याद आ गया और आप थोड़ा सा हिसाब करते करते थोड़ा सा हट गए, उसके बाद भूल गए, फिर वो पेपर या वो फाइल या वो डायरी आपके किनारे रखी रह गई, या फिर उसके बाद आप जब उठे तो आप सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं लग गए.
0: जी, और बड़ा
1: छोटी छोटी चीजें.
0: बिल्कुल सही कहा रत्ना जी. और बड़ा ही छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं, घर की सफाई करनी थी आज आपको,
1: अच्छा,
0: लेकिन फिर क्या हुआ, बस एक बार मोबाइल उठाना शुरू किया, बस स्क्रॉलिंग होती गई, स्क्रॉलिंग होती गई, स्क्रॉलिंग होती गई, और समय पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गया. फिर ध्यान आया, अरे आज तो कमरा साफ करना था, ये तो फिर आज नहीं, चलो कल कर लेते हैं. तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ा
1: और कहीं ना कहीं वो आपकी जो काम था वो पिछड़ गया और आप आगे बढ़ गए, लेकिन किसी और चीज की वजह से आपका काम अफेक्टेड हो गया.
0: जी,
1: इन सब बातों पे हम आपके व्यूज जानना चाहते हैं जब आप हमें मेल कर रहे हैं fmakashwani@gmail.com पर. और गुड मॉर्निंग लखनऊ में अगला मेल हम शामिल करते हैं. प्रवीण जी का मेल आ गया है और लिखते हैं कि सुबह आंख खोलते ही ध्यान मोबाइल फोन की तरफ जाता है और फिर सुबह का पूरा समय उसी में चला जाता है. अस्त व्यस्त और साफ सफाई ना होने पर काम में मन भी नहीं लगता है. कार्य जब मन मुताबिक नहीं मिलता तो उस कार्य में 100% योगदान नहीं दे पाता हूँ.
0: बिल्कुल वही बात हम बात कर रहे हैं और इसी तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है. तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि हम किस तरह से अपना वर्क और प्रोडक्टिव बना सकते हैं. तो इसके लिए आपको मेल भेजना है fmakashwani@gmail.com पर. और इसी साथ ही आपको बता दें 8:55 हो गए हैं प्रोग्राम. अब ये जो आवर है ना गुड मॉर्निंग लखनऊ का 9 तक वाला, ये अब हम वाइंड अप करते हैं. लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी न्यूज ब्रेक के उस पार हम फिर से आ जाएंगे आपके पास.
1: बिल्कुल.
0: और बहुत सारी प्रोडक्टिविटी पे बातें होंगी और आज का जो गुड मॉर्निंग लखनऊ है वो कितना प्रोडक्टिव होने वाला है इसका तो कहने का हिसाब कुछ है नहीं.
1: बिल्कुल,
0: बहुत सारी बातें होनी है.

नमस्कार, 9 बजे हम सुनिए अखबारों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की प्रोत्साहन राशि वितरण की खबर को अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री के कथन पर लिखा है, अपनी रचनात्मकता से वैश्विक उम्मीदों पर खरे उतरेंगे भारत के युवा। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के बयान के आधार पर लिखा है, भारत ने 40 देशों से मुक्त व्यापार समझौते कर दरवाजे खोले। अमृत विचार ने प्रधानमंत्री के कथन के आधार पर लिखा है, सरकार युवा और उद्योग के साथ मिलने से बढ़ रहे रोजगार। वॉइस ऑफ लखनऊ ने प्रधानमंत्री के बयान के हवाले से लिखा है, अब तक सृजित हुई 70 लाख नौकरियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे और मंदिर चढ़ावा मामले में दिए गए उनके बयान को अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, 15 दिन प्रतीक्षा करने कोई नहीं बचेगा। अमर उजाला ने मुख्यमंत्री के कथन के आधार पर लिखा है, सच सामने आएगा, 500 साल किया इंतजार तो 15 दिन और करें। नवभारत टाइम्स ने मुख्यमंत्री के कथन के आधार पर लिखा है, अयोध्या को बदनाम कर रहा विपक्ष। अखबार ने इसी खबर पर दूसरी हेडलाइन लगाई है, चढ़ावा चोरी के आरोपों पर कहा SIT जांच से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री के कथन के आधार पर लिखा है, SIT करेगी दूध का दूध पानी का पानी। 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की खबरें भी अखबारों की सुर्खियां हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, टेलीग्राम बंद रहेगा, नीट के लिए नए निर्देश जारी। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कोर्ट ने टेलीग्राम पर बैन को सही ठहराया। दैनिक जागरण ने हाई कोर्ट की टिप्पणी के आधार पर लिखा है, टेलीग्राम पर प्रतिबंध उचित, ये सरकार का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि फुटपाथ पर चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इस खबर को भी अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट के कथन के आधार पर लिखा है, फुटपाथ पर चलना मौलिक हक, और दैनिक जागरण ने लिखा है, फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार। अमृत विचार ने लिखा है, फुटपाथ पर पैदल चलना नागरिक का मौलिक अधिकार। रेल मंत्रालय द्वारा बिना टिकट चलने पर जुर्माना बढ़ाने की खबर भी अखबारों की सुर्खियां हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, ट्रेन में बिना टिकट अब 2 गुना जुर्माना। दैनिक जागरण लिखता है, ट्रेन में बिना टिकट यात्रा पर अब देना होगा 2 गुना जुर्माना। इसी के साथ अखबारों की सुर्खियां समाप्त हुई। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: वेलकम बैक दोस्तों, 9:03 का वक्त और अब सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है गुड मॉर्निंग लखनऊ का। आपके साथ दो दोस्त आपके बने हुए हैं, मैं हूं तरुषी, मेरे साथ है
3: रत्ना शुक्ला और आप सब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो लोग लेट भी उठे ना तो उनको भी अब लग रहा होगा कि अरे भाई 100.7 एफएम रेनबो के प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बहुत कुछ अपडेट हमें इस प्रोग्राम से मिलती है और नाश्ते का जायका भी थोड़ा बढ़ जाता है
2: जी। और आज है वीकेंड, आज है सैटरडे, तो सैटरडे को वैसे कई सारी व्यस्तता रहती है लेकिन इंतजार रहता है कि थोड़ा सा रिलैक्सिंग डे हो संडे वाला आ जाए, लेकिन संडे का दिन तो ऐसे ही आते जैसे आपने पलक झपकाई और संडे बीत गया। कभी कभी ऐसे ही लगता है। तो बात हो रही है आज प्रोडक्टिविटी पे और हमने मुद्दा भी यही रखा है कि आपकी प्रोडक्टिविटी को कौन हैम्पर करता है, यानी कि कौन क्या चीज है जो आपको डिस्ट्रैक्ट रखती है आपके काम से और आपके टाइम को बेवजह ऐसे सर्र से बह जाने देती है, तो उसको जरा हमें बताइए। फिलहाल एक गाना एंजॉय कीजिए, फिर वापस आते हैं कि प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम।
3: बिल्कुल

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: हाँ जी दोस्तों, तो हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे थे, कुछ मेल शामिल कर लेते हैं रत्ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल शामिल करते हैं, लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे।
1: हाँ, तो पहला मेल कौन सा हम शामिल करेंगे?
2: नवीन मिश्रा जी का मेल आया है, उन्होंने लिखा है संडे इज अ रिलैक्स डे। बस इतना ही लिखा है इन्होंने, कहाँ से लिखा है क्या कुछ भी नहीं पता, बस संडे के बारे में इतना सा लिखा है।
1: कोई बात नहीं, चलिए आप और मेल हमें और भी कर दीजिएगा, ताकि आप अपने विचार हमसे साझा करें कि क्या है आज आपकी प्रोडक्टिविटी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे डिस्टर्ब होती है, डिस्ट्रैक्ट होती है। शैलेश कुमार जी हमें, यानी कि नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से हमें मेल कर रही हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हाय, सब हो गया। तरुश्री मैम और रत्ना मैम, कैसी हैं आप?
2: हम लोग बहुत अच्छी हैं, आप दोनों लोगों से जुड़कर बहुत अच्छे हो जाते हैं।
1: जी, मेरे अंदर ऐसी कोई आदत नहीं है जो किसी चीज़ से रोके। एक आदत ये मेरी अच्छी है कि मुझे आलस नहीं है किसी काम को करने में, मुझे खाना बनाने में आलस बिल्कुल नहीं है, चाहे दिन के 12 बजे हो, रात के 2 बजे हो। आप बहुत अच्छी हैं, सच बता रही हूँ मैं। 2 बजे मुझे चाय बनाकर पीनी है तो पी लेते हैं, या किसी की मदद करनी है तो मैं इनकार नहीं करती। देखिए, मैं मदद करने से तो कभी इनकार नहीं करती, लेकिन मैं आलस के मामले में अगर मैं कहूँ तो मुझे, मेरे घर में मुझे खिताब दिया गया है, क्या मैं डीजल इंजन हूँ। मतलब कि ये कि स्टार्ट होने में टाइम लगता है, गर्म होने में टाइम लगता है, मगर एक बार स्टार्ट हो गई ना तो फिर कोई नहीं रोक पाता।
2: बिल्कुल, फटाफट सारे काम करती हैं तरुषी, और यहाँ से वहाँ जो कुछ भी आना जाना है और कामों को अंजाम देना है बखूबी करती हैं।
1: जी,
2: उसके बाद
1: तो अगला मेल शामिल कर लेते हैं, हमारे बारे में डिस्कस तो होता ही रहेगा।
2: बिल्कुल। सुनील कुमार जी का भी मेल आया और लिखते हैं, आज का मुद्दा प्रोडक्टिविटी पे हमने लिखा है, इन्होंने गुड मॉर्निंग हम दोनों को बोला है, आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उसके बाद लिखते हैं, मैं सुनील प्रांजल विकास नगर से वही लिखने जा रहा हूं जो मैं करता हूं, ठीक है? यदि हम सुबह उठकर रात्रि विश्राम के समय तक अपना शेड्यूल तय कर लें, दिन भर ऊर्जावान बने रहेंगे। ऐसे उन्होंने एक टिप दी है, जो कार्य करेंगे मन लगाकर करेंगे, अच्छा करेंगे और वह कर रुचि कर लगेगा। अच्छा, कुछ भी करेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मैं ऐसा कह रहा हूँ। जैसे प्रातः 4:30 बजे से उठने से लेकर रात्रि शाम तक पूरा शेड्यूल बना है, रात 10:30 बजे दीप विसर्जन तय है, क्या खाना है, कितना खाना है, कितने बजे खाना है, ये सब तय है। यद्यपि अपनी पत्नी और बच्चों का नहीं करवा पा रहा हूँ, इसका मुझे दुख है। मोबाइल सुबह दोपहर शाम 3 बार दवा की तरह मैं लेता हूँ इसको, और जब किसी का फोन आए तभी मोबाइल उठेगा, उसके बाद मोबाइल से दूर रहता हूँ। सादर,
1: हैट्स ऑफ टू यू सुनील जी, मैं सच बता रही हूँ कि ऐसे लोग बहुत कम हैं आज के टाइम पर जो अपना शेड्यूल निर्धारित रखते हैं और शेड्यूल के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। और ये बात अक्सर देखी गई है कि जो ये कर पाते हैं उनके फैमिली मेंबर्स जो है ना उस चीज़ को कर नहीं पाते। लेकिन फिर भी आपने अपनी जो शेड्यूल और ये सारी चीज़ें, लाइफस्टाइल जिस तरह से आपने बना रखी है, तो ऑब्वियसली आपके प्रोडक्टिविटी में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। आप सारा काम बहुत अच्छे से करते होंगे और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने अपने विचार हम तक साझा किए। प्रकाश बोरगांवकर हमें मेल कर रहे हैं, ये हमें मेल कर रहे हैं कि प्रोग्राम बेहतरीन लग रहा है, गाने पसंद आ रहे हैं, मेल शामिल करने। तो देखिए, मैंने मेल आपकी शामिल कर दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बिल्कुल, और दूसरा मेल किसका आया है?

0: नहीं, अरविंद यादव जी, ओहो अरविंद यादव जी को हमने कहा था कि दोबारा भेजिए जरा, आधे में अटक के खत्म हो गई थी आपकी मेल। तो लिखते हैं कि सुबह सुबह जब कोई जल्दी उठा दे तो मूड खराब हो जाता है, सबका हो जाता है। सारी एनर्जी लो हो जाती है और मोबाइल का जो डेटा है खोलते ही बेफालतू की नोटिफिकेशन, ओ माय गॉड, मतलब आपकी हालत बड़ी नासाज है। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि देखिए सुबह अगर आपका एक रूटीन है और उसमें आपको अपना रूटीन सेट करके अगर आप प्रोग्राम अपना पूरे दिन का बनाते हैं ना, तो उसको फॉलो कीजिए। जैसे कि सुनील जी ने बोला कि प्रॉपर अपना शेड्यूल बना लीजिए, उसको फॉलो करिए और थोड़ा मन लगा के करिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर करिए रहिए, तो देखिए आपकी कैसे प्रोडक्टिविटी में निखार आता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी टिप हम आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं, लोगों की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ फैजुल्लागंज से इन्होंने लिखा है, शक्ति वाजपेयी जी ने मेल किया, गुड मॉर्निंग लिखा है। उसके साथ लखनऊ से इनका मेल है। शक्ति वाजपेयी जी क्या लिख रहे हैं कि मेरी बचपन से ही लो कॉन्फिडेंस की आदत है और मुझसे जुड़े हुए जो लोग हैं ना उनका साथ ना मिलना, मैं अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाती हूँ। कोई भी काम हो मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, मेरा ज़रा भी टाइम अगर बर्बाद हुआ तो मुझे पछतावा होता रहता है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लो रहता है। तो मैं टाइम बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और टाइमली काम करना पसंद करती हूँ। तो शक्ति जी आपने ये तो अच्छी टिप दे दी और अच्छी बात आपने शेयर करी हम लोगों से।
0: हाँ, तो ये इसी तरह की मेल्स और बाकी सारी चीजें भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। एक लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, फिर वापस आते हैं लौट कर।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: सात रंग का इंद्रधनुष है,
2: सात सुरों की सरगम है,
3: सात जन्म है सात समंदर,
1: साथ हमारा हरदम है,
3: जिंदगी के सतरंगी रंग
2: FM रेनबो के संग।
4: सपने बड़े हैं,
2: स्टाइल अलग है,
4: तो ये शो है आपके लिए।
2: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
4: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
2: सब कुछ एक ही जगह, तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
4: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
5: जी हाँ दोस्तों, 9:20 का वक्त और आज का मौसम क्या कहेगा आगे। जी हाँ, उसके लिए हम आपको कनेक्ट करते हैं, वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वो बताएंगे कि आज का मौसम कैसा रहेगा।
6: सर नमस्कार।
7: जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
6: वेरी गुड मॉर्निंग सर, और आज के हाल के बारे में बताइए, मौसम के बारे में क्या होने वाला है।
7: देखिए मौसम की बात करें तो मौसम इधर 3-4 दिन काफी गर्मी का सबब रहेगा
5: जी,
7: रात के तापमान और दिन का तापमान दोनों में ये अधिक रहेगा, इस वजह से आज कल परसों 3 दिन लू का अलर्ट लखनऊ में भी है और आसपास इलाकों में भी, तो कुल मिला के हमको थोड़ा बचाव रखने की आवश्यकता है, और कहीं भी बाहर निकले तो अपने सर को ढककर रखें और पानी पीते रहें, और दोपहर को थोड़ा निकलना अवॉइड करें क्योंकि तापमान के साथ साथ थोड़ा उमस है, तो उमस वाली गर्मी भी बरकरार है। कुल मिला के 3-4 दिन थोड़ा गर्मी का सबब रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा फिर चेंजेस की संभावना बन रही है।
5: जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, धन्यवाद सर।
6: धन्यवाद।
5: तो श्रोताओं, जैसे कि आपने मोहम्मद दानिश जी को सुना, इन्होंने जैसे बोला कि अभी 3-4 दिन तक ना बड़ी ही भीषण गर्मी का सामना करने को मिलेगा
6: जी।
5: और
6: अच्छा तरुषी, कल थोड़ी सी राहत थी, मौसम हल्की हवाएं चल रही थी, लेकिन आज सुबह से जो एकदम से चटक वाली धूप है ना, एकदम डायरेक्ट वाली धूप, तो लग रहा है सुबह की बात करें, मतलब एकदम से डायरेक्ट वाली धूप आ गई। तो बस
5: सोचिए, आप 8 बजे की बात कर रही हैं, मैं तो बात कर रही हूँ 5 बजे की, तो मैं सोच रही थी कि ये अभी से ही शाम के 5, मतलब 4-5 बज रहे हैं क्या शाम के, अभी तो सवेरा हुआ है, लेकिन नहीं, सवेरा तो होता ही नहीं, सीधे धूप निकलती सीधे दोपहर हो जाती है, तो ये सुबह वाली जो स्किप हो रहा है ना, वो थोड़ा सा अभी कुछ दिन और हमें देखना पड़ेगा, हमें गर्मी का सामना करना है। अब जून का महीना चल रहा है, आप क्या चाहती हैं,
6: थोड़ी सी बारिश वाली जो दस्तक है ना वो अपने तरफ भी आए, लेकिन चलिए 3-4 दिन के बाद मौसम में तब्दीली आएगी, तो इसके बाद वो भी एक पल आएगा, तो उस लम्हे को भी इंजॉय करेंगे, लेकिन फिलहाल 2-3 दिन हम लोगों को काफी एहतियात के साथ सभी लोगों को अपने घर वालों को या खुद भी कुछ पानी वगैरह कंटेक्ट करते रहना है, बिना जरूरत के दोपहर में घर से बाहर नहीं निकलना है, सब चीजों को फॉलो करना है
5: जी। और कहते हैं ना कि जब भीषण गर्मी का सामना नहीं किया तो सावन का मजा कैसे लिया, है ना, तो वो पहले तपना तो पड़ेगा ना, फिर पानी जब पड़ेगा ना तो रूह ताजी हो जाएगी। तो चलिए आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गीत, उसके बाद
6: आते हैं लौट कर।

0: कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
2: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
1: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
2: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
3: धड़कन लखनऊ की
2: 100.7 FM रेनबो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: धड़कन लखनऊ आपने ट्यून इन कर रखा है, यानी कि 100.7 FM रेनबो, और इस पर आपके दो दोस्त हैं, यानी कि तरुषी और रत्ना शुक्ला हैं आपके साथ। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे शहर में आज क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, क्या क्या आयोजन हो रहे हैं और कहां पर आप शिरकत कर सकते हैं, वो आपको सभी समय और जगह बता देते हैं।
6: जी बिल्कुल, तो पहले बता दें कि डॉक्टर गोविंद कुमार सक्सेना की एक पुस्तक है महाकुंभ 2026 श्रद्धालु 66 करोड़ के पार, इसका विमोचन होगा आज होटल ताज द क्रिस्टल रूम सेंट्रल और नॉर्थ सुबह 10:30 से।
5: बिल्कुल, उसके अलावा 18वीं अंतर्राष्ट्रीय मुहर्रम प्रदर्शनी का दूसरा दिन राज्य ललित कला अकादमी कैसरबाग सुबह 11 बजे से होने को है।
6: जी हाँ, और सुंदरकांड पाठ और विशाल भंडारे का आयोजन है जानकी विहार कॉलोनी जानकीपुरम दोपहर 12 बजे से।
5: इसके अलावा माँ जानकी सेवा न्यास की ओर से सुंदरकांड पाठ और हरित विशाल भंडारा 1090 चौराह लोहिया पद शाम 5 बजे से होने को है।
6: इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से कार्यक्रम मंथन IIB भवन में गोमती नगर शाम 5 बजे से।
5: इसके साथ साथ आलमबाग में शाम 5:30 बजे से गुरु का सिमरन गुरुद्वारा आलमबाग,
6: और चंद्रभान गुप्ता की स्मृति में नृत्य नाटक और कला मार्शल आर्ट कार्यशाला है रविंद्रालय प्रेक्षागृह में शाम 5 बजे से। तो ये कुछ गतिविधियां हैं आज की जो महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, इनमें से जिनमें आप शिरकत करना चाहें आप कर सकते हैं। और खासकर ये भी कि आज वीकेंड है और हम कल की तैयारी बहुत कर रहे हैं, क्योंकि कल है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और कई सारी जगहों पर योगाभ्यास की सुबह से कार्यशालाएं शुरू हो जाएंगी और आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। इसके लिए आपको कई तरीके से अवगत कराया गया है और अभी शाम तक जैसी अपडेट्स आती है आपको वो भी जानने को मिलेगी, तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे।
5: और कल को और कुछ और भी विशेष आयोजन है, कल की बातें तो कल आपको ज़रूर बताई जाएंगी, लेकिन इस वक्त फिलहाल गुड मॉर्निंग लखनऊ में काफ़ी चीज़ें हमने आप तक पहुंचाई। उसके बाद अब नंबर है एक इंटरटेनमेंट, यानी कि एक प्यारे से सॉन्ग का,
6: नहीं प्यारा सा नहीं, आप तो धड़ाका सॉन्ग बता चाहिए।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: साथ हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।
5: वेलकम बैक दोस्तों, 9:35 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ। और अब बारी है कुछ मेल शामिल कर लेते हैं क्योंकि मेल्स की झड़ी लगती जा रही है, प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। तो अपने विचार हम तक लिख भेजिए fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। और शक्ति वाजपेयी जी ने मेल भेजा है, लिखती हैं, मेरी बचपन से ही लो कॉन्फिडेंस की आदत है और मुझसे जुड़े जो लोग हैं उनका साथ ना मिलना, मैं अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाती। कोई भी काम हो मैं टाइम टू टाइम करती हूँ, मेरा ज़रा भी टाइम अगर बर्बाद हुआ तो मुझे पछतावा होता है। ये अच्छी बात भी है और थोड़ी सी बुरी बात भी है। लो कॉन्फिडेंस इज़ नॉट अ गुड थिंग। वैसे तो बात करें कि अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हैं तो वो कोशिश कीजिए कि आपको डिपेंडेंट ना होना पड़े। हाँ, आप इतना सक्षम है खुद को, अगर आप इस तरह से शेड्यूलिंग के साथ चलती हैं कि आप अपना टाइम इतना अच्छे से मैनेज कर पा रही हैं, तो इससे अच्छी कॉन्फिडेंस वाली बात तो मैं सोच भी नहीं सकती। बिकॉज सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है आपको टाइम मैनेज करने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आप मुझे मेल भेजेंगी तो एक ऐसी ही बात आपकी होगी। और महेंद्र दीपन जी ने मेल भेजा है और लिखते हैं, ये उन्होंने बड़ा ही चित्र बड़ा सुंदर सा बना के भेजा है, उसमें रत्ना जी की फ़ोटो, मेरी फ़ोटो कुछ ऐसे ही AI द्वारा निर्मित है, तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है कि इसमें से आप कौन है हम कौन है।
6: जुड़वा टाइप ही लग रहे हैं।
5: जुड़वा है, जुड़वा। हाँ। वैसे देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत सा पोस्टर बना के भेजा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। ये हमें ग्राम रूड़ जिला नौगौर राजस्थान से मेल कर रहे हैं और इन्होंने लिखा है कि प्रोडक्टिविटी हम कैसे, मतलब क्या चीज़ें इन्हें रोकती हैं। तो इन्होंने लिखा है दो चीज़ें हैं, एक अत्यधिक डिजिटल नोटिफिकेशन, काम के बीच में फ़ोन पर आने वाले जो अनचाहे नोटिफिकेशन है, सोशल मीडिया की लत उन्हें ज़्यादा भटकाती है। ये तो मेरे ख्याल से आज के टाइम पर सभी के साथ होता है।
6: सभी के साथ है बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आदमी आगे बढ़ते बढ़ते रुक सा जाता है।
5: और अचानक ध्यान भटकना, यानी किसी काम को शुरू करने के बाद अगर कोई दूसरा छोटा काम या विचार अचानक दिमाग में आ जाए तो जो मेन काम है, मुख्य काम है, वो पूरी तरह से दिमाग से निकल जाता है और उस काम

0: वापस शुरू करने में बहुत आलस आता है। ये तो आपने बहुत ही ऐसी बात करी है जो मेरे ख्याल से सभी इससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और छोटे छोटे जो काम आते हैं बीच में, डिस्ट्रैक्टिव जिसको हम बोलते हैं, ऐसे कुछ काम होते हैं छोटे मोटे, और उनके वजह से ना वो जो मेन काम है वो इफेक्ट हो जाता है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है ये भी आप हमें बताइए।
1: तो बहुत सारे लोग जो बताने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं, उनके मेल बस आने वाले हैं, तो उनके मेल को भी हम शामिल करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि 9:37 हो गए, अभी बहुत कुछ आप तक पहुंचाने को है। और अगला मेल हम शामिल कर लें।
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: वारिस अली खान जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तरुषि और रत्ना को प्यार भरा आदाब, अर्ज है, जब जीत निश्चित हो तो कोई भी अर्जुन बन सकता है, लेकिन जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनना आसान नहीं। तरुषि, आपका जीएमएल के आगाज में शायराना अंदाज बहुत पसंद आया। तरुषि कहिए शुक्रिया।
0: ओह शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी, अभी मैं 45 किसी कार्य के कारण FM से दूर था, इसलिए मुद्दा नहीं सुन पाया। मुद्दा बता दें, एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ।
0: हाँ, तो भाई आज तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी पे, कि किस तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है किसी काम की, किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से इफेक्ट होती है, या फिर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो समय आपके पास है, उसका सही सदुपयोग जिसको बोलते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, तो इस पर चर्चा चल रही है। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भी मेल शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल एक हम म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर वापस आएंगे।
2: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
4: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
5: What?

0: तो दोस्तों आज की तैयारी कर लेते हैं, आज कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है तो पहले जान लीजिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल है, शाम का है, शाम का है, जब थोड़ी सी ठंड हो जाएगी ना तब का प्रोग्राम है मेरा।
0: ओहो तो आप तो बिल्कुल जानना जरूरी है ट्रैफिक का क्या हाल होने वाला है,
1: हम कहाँ से जा सकते हैं और कहाँ पर कौन सी बाधा आ सकती है या बिल्कुल स्मूथ है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर विकास सिंह जी।
0: तो शामिल करते हैं सर को, स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज लखनऊ शहर में वर्तमान में यातायात सामान्य गति से गतिमान है, कहीं भी अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है। जैसे कि आप सभी को विदित है, लगातार ज्येष्ठ माह के दौरान जो है हनुमान मंदिरों में जो है श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है और इसके साथ ही जगह जगह भंडारे का कार्यक्रम रहता है। इसी क्रम में जो है लखनऊ शहर में कई स्थानों पर भंडारे का कार्यक्रम है, तो इस दौरान थोड़ा सा जो भंडारा संचालक है उनसे अनुरोध यही है कि कृपया आप जो है अपने ट्रैफिक वॉलंटियर्स जरूर लगाएं और साथ ही जो हमारे जो श्रोतागढ़ हैं वो यदि जिस तरफ जो है भंडारे का आपको लग रहा है तो उस रास्ते को अवॉइड करें, वैकल्पिक मार्गों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस और नागरिक पुलिस की ड्यूटी लगाकर सुगम यातायात संचालन की हमने व्यवस्था करा रखी है और धार्मिक स्थल जैसे हमारे हनुमंत धाम, हनुमान सेतु और अलीगंज में पंचमुखी हनुमान मंदिर और पुराने हनुमान मंदिर और दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर जो कि हजरतगंज में है, इन मंदिरों पर जो है हम अतिरिक्त पुलिस बल लगाए हैं। साथ ही यहाँ पार्किंग की अतिरिक्त व्यवस्था है तो पार्किंग स्थल पे ही अपने वाहनों को पार करें, अन्यत्र रोड पर इधर उधर अपने वाहनों को ना पार करें। बाकी कोई विशेष डायवर्जन नहीं है, पीक आवर्स के समय में थोड़ा सा हमारा तमता मटियारी चिन्हट कटौता ये थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट रहता है और चूंकि इस समय सबसे ज्यादा जो है ट्रैफिक निकलता है ये समय और शाम के समय में लगभग 5 से 7 दो घंटे का जो टाइमिंग हमारा है वो थोड़ा सा ट्रैफिक प्रेशर पॉइंट रहता है इन स्थानों पर। तो अगर अति आवश्यक ना हो तो शाम के समय में और इस समय में पीक आवर्स में इस रोड को अवॉइड करें, वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें ताकि आपको कोई असुविधा का सामना न करना पड़े।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक आपने पहुंचाई, इसके लिए आपका विशेष आभार।
2: जी धन्यवाद, आभार।
0: तो श्रोताओं जैसे कि आपने विकास सिंह जी को सुना कि आज जहां जहां पर भंडारे की व्यवस्था की गई है या फिर कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उन तो अवॉइड करने के लिए, ट्रैफिक को से बचने के लिए आप वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं
1: और कहीं कहीं पर देखने को ऐसा भी मिला कि काफी नजदीक जो भंडारे

0: उनका आयोजन चल रहा है तो एक ही सड़क पे अगर आप जा रहे हैं इस चौराहे से उस चौराहे के बीच में हो सकता है आपको एक दो जगह ऐसा कुछ मिल जाए मंजर, तो आप अपना समय लेके घर से निकलिए और उसके साथ साथ स्मूथ ट्रैफिक के साथ दूसरों को भी सुविधा दीजिए, खुद भी सुविधा के साथ चलिए।
1: हाँ जी, और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड।

0: का।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
5: जी दोस्तों, 9:53 का वक्त। अब फटाफट मेल शामिल कर लेते हैं क्योंकि अब समय नहीं बचा है, हमारे मेल्स बहुत सारे हो चुके हैं
6: और आज का मुद्दा ही कुछ ऐसा है कि लोगों को लग रहा है कि अरे मैं जो करता हूँ वो तो जरूर शेयर कर दूं।
5: बिल्कुल सही कहा आपने। तो मोनू सेठ जी का मेल शामिल करते हैं, लिखते हैं कि मोबाइल की वजह से कुछ कार्य भूल जाते हैं, कभी कभी हिसाब किताब करना भूल जाते हैं क्योंकि हम मोबाइल में रील्स में खो जाते हैं और कभी तो रात को सोना भी भूल जाते हैं। इसलिए हमने फैसला किया कि अब एक हफ्ते पहले ही 14 घंटे मोबाइल से दूरी जरूरी है। अरे वाह, तो अगर आप कर लेंगे ना 14 घंटे तो आप समझ लीजिए आपकी लाइफ बदल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते
6: हैं। मैनुद्दीन अंसारी जी का मेल आ गया, लिखते हैं गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू, आई एम उमरा अंसारी हस्बा अंसारी, श्रीनगर लखीमपुर खीरी से मेल कर रहे हूँ और प्रोग्राम में गाने बहुत अच्छे प्ले हो रहे हैं और थैंक यू। बस इनका इतना ही मेल है। तो चलिए, आपने समय निकाला मेल के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया
5: जी। अब आगे बढ़ते हैं। मुनेश कुमार जी मेल कर रहे हैं, लिखते हैं कि मेरा टाइम टेबल सीधा सा है मैम जी, रेडियो चाहे घर पे हो या फील्ड पर ट्यून करके रहते हैं, मोबाइल पर रिपोर्टिंग का काम करते हैं और रेडियो हर घंटे साथ चलता है, तो बहुत जरूरी है इमरजेंसी तो भी थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ, सुबह शाम घर के काम के बाद फील्ड पर निकलते हैं कवरेज करने क्योंकि पत्रकारिता जगत से जुड़े हैं, घर का बाकी काम में बाकी इनकी मिसेस संभालती हैं। और सच में इन्होंने कहा कि हमारी आवाज सुन के इनकी फील्ड की थकान उतर जाती है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम जुड़े हमारे ये जो श्रोता हैं हमारे लिए ये हमारी जान है। बहुत बहुत शुक्रिया
6: श्रोताओं के लिए, हम मेहनत करते हैं सभी आरजे जो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम सजा कर लाते हैं, आप लोग उसकी कद्र करते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और आगे बढ़ते हैं। ब्रिजेश सिंह जी यानी कि ब्रिजेश सिंह दीपू इठहुआ कैसरगंज बहराई से इनका मेल आ गया, गुड मॉर्निंग रत्ना मैम जी और तरुषी मैम जी, आपको भी बहुत बहुत शुभ सुप्रभात। लिखते हैं, मुद्दा हमारा खेती से संबंधित काम रहता है, काम की वजह से हर चीज़ पर ध्यान नहीं कर पाता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक सिर्फ और सिर्फ खेती के ही रिलेटेड काम करते रहता हूँ
5: जी। और आगे बढ़ते हैं, जावेद अख्तर जी का मेल आया है, लिखते हैं दोनों बहनों को हम दिल से गहराइयों से गुड मॉर्निंग कहते हैं, इतनी गहराई से गुड मॉर्निंग आपने बोल दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम इन्हें अच्छा लग रहा है, सदाबहार गीत इन्होंने सुना और ये हमें मुबारकपुर आजमगढ़ से मेल कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
6: बिल्कुल, आंचल शेठ खालिसपुर से लिखती हैं कि बछरावा रायबरेली, रिश्ते और विश्वास दोनों मित्र हैं, रिश्ते रखो या ना रखो पर विश्वास ज़रूर बनाए रखना, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। और अगले प्रोग्राम का इनको इंतज़ार है, खालिसपुर से उन्होंने मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए, रिश्तों के बारे में कुछ अपनी व्यूज़ और रोशनी डालने के लिए
5: जी। और गीता सेठ जी ने मेल किया है और हमको राम राम बोल रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वारिस अली जी ने भी मुद्दे पर उन्होंने मेल भेजा है, तो लिखते हैं कि स्क्रीन वर्क पर मैं पहले कई घंटे लगातार काम करता रहता था जिसकी वजह से मेरे सिर में दर्द होने लगा था, किसी काम में मेरी स्मार्टनेस नहीं रह पाती थी, लेकिन अब 1 घंटे बाद 5 मिनट का रेस्ट लेता हूँ, बाहर चला जाता हूँ, ये अच्छी बात है, डिस्ट्रैक्शन है लेकिन थोड़ा सा मुद्दे से हटकर है, बट हाँ ये आपने अच्छा किया कि ये जो प्रोडक्टिविटी, ये आपने सही बताया कि किस तरह से आप अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर सकते हैं जी।
6: और अगला मेल जावेद पटेल जी का आया है और इन्होंने लिखा है तहसील मंगल वेदा से, डिस्ट्रिक्ट सोलापुर महाराष्ट्र से, गुड मॉर्निंग दोनों को, आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लिखते हैं, संडे को रिलैक्स डे होता है, मैं आपका ऑनलाइन ऐप पर प्रोग्राम सुनता हूँ, बहुत अच्छे प्रोग्राम है, सुन के मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो जावेद पटेल जी, आपने महाराष्ट्र से मेल करके बताया कि आप FM रेनबो से लखनऊ से इतनी मोहब्बत निभाते हैं और सुन के रेडियो से जुड़ के आप फ्रेश महसूस करते हैं, तो FM रेनबो के लिए बहुत ही फख्र की बात है ये
5: जी। और अब प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं, मोहम्मद आसिफ जी और गुलफसा सिद्दीकी।

0: जीबी मेल कर रही हैं और उन्होंने प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने हमें मेल भेजा। और अब चलते चलते आपको एक बढ़िया सा गाना सुना के जा रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी और दिन। फिलहाल अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, लेकिन अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं क्योंकि सुगंध माटी का प्रोग्राम लेकर अभी लौटेंगी रत्ना जी। तब तक बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM रेनबो।
1: फिलहाल ये कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद एक ट्रैक।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल @ हरदोई रोड, दुबग्गा।

नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भेजेंगे। इससे उत्तर प्रदेश के 2.17 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इनके खाते में DBT के माध्यम से सीधे 4,352.40 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त वितरण के दौरान झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में रहेंगे। मुख्यमंत्री यूपी एग्रीज परियोजना खरीफ संस्करण का शुभारंभ भी करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये अभ्यास किया जा रहा है। परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। NTA ने एक वक्तव्य में कहा कि पुनर्परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में संचालित की जाएगी। 2,79,000 से अधिक विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। परीक्षा एजेंसी ने कहा कि स्वतंत्र और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पर्यवेक्षक, समन्वयक, पुलिबल और प्रशासकों सहित पुलिस बल और प्रशासकों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान TB मुक्त भारत अभियान की प्रगति का आकलन किया गया और TB मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे की रणनीति तैयार की गई। श्री नड्डा ने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह में समाप्त होने वाला TB मुक्त भारत अभियान का दूसरा चरण हर छूटे हुए मामले की पहचान करने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि देश में TB की दर 2014 में 243 मामलों से घटकर 2024 में 187 हो गई है। श्री नड्डा ने कहा कि TB से होने वाली मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय कमी आई है।

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट से उभरने के बाद अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए टीम में है। इसी के साथ ही बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक सुनते रहिए FM रेनबो।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
2: भाई अब मैच का क्या होगा?
1: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
3: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
4: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
3: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
5: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
7: सात रंग का इंद्रधनुष है,
8: सात सुरों की सरगम है,
9: सात जन्म है सात समंदर,
7: साथ हमारा हरदम है,
9: जिंदगी के सतरंगी रंग
8: FM रेनबो के संग।

107.7 एफएम रेनबो सुनने वाले श्रोतन का हमार प्रणाम राम राम। छुटकन का स्नेह ने हम आए गई है त्योहार सबके लगे आपकी आपन एफएम रेनबो की रत्ना शुक्ला। और भैया बहने आप जाने ले कि आज हमरो भाग नी का है काहे से कि हमारे बीच एक बहुत ही खास गुणी रंगमंच और बहुत सारे नाटक में बहुत सारे बहुत तेरे वेब सीरीज में काम करे वाले गुणी अतिथि हमारे बीच में पधारे हैं। तो जाने तो हम का कही यू अतिथि के स्वागत में हम यू कहे चाहते हैं कि आपका यहाँ आवब ठीक वैसन आहे जैसे जेठ के दोपहरिया माँ कौनो नीम केरी ठंडी छाए। और जब नीम केरी ठंडी छाव मिल जाए या सावन में पहली फुहार से माटी महक जाए ऐसा कछु महसूस होते यू टूटियो माँ ई बखत। तो अब हम आवाज दे जा रहे हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें कि हम बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हैं एफ एम रेनबो के कार्यक्रम

0: जी का नाम है सुगंध माटी के। मैं तो जाना तो भैया बहने, आप अतिथि कौन है हमारे बीच? यू हैं गेंदा लाल ललनपुर वाले भैया हमारे बीच में आए गए, तो चलो इनका आवाज़ देके हम बुलाए ले। भैया हमारे तनिक अतिया यहाँ आईसीआईसी, चले आइए चले आइए। गेंदा लाल ललनपुर वाले भैया हमारे बीच आ गए हैं और ढेर सारी गोट बात कर अब उनके ज़िंदगी के किस्सा, गांव के लिए खुशबू का और महकाऊ। तो आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे थे हैं गेंदा लाल ललनपुर वाले भैया, कैसे हो आप?
1: बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपके यहाँ कि हमका यहाँ बुलायो।
0: हाँ,
1: हमका बड़ा नीक लग रहा है।
0: अरे कैसे नहीं बुलाते भैया, काहे से कि इतने गुणी जन हो, इतनी जगह अपन कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे, तो आपके बुलाए का तो हमारा फर्ज है।
1: हाँ बिल्कुल, बहुत हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और एक बाद आपका एक अलग जो पहचान है, जो उन्हें लखनऊ में आपका पहचान थे चिन्हित है, वो हम बताई दे जा रहे थे
1: जी।
0: तो हम बताए, आप सबका बता दें कि एक नाम है जो लखनऊ में लोग पहचानत हैं, श्री सुनील कुमार दीक्षित जी हमारे बीच में यहाँ बैठे हैं, मेहमान हैं हमार, और इनके पहचान बहुत सारे नाटक में और वेब सीरीज में और बहुत सारे विज्ञापनों में काम करे हैं, तो इनकी आवाज़ कब्बो कब्बो आप सुना होगी। लेकिन आज ये हम मार बीच में ललनपुर गांव से आए हैं, एक हम गेंदालाल ललनपुर वाले भैया बुला रहे हैं। तो चलो गेंदालाल भैया से पूछा जाए कि इनके यहाँ आए के, एफएम रेनबो स्टूडियो में आए के सफर कैसा रहा?
1: बहुत ही बढ़िया रहा सफर। हम आज पूरे गांव में यहाँ सबका बतावा कि हम जो है हम स्टूडियो जा रहे हैं।
0: अच्छा।
1: कहीं तुम्हार, हाँ कहीं तुम्हार हुआ का काम भैया?
0: अच्छा
1: है? हाँ। तुम खेते जाते हुआ, बागे जाते हुआ, तुम जाए तुम का करियो
0: स्टूडियो में जाके का? हाँ। करियो? अच्छा,
1: हम कहा तू हमारा नाटक वाटक देखे नहीं लग रहा है, कभी आओ सारे हमने देखो है तुमका मजा आई। अच्छा सब पूरा गाँव हमका छोड़े आवा?
0: अच्छा,
1: अब हम ई कंफ्यूजन में यहाँ कि हमका ये खुशी तेरे छोड़े आए हैं।
0: हाँ।
1: या ई मारे हैं कि दोबारा गांव में ना आ जाओ भैया, बता दें तुम ते। हाँ।
0: और लेओ आप पर जियो की बात अब हमका बता दियो, साची साची बात बताए ये कि हमका खुशी है कैसे कि जब ललनपुर आप छोड़त रही हो कि यहाँ स्टूडियो आए खातिर, अब उनके सब स्टूडियो का नाम पता है कि कौन ठिकाने जा रहे हो आप?
1: अरे हम बताए का इन सबका।
0: अच्छा,
1: और सब रेडियो तेरे कान लगाए ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं।
0: अच्छा, बाजे लेके बैठे हुए हैं
1: और का?
0: अरे दैया,
1: थोड़े सोचा तेरे हम शहीद में जा रहे हैं, हमका बना रहे उल्लू।
0: अच्छा,
1: नहीं नहीं भैया जा रहे हैं ना, हो तुमका यकीन तो लगाए के रेडियो बैठो देखो।
0: अच्छा, यू आप बहुत अच्छा रास्ता बताए के आए हो। और ये बताओ आप गेंदालाल भैया कि जब आप आवत रहे हो तो कोनो सामान मान दी? अच्छा चलो ये बात में एक गौनाई के बात बात कही करब है।
1: हाँ,
0: कि कौन कौन चीज स्टूडियो में आप लेके आए हो और कौन कौन चीज आपका आते बखत वो दीन की चलो भैया हमारे वो चीज ले जाओ वहां जाके दिखाए दो, तनिक कोई के बारे में बताए दो, तो ये सब बात करब। लेकिन ये गौनाई के बाद है।

0: तभी सभी सभी श्रोता पंचर का एक बार दोबारा बताई देव कि कार्यक्रम चल रहा है 100.7 एफएम यानी कि 100.7 एफएम रेनबो पर सुगंध माटी की। और आज हमारे अतिथि हमारे बीच पधारे हैं, हमारा अतिथि गेंदालाल ललनपुर वाले भैया। और ये भैया जब आवत रहे तो ये बताई ना कि हमका छोड़े सभी गांव वाले सभी मनई लड़का बच्चा मेरारू सब आई रही कि भाई आज नेक नेक काम खातिन जा रहे हैं एफएम स्टूडियो, एफएम स्टूडियो में जाके काका बत कहीं करब ये सब सुनत हुई है जैसा कि हम हमारे भैया बताएं। तो अब यूँ बताओ भैया कि जब आप आवत रहे तो सब छोड़े आए, छोड़े के बाद का कछु तुमका गठरिया मुठरिया बांध के झोरा वरा कछु दिहिन की चलो यू वहाँ पहुँचा दे, चाहे पहुँचावे के साथ साथ यू कछु खाए ले और नीक नीक बतकही करो, हमारे लोगों के नाम ले लियो, ऐसा कुछ भावा कि नहीं भावा?
1: अरे कहे नहीं भावा भाई, हमारे एक बहुत बचपन का दोस्त है कलुआ नाम ही का।
0: अच्छा, अच्छा
1: ऐसा का हो जिसे आप कहो कलुआ कहे कहो?
0: अच्छा।
1: हम का जो है उसका नाम अनुजो बोल सकित रहा है।
0: हाँ।
1: लेकिन का है हमारे गांव जवार में यहाँ का होता ना कि जैसे कोई के नाम मान लो दुलारे है।
0: हाँ।
1: तो वो इतने प्रेम भाव तो बुलाई है।
0: हाँ।
1: तो कैसे ए दुलरुआ।
0: अच्छा।
1: तो वो दुलरुआ कहना तो ठीक है लेकिन हाँ। वो उसका पीछे वो तो आत्मीयता जो भाव रहता ना।
0: हाँ। अपनत्व की बात कर रहा हूं का।
1: हाँ बस उतना अपनत्व रहता है। भले मैं बड़े की मात्रा लगाए दिन कोई बात नहीं लेकिन वो अपनत्व तो झलकत भैया बुला रहे
0: वो बहुत जरूरी है। कहे से कि जब अपनत्व रहे प्यार स्नेह रहे मोहब्बत रहे तभी सब भाईचारा के साथ साथ दुनिया बहुत नीक लागत है।
1: बहुत नीक लागत है। तो हमारे दोस्त फिर हमका जो है गठरिया दिन।
0: अच्छा
1: अच्छा वो जान तो हमारे गांव जो एक परंपरा है कि जाओ तो जोन इस समय जोन प्रसिद्ध होए वो ले जाए चाहिए।
0: अच्छा।
1: तो इस समय जो है भैया जून महीना और आम बिल्कुल पकत रहा है एक दो टपका वाला।
0: हम काहे पूछा तो उसे बात जानते हो।
1: हाँ।
0: काहे से कि हमका खुशबू आवत

0: कि कौन चीज लाई के आए हैं यूं बैग में यूं गठरिया में, तो हम कहे लाओ पूछा ही लई है ना।
1: हम बस हाँ। दिखावे वाले रहन की हमका बिल्कुल खुद ही डांटते तोरिक लाए हैं।
0: हाँ डाल के आम के तो का, अच्छा का पहले पानी में भिगाई दे यूं तैयार
1: पहले का। हाँ तुम हाँ। पानी में ठंडा हो जाए, गर्म होत ना बादी होते
0: हाँ।
1: एकदम दिखा लो तो हाजमो खराब हो सकत है। तो ऐसा बोले हम नीक काम करे चले कहीं ले हमका कैसा हम खिला दिन, तो पहले तो लोग ठंडा जाए फिर
0: हमारी दादी बतावत रही की पहले पानी में तनिक भिगो के ओके बाद ठंडा करके खाओ, फिर आम आम सब झोरा में भरिन।
1: हाँ फिर कहीं भैया वहाँ जाओ और सबका आम खवायो।
0: अच्छा?
1: तो हमका प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि वहाँ सबका आम खवाई जाए।
0: साची बात है।
1: हाँ। वैसे वो स्टूडियो स्टूडियो में यहाँ जाए वहाँ ऐसे कोई लेके नहीं जाए, पर वहाँ
0: हाँ,
1: खावत थरे होते
0: हाँ।
1: सब गंदगी फैल जाए। अरे कहीं जब प्रोग्राम खत्म हो जाए
0: अच्छा
1: तब आराम से बैठ कहूँ खाए पिए जगह तो हो ही ना हुआ।
0: हाँ
1: हूँ तो है हम देखा हुआ कहीं बस हुए जाओ काट पीट बढ़िया खवाए सबका। हम कहा यू ठीक कहो तुम, हम तुम्हारा नाम जो है
0: हाँ।
1: सही वाला हुआ ले आप कि जो है ताकि तुमका ना लगे कि हमका हुआ वह नाम तो बुला रहे करुआ करुआ
0: हाँ।
1: हमका नहीं तुम्हारा नाम बताए कि
0: हाँ।
1: हम अनुज भैया दीन है।
0: अरे बात हाँ। अनुज भैया तो मुस्कुरावत हो ये बखत है
1: कान लगाए सुनने होंगे कि अच्छा चलो ठीक हमारा नाम तो ले लेन कम से कम।
0: अभी जो कनकुटुफा है ना ये
1: हाँ।
0: यू कनकुटुफा जो आपाऊ लगाए हमाऊ लगाए
1: हाँ, हाँ।
0: तो यू गांव में तो जानत ना हो ये सब कि का होते
1: हैं। इतना नहीं पता उनका
0: हाँ।
1: अब यह तो है कि हमारे सबकी आवाज तो पहुंच जाते हैं
0: हाँ।
1: लेकिन अब कहाँ वो देख सकते हैं।
0: हाँ तो चलो अब इसके बारे में वही का बता दो, उसके साथ साथ तुम्हारा फोटो हम खींच के अब आपका दे दे
1: हाँ।
0: तो वो सब सब जने को दिखाई दियो।
1: हाँ बिल्कुल और आपको दिखाई भी जाएगा
0: कि कंटोफा में बोल बोल के बहुत नीक लागत है हमारे गेंदा लाल ललनपुर वाले भैया आज अतिथि बन के हमारे कार्यक्रम में पधारेन है। तो चलो ये जो कठहरिया मुठहरिया लय के आए और बहुत देसी आम की जो बात कर दी की वही की खुशबू हम पहचान लेन, तब तो हम पूछे की यू मैं का लाए हो गाँव वाले जन का भेजने। तो कलुआ भैया है और अनुज भैया सब तो बहुत खुश हो
1: बिल्कुल
0: खुशी मनावत हो यहाँ। तो ओके यहाँ से जावे के बाद काका उनके सिखावे बताएवे का वो हम तुमका बताई ठीक है।
1: ठीक।
0: और जौन तुम्हार पसंद के गवना ही है यहू हम तुम तक पहुँचा दी।
1: हाँ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: स्टे ट्यून्ड 200.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: श्रोता पंचन, आप सबका फिर से बताई दे कि 100.7 FM रेनबो पर कार्यक्रम चलाते सुगंध माटी की, और सुगंध माटी के कार्यक्रम हम अपने अतिथि का स्वागत कर ली है, जो उन है कौन जाना तो कि नहीं, अरे याद कर ले, केकरे बारे में

0: बात करत हैं। हमार अतिथि आज बाटे गेंदालाल ललनपुर वाले भैया, और ये कि हम जब स्वागत कर लिए, खाए पिए की बात कर लिए, अब बहुत जरूरी संदेश और बहुत जरूरी बात हम करे जा रहे हैं। कहते कि का गांव का शहर सब कहूं फराउत रहियो यो केरी लहर। और सब जाना तो यो कि योग सप्ताह मनावा जा रहा है, कल है योग दिवस 21 जून की। हम बात कर रहे थे भैया, जाना थे?
1: हाँ बिल्कुल जाने थे।
0: हाँ तो हमका जिज्जी बताती रही, गांव में आई रही कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग सप्ताह चला थे यो, और ईद ननमा 15 से 21 जून तक देश भर में योग सप्ताह आयोजित करें हैं। तो स्वास्थ्य के खातिर, स्वस्थ आयु के खातिर यू योग जो हमारा पुरान पुरखन भी अगर पाछे की पीढ़ी में हम देखी तो वहाँ वहू योग करत रहे। आपहो के परिवार में जैसे योग की बात अगर करें तो गांव में लंबे लंबे चले जा रहे हैं।
1: हाँ।
0: कहूँ के बुआई है, कहूँ कटाई है, कहीं वही के साथ साथ बुआई है, ये सब करे खातिर ना गाँव के दुहा के शुद्ध दूध है।

0: तो स्वास्थ्य के खातिर, स्वस्थ आयु के खातिर यू योग जौन हमारा पुरान पुरखन भी अगर पाछे की पीढ़ी में हम देखी तो वहाँ वह योग करत रहे। आपहो के परिवार में जैसे योग की बात अगर करें तो गांव में लंबे लंबे चले जा रहे हैं, कहूँ के बुआई है, कहूँ कटाई है, कहीं वही के साथ साथ बुआई है, ये सब करे खाते ना वो गाँव के दुहा के शुद्ध दूध है और लस्सी है, मट्ठा है, वही के बाद बहुत चीज शुद्ध शुद्ध होते हैं और ये सब कर के बाद तनिक वर्जिश वर्जिश करते हैं। तो आपन परिवार में कोनो को देखे हो का भैया कि वर्जिश करत रहे या कोनो योग वोग मनावत करत रहे, ऐसा कोनो देखे हो आप?
1: हम तो समझ लो कि प्राकृतिक रूप से देखा है।
0: अच्छा, यू कैसे?
1: अब हिया देख लो, हिया लगा दिन बटन ऑन हाँ। के वो पानी धर देगा।
0: हाँ।
1: अब गांव में यहाँ पानी निकाल रस्सी तरह बाल्टी खींच धर के
0: हाँ।
1: तो हमारे जो गांव पानी निकालत रहा है यही गाड़ी रहा है।
0: अच्छा।
1: रस्सी से बार बार जब उठाइयो खींचो तो वर्जिश वैसे हो जाते
0: कुआं तेरे का?
1: कुआं तेरे।
0: अच्छा।
1: अब क्या है, अब तो कुओं में यहाँ समरसिबल लग गया, अब जैसे बटन दान को फट दे जो है वो पानी आ जाते तो वह वर्जिश सब कम हो गए। लेकिन जैसे ही यहाँ है कोई सामान ले खो गाड़ी उठावा चले गए
0: हाँ।
1: लेकिन गांव में यहाँ बहुत दो चार किलोमीटर जाए पड़ते
0: तो फटफटिया का चलन कम है का हुआ?
1: आदमी कहा पहले टहटे मेड़े मेड़े चले जा, छाव
0: हाँ।
1: है सब बाग है खेत है, मेड़े मेड़े चले जा रहे हैं वहाँ
0: हाँ।
1: सामान लाए पैदल चले आए, अच्छा खासा वर्जिश। हम तो देखा है गाँव में यहाँ बहुत कम है लोग इनका पेट निकरा हुई नहीं।
0: अच्छा।
1: डॉक्टरों खुद कहा भैया पेट ना निकले चाहिए
0: हाँ।
1: तो अब योग का है खातिर, अब अगर तुम रोज योगा करो
0: हाँ।
1: कहा अनुलोम विलोम करो इतने जो है सांस जो है सुरक्षित रहते है और आपका जो है मन एकाग्र हो जाते हैं।
0: जी जी बतावत रही, भ्रामरी कौन होते है?
1: भ्रामरी करे चाहिए।
0: अच्छा।
1: पहले अनुलोम विलोम करो फिर भ्रामरी करो, पूरा मन एकदम शांत हो जाते है। 5 मिनट कह के देखो सारी टेंशन है खत्म।
0: अब
1: हाँ मेडिटेशन मेडिटेशन, अरे तो भ्रमरी करके देखो अच्छा खासा मेडिटेशन हो जाते। वो आदमी क्या खुद ही करे परी कि जो है वहाँ हम दिन भर गाड़ी।
0: अच्छा, अगर हम कह दे कि हम आज तनिक व्यस्त हैं तो हाँ। भैया ये कर निपटा लियो कर लियो काम हमारे पास चला थे का?
1: ना ऐसे हो तो ना चाहिए, कर तो है लोग
0: हाँ।
1: अरे आज नहीं कल के ले बे।
0: अच्छा।
1: तो कल का है टारो, अपने खातिर अपने शरीर खातिर 5 मिनट आदमी निकल रह सके थे
0: हाँ। यू तो बात सच है।
1: मान लो 9-10 बजे जाके तुमका कहूँ काम करे तो सुबह सुबह उठो जल्दी उठ जाओ एक दिन।
0: अच्छा।
1: लेकिन उस सुबह की नींद न खराब होए
0: हाँ।
1: योग हो चाहे ना हो, लेकिन नए भैया योग दिवस है तो भैया करे तो परी।
0: अच्छा
1: हाँ।
0: तो कल योग दिवस के चक्कर में आज आ जाऊं, हम सुना रहा कि सवेरे सवेरे कहूं कहूं आयोजन चलत रहा।
1: हाँ आज जो हमारे रहन तो कई सारे पार्क हमका रास्ते में दिखे। अच्छा हिया देखो पार्क में लोग जाते हैं, हमारे गांव में कोई चिंता नहीं है, चले के पीछे बाग है अपना वहीं फैलाएंगे बढ़िया चादर
0: हाँ।
1: बढ़िया कह रहे योग सब तरफ, यहाँ ए सी में बैठ गए
0: हाँ।
1: ठंडा ठंडा
0: कुआ
1: का है तो पसीना निकला बागे चले जाओ तरीक हवा चले तब बढ़िया ए सी फेल हो के आगे।
0: अच्छा ठंडी मशीन की बात कर रहा था
1: और का ठंडी मशीन
0: हाँ ठंडी मशीन या देखो ऐसी देखो भैया कहा लागी सुफे सुफे दियो।
1: अब इतनी देर बाद बाहर निकलो देखो जब धूप पड़ी तब अरे काहे बैठ गए भाई मां से यहां ठीक रहा है क्योंकि पेड़ नीचे बैठ जाए तो ठीक रहता है।
0: हाँ यो बहुत नीक नीक अच्छी बात बता दियो कि कहते कि ओरिजिनल वहां पर योग देखा है आप है?
1: हाँ ये तो है ओरिजिनल
0: हाँ,
1: देखा
0: हाँ।
1: अब वो जैसे वो पानी लगावेगा कहने हम जाने खेते और
0: हाँ।
1: दोपहरिया दिन में दोपहरिया हम पानी लगावे खेत गए
0: हाँ।
1: अब सोचो जब खेत फरुआ चली है उसे फावड़ा चल चलावत है
0: हाँ, हाँ।
1: तो बढ़िया पानी निकल और 10-10 चलाएं सांस फूल गया हो गई योग
0: हो गई योग।
1: प्राकृतिक रूप से देखोगे तो काम करत करत योग हो जाते हैं और यहाँ शहर में आदमी गवा एसी में कुर्सी बैठ गया वही उठा नहीं रहा तो पेट का है यही बार निकल जाओ
0: हाँ। तो मत यानी मोटापा कम देखा के मिला था गांव में
1: हमका तो देखा यहाँ देखा बहुत कम है होते है लेकिन अब दूध दही खाई आदमी थोड़ा बहुत तो मोट हो जाए
0: पेवर जो होते हैं
1: हाँ, अरे पेवर सही बताए शहर का आदमी अगर एकदम एक दूध पी ले तो हाजमा खराब हो जाए।
0: अच्छा
1: अब तो हिया का है तो कहो चाहे ना कहो पानी तो कहूं को मिलाए देते
0: कहूं को मिला थे हाँ, हाँ, हाँ,
1: 3 कप 2 डर तो कहूं चाय बने
0: हाँ।
1: गांव में आधे कप डाल दो पूरा बढ़िया सफेद सफेद चाय बन जाओ।
0: अच्छा
1: क्योंकि पेवर भाई भाई गैया दूध के लाए हुआ है
0: हाँ।
1: तो पानी मिलावत ना हम तो एक दिन पी लिया हमारा
0: हाँ।
1: 2 दिन हजमा खराब रहा
0: अरे दैया
1: हम फिर कहा फिर बाबत हम पूछा हमने काका तेरे हमका कहे कहीं तो हुआ पैकेट वाला दूध ले थे लखनऊ में या शहर में
0: भर कुल्लड़ भर कुल्लड़ उड़ा दिए और
1: और हाँ। वह तुम ताजा इसमें पानी मिलाओ
0: अच्छा।
1: आधा गिलास दूध तो आधा हाँ। पानी तपियो नहीं खराब हुई हमका हाँ यू तो बढ़िया बताए तुम।
0: अच्छा तो यू जनो एक संदेश हो गया
1: हाँ,
0: हमारे सोतन के लिए
1: वैसे हाँ। जो नहीं करते भैया उनका करेक्ट तो चाहिए और हाँ। कुछ आदत पर जी की बात तो बातें अलग है
0: बातें अलग है हाँ। तो स्वास्थ्य आयु के लिए योग करत रहो भैया और जाने हो बचपन से सीखे अगर योग तो बहुत ही नीक है सीखे के अगर गांव में तो अपन आप हो जाते जैसे हाँ। भैया बतावा वही के बाद अगर शहरों में रहो तो स्कूल की पढ़ाई लिखाई के साथ योग करे के चाहिए बचपन हो चाहे फिर

0: आगे बढ़ के उम्र हो, है ना?
1: हमारे स्कूल के गुरुजी बताएं ना, कहने सूर्य नमस्कार तो जरूर करे चाहिए।
0: अच्छा,
1: 8-10 योग होते ना मिलाए कि सूर्य नमस्कार हो तो वहाँ बढ़िया बुरा शरीर भी है, स्वस्थ रहा है। कहा तू हमो किया तो हमको समझ में आवा कि नहीं बात तो खैर सही करें कि सूर्य नमस्कार करो तो बढ़िया बढ़िया योगा हो जाए।
0: हमऊ क्या सिखाइयो तुम, कैसे होते
1: हैं? अरे हम कर बहुत नीचे आवत है।
0: अरे बात हम सीखब, ठीक है
1: बिल्कुल।
0: तो चलो आप सभी लोग योग से जुड़ो और कल योग दिवस मनावा जाए, वही के साथ वही के संदेश वही के बारे में जान लियो आप सब। हम बात कही करत रहे कार्यक्रम सुगंध माटी की माँ हमरे गेंदा लाल ललनपुर वाले भैया से। तो यू सब बातन के बाद अब एक बढ़िया बढ़िया नीक नीक गीत तुम सबका हम पठे दी, वही के बाद फिर मिलते हैं। बने रहो 100.7 FM रेनबो के साथ।

0: बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

0: हमारा अतिथि आज कार्यक्रम सुगंध माटी के में हमारे बीच में है, जिनका नाम है गेंदालाल ललनपुर वाले भैया। भैया मजा आ रहा है कार्यक्रम में कि नहीं?
1: बहुत मजा आ रहा है,
0: बहुत मजा आ रहा है। तो फिर हम का लगा था कि श्रोता पंचत भी बहुत खुश होता वही है।
1: हम यही सोच रहे हैं, हमका तो मजा आ रहा है लेकिन हाँ। हमका लग रहा है कि श्रोता लोग जरा मजा आवे तो दोनों ठीक है।
0: हाँ अरे सब बताइए अभी मेल करके। हाँ अच्छा। मेल करते हैं सब और हाँ। सब बताइए कि कैस लग रहा है कार्यक्रम और अतिथि हमार के बहुत बहुत स्वागत करिए। तो अभी सब कुछ हुई कहे से कि 10:40 हुई बार तो तनिक बतकही कर ले श्रोता पंचन की बात करब। तो यू हम कहे के चाह रहे हैं कि महतारी के ममता की अगर बात करी जाए तो वो तो न्यारी होते है ना, अनमोल कहते हैं सब। बोला कबो कबो फटहालीन गंजी पहने गमछा साफा पहने घाम में तर बतर होई के दिन रात ख्यात दफ्तर दुकान में मिन्हत करत हैं, घर परिवार में सूरज के उजाला फहरावत हैं, घर परिवार के चमकावत हैं हमार सबके बप्पा बापू पिताजी पापा। तो जाने जाने तो हम कहीं की बात करे जा रहे हैं।
1: हाँ
0: हाँ समझे थो ना।
1: हाँ हाँ,
0: हाँ तो पिताजी के सम्मान देवे के दिन अगर पूछो तो कल आहे जेके हम मनावे कि उई के नाम होई पितृ दिवस जो कल होई है 21 जून का है ना। तो पिताजी की अगर बात करें तो आपन पिताजी के शहर घुमावे लाए हो आप ललनपुर वाले गेंदालाल भैया या गाँव में सुना तो यह तुमका?
1: नहीं आग दे लाए रहा।
0: अच्छा
1: हाँ कहीं आवत आवत नहीं चाहत रहा है। हाँ। कहीं हुआ हम का करे जाप हुआ हुआ गर्मी लगत है।
0: अच्छा
1: हमारा गांव ठीक है यहाँ।
0: अच्छा
1: अरे हम का चलो देख आओ चले या। हाँ। तो कहो कि कई लगत है शहर है लंबी लंबी गाड़ी लंबी लंबी सड़कें जब चली हो तो पता चली
0: यू बात
1: फिर। हाँ। लाइन घुमाए इनका फिर घूमे तो बोले बुजुर्ग तो जिद्दी होते मारत नहीं दिल्ली।
0: हाँ जिद्दी होते लेकिन कबो कबो अगर लड़कर बच्चन के मान लो ऐसे कि लड़का बच्चा आज के जमाना में घूमत है काम करते हैं तो बहुत कुछ नई नई जानकारी हो बते
1: वो बहुत जरूरी है। हाँ, जब आप 10 लोगों तरह मिली हो तो नए नए विचार पता चलते हैं और नए नए का नवा हो रहा है वो पता चलते ना।
0: हाँ, तो पिताजी के सम्मान पूर्वक और प्यार पूर्वक स्नेह दे के तनिक इज्जत विज्जत बख्श के सबाई के आप के नहीं हम अपन के बात है हमरो बात हो चाहे आपन के बात हो चाहे तो हर बात हो चाहे जत्ते श्रोता पंचन सुने थे। तो कल पितृ दिवस मनावे के दिन है और उहिमा आप से अगर कोनो गलती भूल चुक हुई है तो एक भी आप माफी मांग सका तो अपन पिताजी से पिताजी से मांगे कोनो इज्जत थोड़ी घटी
1: कोई नहीं भैया हम तो कब को जब मम्मी पापा लड़े लगते हैं आपस में तो बड़े अच्छी अच्छी बातें नहीं करूंगा कहीं नहीं 9 महीना हम को तुमका पाला है कहीं तो तुम तो 9 महीना को पाले 9 महीना दिमाग में कोट हुआ है वो तो भैया सारी व्यवस्था तुम्हारे किया लड़का बच्चा पर ऐसे थोड़ी ना है जितना तुम किया उतना हम क्या बात रखो खैर है तनिक सरी लेकिन बड़ी बात है
0: बड़ी बात
1: हमका बाद वो बहुत दिन सोचा हमका यार बात तो बहुत बड़ी कहीं है कि पिता ने 9 महीने तो धोया अपने दिमाग में ना आपको सारी व्यवस्थाएं थारी कहीं सब कुछ कहीं तो भैया वो आसान ना आए जो
0: बिल्कुल खामोश रह के तनिक चुप चाप रह के पिता बहुत कुछ करे परिवार के लिए।
1: तो खुद पर परत तब समझ ज्यादा हुआ
0: तब हाँ दिमाग खुला थे
1: आज अपने खातिर बूसट लेक हो 10 दिन सोचे अरे कल ले लेबे और तब छोटा रन चाहिए तो चाहिए।
0: हाँ
1: लेके चलेगे भैया दिलाइन।
0: अच्छा रिसियावत तो नहीं रहा आप?
1: ना अब इतना नहीं करता है थोड़ा बहुत तो अब छोटे पर लेकिन थोड़ा बचपन है कहाँ तो घर का बड़ा हो ना जो वो थोड़ा समझदार जल्दी हो जाते हैं वो कह रहे ठीक है दला दे अच्छा ठीक।
0: हाँ, घर परिवार में सब कुछ देख के और परिवार की स्थितियां जान के जल्दी समझदार होते हैं जो बड़ा हो
1: वैसे अपने देश में तो खैर अगर

0: दिखा रहे हैं तो हर दिन पितृ दिवस, हर दिन मातृ दिवस है।
1: वाह, बहुत नीक बात कह दिया
0: भैया,
1: बहुत नीक बात।
0: घर से निकलो तो पाए छू के निकलो कि भैया जाई थे और आई थे।
1: अरे
0: ये अपने देश की अलग संस्कार है।
1: तो यू बात जो आप कह दिए, सभी श्रोता पंचन सुना, तो ये जो नहीं करा था यू के पालन, तो वो ही आज सुन लिए कि गेंदालाल ललनपुर वाले भैया आज यू कार्यक्रम बता दिए कि जब घर से छोड़ो तो अपने बड़े बुजुर्गन के, अपने पिताजी के, महतारी के, सभी के पांव छुई के निकलो, कह के अब्बाई आई थे 2 घंटा में, 4 घंटा में। हाँ, यू बहुत नीक बात हमको संदेश आपका लगा। तो इसके साथ हम सभी से कहे चाह रहे हैं कि कौनो प्यार का तोहफा हो तो वही कला आप दे सकत हो।
0: हाँ बिल्कुल, हाँ, देख तो चाहिए। हाँ, उनको नीक लगी,
1: उनको नीक लगी। हाँ, बराबर इज्जत करत रहो अपन बप्पा के, है ना, और उनको कभी समय वक्त मिले तो थोड़ी हाथ गोड़ दाब दे।
0: हाँ,
1: थकान थकान मिटाए दो इनके।
0: करेक्ट, चाहिए। देखो ऐसा है तो जब उम्र हो जाते तो चिचलाते हैं, लेकिन उनसे तुम ना चिचलाओ।
1: हाँ,
0: अब बोल दें तो सुन लो।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो तुम्हारे पिता है।
1: हाँ,
0: तो चुपचाप रहो भैया, सम्मान करो, है उनके सम्मान से समझ, जले सर पर हाथ रही तरह तुम खुश रह जाओ, ना बाद में कहो अरे तनु यू कह दे तो जाया ठीक रहा।
1: हाँ,
0: तो अफसोस करे तो अच्छा भैया तुम जो है
1: अपन फर्ज निभाओ,
0: फर्ज निभाओ बस
1: बस। तो अच्छा, पिताजी के रहे अगर बात करें तो बड़कन जब हो जाते तो तनी दुनियादारी तनु कम हो जावत है, तो क्या पिताजी के संग समय बितावे और तनी उनके जमाने की बात करे के पूछे के बतियाए, अगर बतियावा जाए तो कई समय बीती।
0: नहीं, बहुत बढ़िया रहा था हमको। हम एक जो है कहा हुआ हमसे कुछ ना पूछे कौन पूजा हो रहा है, कहीं जो है तो उनका पता तुम्हारा पूर्वज कौन कौन रहा है।
1: हाँ,
0: तो हमका हाँ पर बाबा तक जाने थे।
1: अच्छा,
0: के आगे।
1: हाँ,
0: अब हम चुप हो गए।
1: अच्छा,
0: फिर भैया एक दिन बैठे गाँव गए बाबा थे, हम कहा ये बताओ पहले पूर्वज चिट्ठी बनाओ कौन कौन रहा है। फिर भैया हुई और बड़े वाले जो उनके भाई रहा बैठ पूरा इतिहास बनाई कि उनके बाबा रहे, फिर उनके बाबा रहे, फिर उनके बाबा ये नाम रहे, पूरा नाम। लेकिन बड़ा भाई निकला कि कम से कम पूरे तो पता हो चाहिए,
1: परिवार के बारे में जानकारी हो।
0: आज अगर वो बच्चन पूछ दो तो माता पिता के बाद जनता ही नहीं कहो बाबा के नाम नहीं जाने। लेकिन जाने चाहिए,
1: बिल्कुल जाने के चाहिए,
0: ये बहुत जरूरी है आजकल बच्चन संस्कार।
1: ये एक, हाँ, ये एक और अलग और बहुत नीक बात आप बता दियो।
0: हाँ,
1: है ना, कि परिवार के सब पुरखे जनन के सभी का नाम जाने के चाहिए, अपने परिवार में कौन पितर रहे उन के बारे में जाने के चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: हाँ, तब परिवारों में खुशी होवत है और संस्कारी बालक भी होवत है।
0: बिल्कुल होवत है।
1: तो देखो भैया, सुनने वाले सभी जन, पिताजी के चेहरे पर जौन चमक आई ई सब करे से कहूँ बाजार में वो आप खरीद मोल नहीं सकत हो। जौन चमक खुशी
0: महतारी तरह तो बतिया लिया हो खूब।
1: हाँ,
0: बाप पर तो कोई नहीं बतिया पावत है।
1: हाँ,
0: अच्छा वो ज्यादा बहुत का बतन काम भर की बात।
1: हाँ, हरकाए देते कबो कबो।
0: हाँ, वो डर रहा थे तो काम भर की। हाँ, का हुआ आज? हाँ, हुआ ठीक। हाँ, बस लेकिन कभो कभो कह लेके चाहिए,
1: कह लेके चाहिए और सम्मान बराबर करत रहो, है ना।
0: हाँ,
1: ऐसे की जवाब दही है या कछु ये सब इसमें कछु रखा नहीं।
0: नहीं नहीं, मैं कहा जाते।
1: तो चलो यू बात से एक गवनई याद रही है तो तनिक सुनवावा जाए।
0: बिल्कुल, सोता सुनवावा जाए
1: जी।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

0: वीडियो से जावे का मन नहीं कर रहा थे
1: ना, तो बिल्कुल नहीं कर रहा।
0: तो देखो भैया, आते लोग मेल कर रहे हैं तो हाँ। सबसे पहले हमको एक तस्वीर दिखाई दे रही है, वो ही मां बना फरिंदा। हाँ, पूछे वाले रहे कि आम के संग फरिंदा लाए हो आप कि नहीं। चलो हम ई के फोटो दे के दिल हमार बाग बाग हुई का, तो पढ़ ले कि का लिखी।
1: हाँ, बिल्कुल पढ़ो।
0: लिखिन है मोनू सेठ भैया, लिखिन हाँ। है रत्ना बहनी और गेंदा लाल भैया, आप दोनों के जने खातिर हम जामुन तोड़ के लाइन है। अरे वाह, जामुन के फोटो भेजनी है, तो चलो यही से अपन दिल के तसल्ली दिया जावे, है ना। मोनू सेठ भैया बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वकील अहमद तो लिख रही है, लिखिन है कि आप दोनों लोगों की आवाज बहुत अच्छी लागत है, सुगंध माटी की कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और समर में हम नहाए के आम के बाग में हैं, आम खावते हैं। हमारे यहाँ गर्मी बहुत तेज हो रही है, हवा बहुत मस्त चलत है। वकील अहमद मंसूरी, कटका हथूरी, जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी, अहमद नवाब जी, तो अत्ते लोगों के नाम लिखे ने। और आप जो आम के बाग की बात कर रहे हो भैया, वही के बारे में लिख दी ने। हमका लागत है कि आपके बतकही सुन के हाँ। आप जौन जो झोरा में लाए हो, जौन अपन गांव वाले आपका दी ने वो सुन के आम के बाग भागे हैं का।
1: हमका लाग जाए रहा है। चलो है बढ़िया, है बढ़िया, गए तो कम से कम हाँ। लेकिन इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद भैया कि तो प्रोग्राम सुनिन और तुरंत तारीफ कर दी,
0: तुरंत तारीफ कर दी। हाँ, और बहुत धन्यवाद दे रहे हैं गिरना लाल भैया, जान लो आप लोगों का। सोनू परवाला, खालिसपुर, उच्च गाँव, सुकुल बाजार मोड़, अमेठी से लिखे है। बहन जी नमस्ते, बहू को नमस्ते। आप हो के माटी की खुशबू ही पर कार्यक्रम में दादा दादी नाना नानी भैया भौजी बुआ फूफा सभी ही प्रोग्राम में बहुत ध्यान से सुनत हैं। और प्रोग्राम और परिवार हमारी जहां जड़न संस्कार और जीवन के सबसे गहरे सुकून के प्रतीक हैं। जिस तरह पहली बारिश में मिट्टी की भीनी सुगंध मन को तरोताजा कर दिया थे, ठीक उसी तरह परिवार के साथ जीवन के हर उतार चढ़ाव में हम ऊर्जा और अपनापन प्रदान कर रहे थे परिवार हमका। सोनू परवाना बहुत नीक बात लिखा,
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लिखा है भाई,
0: बहुत सुंदर लिखे ने। गुलफशा सिद्दीकी लिखे ने, गुड मॉर्निंग, आप दोनों के कार्यक्रम बहुत अच्छे लग रहे हैं। संडीला से यू लिखे ने,
1: बहुत बहुत धन्यवाद इनका।
0: गेंदा लाल भैया जान लो संडीला तक सुना थे आपके बात कही, और देखें कहाँ कहाँ जात है यू आवाज। आंचल सेठ खालिसपुर से लिख दी ने कि गेंदा लाल भैया और दीदी जी का नमस्कार, हमारे सास ससुर भी आपके राम राम कहते हैं।
1: राम राम भैया, राम राम।
0: गेंदा लाल भैया राम राम पटे दी ने आप लोगों का। माटी की खुशबू ये सिर्फ एक महक नहीं बल्कि हमारी जन्मभूमि और संस्कृति से जुड़ा गहरा एहसास है होता है। और चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अपन मिट्टी की याद, वहाँ का जुड़ाव हमेशा हमारे भीतर बसात है, बसत है।
1: यह बात तो बिल्कुल नीक है। हाँ। दुनिया में कहूँ घूम जाओ और जब घरे वापस आओ हाँ। तो सुकून नींद घरे मावत है।
0: हाँ, देखो यू एहसास हमारे भैया के तीर भी है। और उसके बाद राजकमल यादव बरैया से लिखिन है, पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से, प्रणाम दीदी और भैया जी, कैसे हम लोग बहुत नीक नीक है, कार्यक्रम हाँ कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा थे। कैसे आज हमारे अतिथि भैया आए हैं गेंदा लाल ललनपुर वाले, और बुधवार और शनिवार का इंतजार रहते यू कार्यक्रम में, और मैम हो सके तो यादव जी कभी बुलावा जाए, उनका गीत बजावा जाए। और हमारे साथ रमजान मास्टर सावन कुमार यादव और मेरी वाई संगीता यादव हैं, कार्यक्रम सुनती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जौन आप लिखे वही की कोशिश करें, काहे से कि समय बहुत कम है। तो परवीन हागोने जी भी मेल करें, कुलदीप गुप्ता जी भी मेल करें, सत्यम पाल जी भी मेल करें, मोहम्मद आसिफ जी भी मेल करें, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छुटकी सी बात कर ली भैया, काहे से कि कल 21 जून की अगर बात करें तो विश्व संगीत दिवस बनावा जाइए, जानत हो ना।
1: हाँ,
0: हम जब देखा कि गेंदा लाल भैया तने मेज पर ऐसी कुछ ढुमुक ढुमुक ढुमुक ढुमुक कजो करत रहे, हम का ढोलक भैया बजा ले तो का, तो कहीं कि हम जौन जौन कार्यक्रम करत हैं, नाटक है, वेब सीरीज है, उन सब में कब्बो कब्बो हम करत हैं। हाँ, तो जब ढोला का बजावत हो तो कोनो गमनई सौद गावत है कि नहीं।
1: हाँ, और का जब हम नाटक करे थे तो जो है जो संगीतकार अपन रहा है और जो गीतकार हैं तो कहूँ कहूँ देखो अभिनय के साथ साथ थोड़ा संगीत होना भी बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी।
1: वो आदमी को जोड़ता है उससे एक दूसरे को, और दिन भर आदमी थक हार के आवा, एक घंटा कार्यक्रम देखे आवा, तो तनु एक नीक लागे चाहिए।
0: बहुत अच्छी बात कह दियो। और संगीत ऐसे होते कि कौन भाषा में हो,
1: कौन भाषा
0: कहूँ बजे कहूँ गावा जाए, लेकिन दिल में बसत है, दिल का जोड़ आते
1: हैं। जैसे अंग्रेजी है समझ नहीं आवत है
0: हाँ।
1: लेकिन जब नीक लागत है सुनने में
0: यू तो बात है, पटपटावा थे लोग लेकिन नीक लागत है
1: हाँ।
0: लेकिन ये भाषा का भी अपन एक अलग महत्व है,
1: गीत संगीत समझ में आ जाता हम देखा है
0: हाँ। हाँ। तो संगीत से तो मन बिल्कुल हरियर हो जाते
1: हैं।
0: तो चलो दनी तो ढोलक हम सुनी है ना,

0: एक बार तनु को फिर से एक दाई और स्वागत करी थे हम अपन गेंदा लाल भैया ललनपुर वाले जगह। कैसे हो भैया?
1: बहुत बढ़िया, बड़ा नीक लग रहा है।
0: नीक लग रहा है।

0: ए हो तू ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना दानन दू ना हू कुल तारन हो बाजत अवध बधैया दशरथ घर सोहर दशरथ घर सोहर हो आए मगन हुई के बजाए दिन ढोलकिया हम काहे के लात अनेक बजाई कैसे बजावत है चलो सुना जाए तो आप सबका बताई दे कि कार्यक्रम सुगंध माटी के में जितने लोग मेल करें उनका बहुत बहुत हार्दिक से हार्दिक धन्यवाद दे के चाह रहे हैं हमारे गेंदालाल ललनपुर वाले
1: भैया बहुत बहुत धन्यवाद सबका बहुत बहुत धन्यवाद
0: और बखत बिल्कुल इजाजत नहीं दिए थे तो चलो अब का करी का से समाचार के बखत हो रहा का कहे चाह रहे हो आप बताइए
1: मन तो नहीं माना था जाई लेकिन अब का करे समय कह रहा जाओ तो भैया जाए
0: लेकिन अब गठरिया मुठेरिया अब खोले के बखत आएगा वहाँ का हाँ, उम्र है हाँ, तो हमारे जो आज के अतिथि रहे उनके हम स्वागत करें उसके बाद अब अभिनंदन करे के बाद हम उनका धन्यवाद पठे रहे हैं आप सभी लोगों की तरफ से और अपन वाणी में हम कहे चाह रहे हैं कि गेंदालाल ललनपुर वाले भैया आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कार्यक्रम सुगंध माटी के में आप पधारे बतकही करें सब लोगों से मिलकर श्रोता पंचन आपके तारीफों भेजें पठे पार्टी भेजें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर रहियो यूं तरह जुड़े रहियो और आपका जो लखनऊ में जो शहर में आपका पहचानत हुई है सुनील कुमार मिश्रा जी सुनील कुमार दीक्षित जी तो आपके हम बहुत बहुत स्वागत करे थे बहुत बहुत धन्यवाद देते कार्यक्रम के वक्त खत्म हुई गवाह तो चलो फिल्म मिलब
1: फिल्म मिलब
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

नमस्कार, 11 बज रहे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। समारोह सदर के गैरिसन ग्राउंड में सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा। योग दिवस कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद वे दोपहर 1 बजे जबलपुर से ग्वालियर के लिए रवाना होंगी। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुनो राष्ट्रीय उद्यान जाएंगी और वहां सहारिया जनजाति समुदाय और उद्यान कर्मियों से मिलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या अब उपेक्षित और तिरस्कृत नहीं है। आज की अयोध्या त्रेता युग का स्मरण कराती है। मुख्यमंत्री कल नगर निगम अयोध्या में 290 करोड़ रुपए से अधिक की 245 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने के उपरांत जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यहां रामायण वैक्स म्यूजियम व जोनल कार्यालय भवन का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने म्यूजियम का अवलोकन और नगर निगम की विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया। श्री योगी ने कहा कि अयोध्या की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अभी और कार्य करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल बिहार के छपरा जंक्शन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वांचल को सौगात देते हुए दोहरीघाट औड़िहार ट्रेन सेवा का वाराणसी सिटी तक विस्तार और मऊ आनंद विहार नियमित एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मऊ के रास्ते संचालित होने वाली छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी जो दिल्ली से लखनऊ और वाराणसी होते हुए पटना और सिलीगुड़ी तक जाएगी। प्रदेश के राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने आज वाराणसी में सुसुवाही स्थित विवेकानंद नगर कॉलोनी में त्वरित आर्थिक विकास योजना वर्ष 2025-26 के अंतर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि इस योजना के तहत क्षेत्रवासियों को बेहतर आवागमन सुविधा प्राप्त होगी तथा क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। राज्य मंत्री ने कहा कि वाराणसी के कोने कोने में विकास कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य में कोई बाधा नहीं है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए, जुड़े रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: सात रंग का इंद्रधनुष है,
2: सात सुरों की सरगम है,
3: सात जन्म है सात समंदर,
1: साथ हमारा हरदम है,
3: जिंदगी के सतरंगी रंग
2: FM रेनबो के संग।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और साथ में आप सभी से कहेंगे 11:10 हो रहे हैं प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे आपके बीच में लेकर आ गई हूँ, आपकी होस्ट एंड दोस्त रत्ना शुक्ला। कैसे हैं आप सब? बहुत सारे लोग आज वीकेंड मना रहे होंगे, कल संडे और आज सैटरडे, तो कई लोगों को 2 दिन की छुट्टी भी मिल गई, कुछ आपने पहले से प्लान करके रखा है, लेकिन मौसम का हाल देख के आप अपने प्लान को अंजाम दीजिएगा, क्योंकि मौसम दोपहर का जैसे अभी 3-4 दिन तक ऐसे ही कुछ बना रहेगा, और ये टेम्परेचर, ये तापमान, उसमें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना, पड़ोसियों का, अपनों सबको, अपने जितने भी साथ हैं सबका ख्याल रखना हमारा और आपका काम ही तो है। और फिलहाल प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे 100.7 FM रेनबो पर आपके बीच में है। आपके कई सारे मेल भी आ चुके हैं। आप सभी को पता है इस प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, आपसे फ़ोन पे बात करते हैं, आपके प्यारे से संदेश को शामिल करते हैं, उसके अलावा आपके मेल्स भी शामिल करते हैं। तो आपको किस आईडी पर मेल सेंड करना है, fmakashwanilakhnow@gmail.com पर आप अपने मेल शामिल भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं एक प्यारे से संदेश के साथ, और आकाशवाणी जब आप लिखेंगे तो उसमें वी होना चाहिए ना कि डब्ल्यू, fmakashwanilakhnow@gmail.com। और उसके साथ आपको बता देते हैं आप कौन सा नंबर डायल कर सकते हैं, लखनऊ का कोड 0522, उसके अलावा 2238845 या फिर 2238852, ये दोनों नंबर आप डायल कर सकते हैं, और 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में अपनी आवाज़ हम तक पहुंचा सकते हैं प्यारे से संदेश के साथ। तो बस इन सब बातों के साथ ये गाना आप तक आ रहा है, और अपना आपके फ़ोन कॉल और मेल्स को शामिल तुरंत करेगी इसके बाद।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
2: और आइए दोस्तों कोशिश करते हैं इनसे हेलो करने की। हेलो
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? साहिबा जी, आपकी आवाज में वो खुशी नहीं है जो आप पिछली बार आपकी आवाज में सुनाई पड़ी थी।
3: क्यों मैम?
2: अब आई वो चेक। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे आज की। आप पहली कॉलर हैं साहिबा।
3: थैंक यू।
2: हाँ, पहली कॉलर आज 20 जून की बात हम कर रहे हैं।
3: जी मैम, आपने कॉल उठाया इसके लिए मैं शुक्रिया आपका।
2: नहीं नहीं, कोई शुक्रिया नहीं, आप लोगों के लिए प्रोग्राम है, आप ही लोगों से सचता है ये प्रोग्राम। तो साहिबा बताइए कि आज मौसम में कुछ क्या आपने कुछ खास किया था या कुछ करने का मन नहीं, क्या बताइए? हेलो
3: हेलो,
2: मौसम को लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगी?
3: जी मैम, जैसे कि मौसम बहुत गर्म हो रहा है मैम
2: जी,
3: अपना रब भी ख्याल रखे और अपने बड़े बुजुर्ग का भी ख्याल रखे, बच्चे का भी ख्याल रखे। बच्चे को हमारे यहाँ घर के बाहर बच्चे बाजा बजा रहे हैं धूप में।
2: अच्छा
3: जी, बाजे की आवाज नहीं आ रही आपको?
2: जी आ रही है, जैसे ढप ढप ढपली बजती है उस तरह से आवाज आ रही है। अच्छा, तो धूप से उनको थोड़ा अंदर लाने की कोशिश करिए।
3: नहीं नहीं, हमारे घर के बच्चे नहीं है।
2: अच्छा, अरे तो
3: नहीं, हमारे यहाँ बाजा भी नहीं बजता है तो बजा रहे हैं।
2: अच्छा, वो लोग धूप में है इस वक्त?
3: जी मैम, अगर तो उनसे मना करो तो कहते नहीं, हम तो बाजा बजाएंगे।
2: अच्छा जी, तो चलिए जब आपकी बात हमसे फोन पर हो जाए तो उसके बाद आप केवल उनको प्यार से समझा दीजिएगा कि भैया धूप है, मौसम थोड़ा खराब है, आप लोग अंदर हो जाइए।
3: कहते हैं कि जो है 10 दिन का जो है त्योहार है, हम तो बजाएंगे चाहे धूप हो चाहे छाई हो।
2: अच्छा अच्छा, ठीक है, तो चलिए आप इस बात को बताने के बाद कोई संदेश देना चाहती है क्या प्रोग्राम में?
3: संदेश दिया है कि जैसे कि हम धूप में ना निकले, अगर जो धूप में बहुत ज्यादा जरूरी काम है तो घर से निकलने से पहले पानी और छाता भी लेकर साथ में चले और लस्सी या छाछ वगैरह का भी जो है सेवन करें साथ में।
2: बिल्कुल, तो चलिए साहिबा जी, आपने दो बातें ऐसे अच्छी अच्छी हो गई और इसके साथ आप भी अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए। एफएम रेनबो पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहिबा।
3: जी मैम, नाम भी लेना चाहते हैं।

0: जी लीजिए नाम।
1: मोहम्मद आसिफ है, मोहम्मद फैज है, वकील अहमद भाई, समाता यूनिट की गच्छा की मैं संसारी हूं, रिंकी सिंह की रोशनी दीदी है, बबीता राव दीदी है, सत्यम कुमार हूं, साजियान साहब
0: जी। चलिए सबके नाम आपने ले लिए, सुन के बहुत खुश हो रहे होंगे। साहिबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। तो भाई 11:18 हो रहे हैं, कई लोगों ने मेल भी कर दिए हैं तो उनके मेल भी शामिल करते हैं। और हम किन का मेल लेते हैं? सबसे पहले मेल आ गया है शेख अल्लाबख्शी का, तेलंगाना निजामाबाद से। शेख अल्लाबख्शी बेगम राबिया शेख जी, शेख रहीम मुन्ना जी, और इन्होंने बस केवल आदाब अर्ज किया है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो किन का मेल आ गया है? रामराज जी का भी मेल आ गया है। लिखते हैं श्री गणेशाय नमो, संदेश आपके गीत हमारे जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से। रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, मिर्जा, इमरान बेग, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमन। आप लोगों को भी बहुत बहुत नमस्कार। और आशीर्वाद भी इनका यहाँ तक आया तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतनी मोहब्बत निभाते हैं फ्रेम रेनबो के साथ। और लिखा है, हमारा संदेश है कि गाँव के में सभी लोग मिलजुल कर रहें, लड़ाई झगड़ा किसी से ना करें, गाँव के सभी लोग एक दूसरे की बुराई ना करें, और ऐसा करें तो सब के लिए बहुत अच्छा होगा। और धन्यवाद भी इन्होंने लिखा, इनको लग रहा था कि मेरा मेल शामिल, जी सभी का मेल शामिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी सी बात आपने, संदेश दिया आपने। और मोहम्मद आसिफ जी का भी मेल आ गया है, हैदराबाद तेलंगाना से। ऐप के जरिए सुन रहा हूँ रत्ना मैम प्रोग्राम, संदेश आपके गीत हमारे में बहुत अच्छा लग रहा है और प्रस्तुति बहुत अच्छी लगती है। संदेश ये कि नियमित योग करें, सुबह 10 से 15 मिनट धूप में रहना चाहिए। और राजा कटरा अहमदपुर बाराबंकी का हूँ, रोशनी रावत दीदी, समा अंसारी, उमरा अंसारी, साहिबा अंसारी, सादिया अंसारी, बबीता राव दीदी, सब लोग आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आपका संदेश भी बहुत प्यारा सा है कि धूप भी लेना ज़रूरी है, भले गर्मी के दिन चल रहे, उसके साथ साथ सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। और योग करने का संदेश भी आपने बहुत प्यारा सा अच्छा सा संदेश दिया। इसके बाद भैया मोनू सेठ जी का भी मेल आ गया है, लिखते हैं कि परिवार की एकता से भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक मजबूती मिलती है, क्योंकि सभी सदस्य एक दूसरे का सहारा बनते हैं, खुशियां और दुख साझा करते हैं और जिम्मेदारियों को बांटते हैं। एकता से बच्चों को स्वस्थ वातावरण और सही संस्कार मिलते हैं, जबकि बड़ों को सम्मान और सुरक्षा का अनुभव होता है। ये परिवार को मुश्किल समय में एक अटूट शक्ति का स्तंभ बनाती है, जिससे अकेलापन दूर होता है और जीवन अधिक संपूर्ण और खुशहाल बनता है। पूरी जिंदगी का सार आपने लिख दिया है मोनू सेठ भैया, और बहुत अच्छा सा संदेश है। चूंकि छोटे बड़े जो भी जुड़े हैं इस वक्त एफएम रेनबो पर आपके प्रोग्राम में, इस आपके संदेश को सुना होगा तो जरूर कहीं ना कहीं उनसे भी इन बातों का इत्तेफाक जुड़ा होगा। इन बातों के साथ अब देखते हैं कि कितने मेल, और हाँ जी अभी भी बहुत सारे मेल हमारे बीच में हैं, इन मेल को हम ज़रूर शामिल करेंगे। और मोनू सेठ भैया ने लिखा है कि हमारी नानी की तरफ से भी राम राम आ रहे, नानी का गोड़ लागे थे और कार्यक्रम सुनिन हुई हैं वो, तो चलो उनको भी हमने गोड़ लागे, उनके प्रणाम हमारा कह दीजिएगा। इसके साथ सत्यम पाल जी ने भी मेल किया है और मुरादाबाद से, और लिख रहे थे कि नाइस प्रोग्राम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मेल करने और पसंद करने के लिए। कुलदीप गुप्ता जी ने भी मेल किया और इन्होंने लिखा है कि आज के जो मेहमान आए थे उनको भी, सुनील कुमार दीक्षित जी, उनका भी इन्होंने विशेष आभार किया है। और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम और विशेष जानकारी मिली, इसी लिस्ट में आज का विशेष सम्मान जो दिवस जो है वो भी इन्होंने कहा है कि आज को उनको भी याद करना बनता है। कुलदीप गुप्ता उधौली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इन्होंने मेल किया है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। राजकमल यादव जी का भी मेल आ गया है और इन्होंने लिखा है, कैसे हैं आप लोग? हम लोग बहुत अच्छे हैं, प्रोग्राम इनको बहुत अच्छा लगा पिछला। और राजकमल यादव जी हैं ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से, इन्होंने मेल किया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेल करने के लिए। विजय सिंह जी का भी मेल आया और इन्होंने लिखा था कि राम राम कर रहे थे रत्ना मैम जी, भैया जी, यानी कि गेंदा लाल जी की बात करें, उनको भी अब तक नमस्कार, आपका नमस्कार पहुंच गया। गन्ना के खेत में पानी की सिंचाई कर रहा हूं, आपका कार्यक्रम का आनंद ले रहा हूं, साथ में बहुत मज़ा आ रहा, खेत में बैठकर अकेले सुन रहा हूं और गीत के साथ साथ बातें भी बहुत अच्छी लग रही। तो विजय जी आपने इतना दिल लगाकर सुना प्रोग्राम को, इसके लिए आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आपका मनोरंजन भी हो रहा है खेत में और एफएम रेनबो के साथ आप जुड़े हैं, अपनी मोहब्बत निभा रहे हैं, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है, हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। इन बातों के साथ चलिए अब एक सॉन्ग को प्ले करने का टाइम हो गया है, चूंकि बहुत सारे मेल हैं जिनको फोन ये सब अभी शामिल करते हैं।

0: भी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
4: और भरोसा,
3: जानो फिर मानो।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: प्रोग्राम संदेश आपकी गीत हमारे 11:32 ये वक्त हो चुका है और इस वक्त हमसे किन की आवाज जुड़ चुकी है, कहां से जुड़ चुकी है। हेलो

और पिछला मैं इस वक्त अपने मायके में हूँ और पिछला प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा संदेश यह है कि हमें किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए और किसी को बेवजह नहीं रुलाना चाहिए। वाओ, किसी का भरोसा मत तोड़िए और किसी को बेवजह मत रुलाइए। ये हमारी आपकी दोनों की ड्यूटी है, सभी की ड्यूटी है इनफैक्ट, कि नाराज़ होकर भी क्या ज़िंदगी का क्या मज़ा रहता है ना। तो बहुत अच्छी बात अपने संदेश में लिखी। मनोहर लाल गधनी जी का भी मेल आ गया। पहली बार मेल कर रहा हूँ, पता नहीं पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। बिल्कुल पहुँच चुका है भाई मनोहर लाल जी, अभी खुश हो जाइए, आपका मेल पहुँच चुका है और ऑन एयर किया जा रहा है। तो अगर पहुंच जाए तो धन्यवाद, इन्होंने पहले से भेज दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेल करने के लिए मनोहर लाल जी। 21 जून को योग दिवस और हम सभी इस हफ्ते स्वास्थ्य के प्रति और अपने जान पहचान वालों के प्रति जागरूक हों। 30 मिनट रोज सुबह योगा करें और खान पान पर विशेष ध्यान दें, तो ही हम अपना और अपने देश का अच्छे से सोच सकते हैं। धन्यवाद जी। मनोहर लाल गांधी, विजयनगर, चाणक्य चौक, गाजियाबाद से इन्होंने मेल किया है। चलिए, देहरादून के बाद हम गाजियाबाद से मेल के जरिए कनेक्ट हो गए। और सोनू परवाना जी का भी मेल आ गया है। इनका संदेश है कि माता पिता को कष्ट देकर आज तक कोई खुश नहीं रहा। छोटे थे तो माता पिता हमारे इलाज के लिए धूप हो या छांव में भागकर पैदल धूप में इलाज के लिए भागा करते थे, और आज गाड़ी पर है लेकिन माता पिता दूसरे से हाथ जोड़कर अपनी दवा के लिए जाते हैं। तो वैसे हमारे माता पिता ने भगवान के पास हैं, और जब ऐसा देखते हैं तो बहुत दुख होता है, गुस्सा भी आता है कहीं कहीं कि बचपन में वो हमारे लिए दौड़ा करते थे, अब उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है आज की पीढ़ी के पास, तो वो दूसरों से हाथ जोड़ के अपने लिए मदद मांगते हैं। तो ये बहुत ही दिल को ठेस पहुँचाने वाली बात है। सोनू परवाना जी, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात आपने लिखी है और लोगों तक ये संदेश पहुँचा तो कहीं ना कहीं सुधार भी होगा, हमें पूरी उम्मीद है। शुक्रिया, थैंक यू। तालिब अंसारी जी, मोहम्मद तालिब राजा कटरा बाराबंकी से, प्रेजेंट टाइम में गर्मी से बचाव के लिए रत्ना शुक्ला मैम को इन्होंने गुड मॉर्निंग लिखा है। इनका संदेश है गर्मी से बचाव के लिए, देखिए बच्चों या पालतू जानवरों को कभी भी बंद या पार की हुई गाड़ी में ना छोड़ें। अच्छा, यानी कि आप गाड़ी में ना छोड़ें और जानवरों को या बंद ना करके ना रखें, क्योंकि अंदर का तापमान कुछ ही मिनटों में जानलेवा स्तर तक पहुंच सकता है। बहुत ही अलग सी बात आपने लिखी, जो कॉमनली इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है आपने लिखी। और साथ में लिखा, हेल्दी ड्रिंक्स, शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित रखने के लिए नींबू पानी, नारियल पानी या ORS का सेवन करते रहिए। हल्के कपड़े पहनिए, हमेशा हल्के रंग के सूती कॉटन के ढीले डाले कपड़े पहनिए और शरीर में हवा लगती रहेगी तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और तला भुना जैसे बासी खाने से बचें, मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और ताज़ी सब्जियों का सेवन बढ़ाएं। समय का ध्यान रखें, जब धूप तेज हो तो 10 से शाम 4 बजे के बीच कहीं बाहर ना निकले अगर जरूरी काम नहीं। तो आपने काफी संदेश दे डाले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी की तरफ से, क्योंकि जितने लोग सुन रहे हैं उनको उन्होंने सोचा कि हाँ ये तो बहुत काम की बात लिखी तालिब अंसारी जी ने। तो तालिब अंसारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हम कहना चाहेंगे आपने बहुत प्यारी प्यारी बातें लिख दी, एक नहीं कई बातें लिख दी, और उसके साथ हम बहुत ही प्यारा सा गाना भी आप तक पहुंचा रहे हैं, तो क्यों देर करें, चलिए पहुंचाते हैं इस गाने को।

कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि वो हमारे बहुत ही दूर से उन्होंने फ़ोन किया था, देहरादून से सुकांत कंबोजी का मेल था, फ़ोन था, और मे बी वो फिर से ट्राई करें फ़ोन को। देहरादून से लखनऊ एफएम रेनबो को सुन रहे हैं वो, उनका बहुत बहुत शुक्रिया हम कहना चाहेंगे अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुंची है। प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे, इनफैक्ट उनको सुबह से प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, देहरादून में रह के वो लखनऊ एफएम रेनबो को सुनते हैं, ये थोड़ी सी दिलचस्प और बहुत ही अच्छी सी बात है। तो सुकांत जी आप फिर से ट्राई करिए, हो सकता है आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाए और आपकी बात को हम जरूर ऑन एयर करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ किन का मेल आ चुका है, गुलफ शाह सिद्दीकी जी का मेल आ गया है। रहता मैं संडीला से मुझे ये प्रोग्राम सुन रही हूँ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में, और जितने लोगों के मेल आए उनके भी हम शामिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब वारिस अली खान जी का मेल आ गया, लिखते हैं आधा वर्ष है, थोड़ा डूबूंगा जरूर मैं फिर तैर जाऊंगा, थोड़ा डूबूंगा जरूर मैं फिर तैर जाऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। बहुत अच्छी लाइनों में आपने काफ़ी गहराई तक की बात इसमें भेज दी आपने, बहुत खूबसूरत लाइनें आपकी लिखी हुई। और लिखते हैं सुगंध माटी की, आपने शो को बहुत अच्छा किया। अगर मैं कहूं कि इस महीने का अब तक का सबसे बेहतरीन शो जो आज का था, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अरे आपके सुनने का अंदाज है, नज़रिया है। और लिखते हैं संदेश ये है कि लोगों को सुनाने के लिए आपकी आवाज़ बुलंद मत कीजिए, लोगों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद मत कीजिए, बल्कि अपना किरदार इतना ऊंचा बनाइए कि लोग आपकी आवाज़ सुनने की तमन्ना रखें। एडवोकेट वारिस अली खान संजय नगर ऐशबाग से इन्होंने ये मेल किया है, और आपने छोटे से मेल में काफ़ी बातें लिख दी हैं। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया एफएम रेनबो पर इतने अच्छे संदेश भेजने के लिए। और उसके बाद मोहम्मद साबिर अंसारी जी का भी मेल आ गया है, ये लिखते हैं प्रोग्राम मस्त लग रहा है रत्ना जी, और मेरे दोनों भाई के नाम ले लीजिएगा, आसिफ अंसारी हैदराबाद से, तालिब अंसारी राजा कटरा से, तो दोनों का नाम हमने शामिल कर लिया है, और आपका मेल भी हमने आपका भी नाम ऑन एयर कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। सुशील कुमार यादव जी का भी मेल आया है, वक्त ने तमाचे, लिखते हैं वक्त ने तमाचा मारकर समझाया एक रोज़, वक्त ने तमाचा मारकर समझाया एक रोज़, अच्छे उतने ही बनो जितने में बेवकूफ ना लगो। अच्छा, इस बात को कहीं हम रिलेट कर गए तो मुझे अच्छी बात आपने लिखी है कि कभी कभी समय के साथ खुद को बदलना भी पड़ता है। सुशील कुमार यादव कर्नैलगंज गोंडा से इन्होंने मेल किया है, बहुत धन्यवाद आपका मेल करने के लिए। मोइनुद्दीन अंसारी जी का मेल आया है, उन्होंने पूछा हम कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, अंसारी हस्बा अंसारी श्रीनगर लखीमपुर खीरी से मेल कर रहे हैं, और हम संदेश ये देना चाहते हैं कि ज़िंदगी में हम कभी हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, यकीनन एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जी बिल्कुल, आपकी सोच बिल्कुल ठीक है और बहुत अच्छी है, और लोगों को भी इस पर अमल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। संदेश आपके गीत हमारे बहन रत्ना शुक्ला जी के साथ, विजय पाल यादव जी ललहुआ लखीमपुर खीरी से लिखते हैं कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, इसके पहले वाले कार्यक्रम में तो आनंद ही आ गया। अच्छा दीदी जी, संदेश है कि इतनी बड़ी पानी की दिक्कत होते हुए भी आज भी देहात में लोग पानी की टोटी खुला छोड़ देते हैं, कृपया ऐसे ना करें। जी देहात हो चाहे शहर हो, कहीं भी हो, पानी की टोटी अपना काम होने के बाद आपका ही फर्ज है कि आप उसको बंद करें और पानी को सेव करें, चूँकि इतनी गर्मी और इतनी में पानी तो हर हाल में ज़रूरत होती है, क्योंकि जल ही जीवन है। प्रेषक हैं विजयपाल यादव, और इनका मेल, इन्होंने कहा मेरा नहीं पढ़ा जा रहा, नहीं आपका मेल शामिल हो गया, आप खुश हो जाइए। एम के राज लखीमपुर खीरी से इन्होंने नमस्कार भेजा, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और संदेश ये है कि हर कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए कई साल, अरे वाह, हर कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए कई साल। और संदेश ये है कि इस समय गन्ने की खेती तथा धान की रुपाई हेतु तैयारी चल रही है, ऐसे में गांव देहात के सभी भाइयों के से हाथ जोड़कर निवेदन कि कृषि में इस्तेमाल होने वाली पॉइजन दवाई को बच्चों और बेजुबान जानवरों की पहुँच से दूर रखें। बहुत अच्छी बात आपने लिखी, और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा गया कि ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती हैं, पॉइजन वाली दवाई का पाउडर दूध जैसा दिखता है, घोलने पर वो दूध जैसा ही लगता है, इसलिए बच्चे और बेजुबान जानवरों की समझ ही नहीं पाते कि दूध समझकर इस्तेमाल भी कभी कभी किया गया है, ऐसी बड़ी दुर्घटना से बचना चाहिए और सुरक्षित जगह पर इसको रखें, सावधानी में ही बचाव है। तो मुनेश कुमार राजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेल करने के लिए। इसके साथ एम के राजी ने 3-4 मेल कर दिए, तो विजयपाल यादव जी का भी मेल हमने शामिल कर लिया। बहन जी ईमेल नहीं पहुंच गया, उसे ऊपर ले आइए, बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपका भी मेल हमने शामिल कर लिया, लखीमपुर से आपने लिखा मेल। आदरणीय जी को नमस्कार, और बहुत अच्छा लग रहा कार्यक्रम, इसके पहले वाले कार्यक्रम में आनंद आ गया। जी आपका मेल हमने शामिल कर लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। जितने भी और मेल आएंगे, तो चूंकि वक्त बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि अगर एक आध मेल आते हैं तो हम ज़रूर उनको शामिल कर पाएँ। और इसके साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पता बढ़ने पर आपके मनोरंजन का, यानी कि एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम पूरा पूरा हमारे पास है, तो कहीं नहीं जाना है, बस जुड़े रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ।

0: चलने चलाने की बात हो रही है तो ये बेला ऐसी है कि हम तो फिलहाल आज के लिए चलते हैं यहाँ से, यानी कि एफएम रेनबो के स्टूडियो से रत्ना शुक्ला लेगी इजाजत और अगले कुछ घंटे आपको लुत्फानंदोज करने के लिए जरीना स्टूडियो आ चुकी है। जरीना थोड़ा सा नजदीक आई है और लोगों
1: हाल है
0: हालचाल बहुत बढ़िया है। प्रोग्राम करने एक बार बैठ जाए तो उठने का मन ही नहीं करता, ये हॉट सीट है
1: और यहाँ से जाने का तो आपका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा क्योंकि बाहर जो मौसम है ना
0: गजब धारा है,
1: बहुत गजब धारा है और ये थोड़ा सा नेगेटिव है, स्क्रॉचिंग हीट है कि मतलब आप बाहर निकलेंगे मन करेगा वापस स्टूडियो भागे।
0: वाह, तो देखिए अब मुझे भी नहीं पता मैं थोड़ा सा जाऊंगी ये ठंडक होने पर तब जाऊंगी, मुझे भी नहीं पता ये जगह ऐसी है यहाँ आते ही दिल लग जाता है। तो चलिए सभी दोस्तों से यही कहना है कि आप लोग बने रहिए, सुनते रहिए, अगले प्रोग्राम में भी जरीना रहेंगे आपके साथ कुछ घंटे। तो फिलहाल रत्ना को आज के लिए दीजिए इजाजत। जितने लोगों ने मेल किया इस प्रोग्राम में, जितने लोगों ने फोन किया, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे से रत्ना शुक्ला लेती है इजाजत। टेक केयर।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भेजेंगे। इससे उत्तर प्रदेश के 2,17,00,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे 4,352,40,00,000 रुपए भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त के वितरण के दौरान झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में रहेंगे। मुख्यमंत्री यूपीए ग्रीच परियोजना खरीफ संस्करण का शुभारंभ भी करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे योग सप्ताह के अंतर्गत आज अमरोहा में विकास भवन परिसर में आयुष विभाग द्वारा अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम जनमानस को कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया गया। इस मौके पर प्रतिभागियों को सूक्ष्म व्यायाम, विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास कराया गया। साथ ही आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5,36,00,000,00,000 डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विभिन्न देशों की मशीनरी, परिधान, चमड़े के सामान, गलीचा और बहुमूल्य रत्नों का निर्यात कर रहा है। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एएम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट के उभरने के बाद अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए टीम में हैं। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: जनाब अली,
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
5: RHL गोल्ड, TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

दीदार तो नहीं हो सकता आपका, लेकिन हाँ हमारी मुलाकात जरूर होती है भाई। आप अपने प्यारे प्यारे मेल्स हमें भेजते हैं और हम अपनी आवाज के जरिए आप सभी के साथ जुड़ते हैं। बस यही बहुत है हम सभी को खुश रखने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 100.7 FM रेनबो पर। 12:11 का वक्त, मतलब 12:11, ये टाइम भी कैसा चल रहा है। खैर सेकेंड जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, 48, 39, 50, ये देखिए तो बस इसी तरह से टाइम चल रहा है और आपका हमसे मिलना यहाँ पर हो चुका है। सैटरडे है तो ये जो प्यारे प्यारे से वाइब्स आते हैं ना छुट्टी वाले, वो बिल्कुल शुरू हो जाते हैं। सैटरडे मॉर्निंग्स है एंड आई नो आप लोग की भी जिंदगी में ऐसा ही होता होगा। मतलब मंडे का जो एक लो फीलिंग होती है ना, वो सैटरडे संडे को जाकर के बिल्कुल सही हो जाती है। खैर बहुतों के ऐसे हैं शायद छुट्टी ना भी हो सैटरडे को, लेकिन वाइब्स हमेशा सैटरडे अच्छी दे रहा होता है। संडे से ज्यादा अच्छी वाइब्स सैटरडे को मिलती है एंड आई एम श्योर आप उसी वाइब्स को जरूर इंजॉय कर रहे होंगे। और इसी के साथ बिल्कुल रेडी हो जाइए क्योंकि सैटरडे को हम 12 बजे लेकर आते हैं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम फैमिली फन। अच्छा छुट्टियां थी, गर्मियों की छुट्टियां ऑलमोस्ट अभी ख़त्म होने वाली और सब लोग कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे। कुछ लोग नानी मामी चाची के घर गए होंगे, कुछ कहीं बाहर गए होंगे, कुछ आसपास भी शायद घूमने गए होंगे। और घूमने जाओ जब और उसके बाद वहां से वापस आओ तो एक चीज़ माइंड में ज़रूर रहती है कि आप भैया दुनिया घूमाओ, कहीं भी हो आओ, कितने भी दिन क्यों ना रह रहा हो, एक चीज़ जो हमेशा आपको मिसिंग रहती है लाइफ में, एक चीज़ जहां आकर आपको सुकून मिलता है, एक चीज़ या एक जगह जो आपको लगता है आपकी अपनी है, वो होता है हमारा घर, हमारा परिवार और हमारे परिवार के लोग, है ना। ये बिल्कुल सही चीज़ है और यही हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और इन्हीं को मिलाकर हमारा ये प्रोग्राम भी बनता है जिसको हम कहते हैं फैमिली फ़न। तो बस आज की फैमिली फ़न में भी हम ऐसे ही कुछ बात करने वाले हैं कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ हमारे रिश्ते हैं और किस तरह हम अपने घर के लोगों से जुड़े होते हैं, जो शायद एक ऐसा रिश्ता है जिसको हम चाहकर भी कभी भी खटास के वे में नहीं ले जा पाते, है ना। तो चलिए बहुत सारी बातें करेंगे बट फिलहाल अगला गाना आप सभी के लिए और इसी के साथ बहुत सारी बातों और बहुत सारे गानों का जो यहाँ पर मेरे पास पिटारा है उसको भी मैं आपके लिए खोलूंगी। तो फिलहाल अरिजीत की आवाज़ में इस ट्रैक को इन्जॉय करिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। और हाँ शायद मैं बताना भूल गई हूँ क्योंकि रत्ना जी पहले ही बता के गई हैं कि इस वक्त है आपकी दोस्त जरीना आप सभी के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना। टोल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

भाई एक चीज तो हमेशा से ही आपको माननी पड़ेगी और जिंदगी की रियलिटी भी है कि भाई परिवार सिर्फ कुछ लोगों का साथ नहीं होता, बल्कि भावनाओं, विश्वास, त्याग और प्यार, ये सारी चीजों का एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है, एक खूबसूरत सा संसार होता है जो हमारी जिंदगी को मायने देता है। हमारी माँ की ममता, पिता का संरक्षण, दादी, नानी और ये परिवार के जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनका स्नेह, भाई बहनों का साथ और बच्चों की मुस्कान, हर रिश्ता अपने आप में बेहद खास, बेहद अनमोल होता है। और जब कहते हैं ना कि किससे ज्यादा प्यार किया जाता है, मतलब हर परिवार में ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं, तो शायद यहीं पर प्यार जो है वो उसकी डेफिनेशन या उसका दायरा फेल होता है, क्योंकि आप इस चीज को तोल नहीं सकते हैं। हर एक इंसान की अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी एक अहमियत होती है हम सभी की जिंदगी में, जिसको शायद ऊपर नीचे या ग्रेडिंग करके बयां कर पाना बेहद मुश्किल होता है। भाई अगर हम अलग अलग रिश्तों की बात करें तो सबसे पहले आ जाती है हमारी माँ, मतलब हम सभी की माँ। और माँ ये सिर्फ एक शब्द नहीं होता, बल्कि दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए हर तकलीफ को मुस्कुरा कर सह कर जाती है, और शायद उस चीज़ का कभी हम सबको एहसास भी नहीं होने देती है। उसकी दुआएं हमारे लिए, हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए ढाल बनती है, और उसका प्यार हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। बचपन में जब हम गिरते हैं ना, तो या संभलने की कोशिश करते हैं या बोलते हैं, और लोग, मतलब समाज में क्या, घर में भी लोग हमारी बातों को समझ पाते, उस वक्त वही होती हैं जो हमको समझती हैं, और वहां से लेकर अब तक वो हमको हमेशा ही हर एक चीज में आगे बढ़ाती हैं, आगे लेकर जाती हैं। तो शायद ये वो रिश्ता होता जो सारी चीजों में, सारे रिश्तों में, हर एक एहसास में सबसे ऊपर आ जाता, और शायद इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो मुझे लगता है बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए आज कोशिश करते हैं कि हर परिवार के जो सदस्य हैं उनकी इंपॉर्टेंस को अपनी ज़िंदगी में समझने की, उनके बारे में कुछ कुछ बातें करने की। और हाँ, एक और चीज़ मैं साथ में कहना चाहूँगी कि अगर आपके परिवार में भी कोई एक

पर्टिकुलर सदस्य जो है वो जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है, जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा शायद अहमियत रखता हो, वो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। आपके मेल्स का इंतज़ार रहेगा और वैसे कुछ मेल्स जो हैं वो आना भी शुरू हो चुके हैं। मतलब मैंने ऐसा कुछ टॉपिक भी आपको नहीं दिया जहां पर आपकी कुछ हमें ओपिनियन चाहिए, तो फिलहाल वो मैंने अब आपको बताया। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, लगातार हमारे FM के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे कि या मोनू सेठ जी, आपने भाई हमारा वेलकम कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राजन शर्मा जी का भी मेल यहाँ पर आया लेकिन उन्होंने गाने की फरमाइश की है। और ऐसे ही हम पूरी उम्मीद में हैं कि आप भी अपनी जो भी परिवार के प्यारे प्यारे लम्हे हैं, कोई बहुत ख़ास इंसान है आपकी ज़िंदगी में या कोई ऐसा बहुत बड़ा सपोर्ट है तो वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करिए। हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। फिलहाल ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, आप सभी के रेडियो सेट पर इंजॉय करिए इसको और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: जी हाँ दोस्तों, 100.7 FM रेनबो पर इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है फैमिली फन। और देखिए 12:31 का वक्त ऐसे भागते भागते होता जा रहा है कि मतलब वक्त को पकड़ना सीरियसली बड़ा मुश्किल होता है। खैर आपको एक अपडेट दे देते हैं कि कल यानी सेम टाइम पे 12 बजे से और 12 से 1 के बीच में आप हमारा स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस सुनेंगे। और आपको बता देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम रहेगा ये। श्री कृष्ण दत्त मिश्रा जी, जो कि एक योगाचार्य हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से, वो रहेंगे आपके साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो बस प्रोग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कल दोपहर 12 बजे। और इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि कार्यक्रम आज के मेहमान में श्री रंजन कुमार जी रहेंगे, जिससे आप जिनकी वार्ता सुन सकते हैं सुभाष खन्ना जी के साथ। और श्री रंजन कुमार जी प्रमुख सचिव हैं आयुष विभाग उत्तर प्रदेश के। तो ये कार्यक्रम भी 21 जून को सुबह 10 बजे सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी के साथ भाई आपको बता देते हैं कि प्रोग्राम फैमिली फन में और ये जो परिवार की बातें होती वो चल रही है, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं कि हर रिश्ते की हमारी जिंदगी में एक अलग, एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, जिसको शायद अलग तरह से बयां करना, अलग तरह से कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ मेल्स भी मैंने कहा था, अगर आप किसी परिवार के पर्टिकुलर सदस्य के लिए कुछ भेजना चाहते हैं तो जरूर हमें लिखकर भेजिएगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एक ही बात लिखकर दी है कि भाई माँ का रिश्ता दुनिया के सभी रिश्ते से सबसे ऊपर हो जाता है। भैया मोनू सेठ जी ने भी मेल लिख दिया है कि भाई माँ का रिश्ता दुनिया से सबसे ऊपर है, सबसे पवित्र रिश्ता है, अनमोल और निस्वार्थ रहता है। ये केवल एक जैविक बंधन नहीं बल्कि प्रेम, सुरक्षा, त्याग और जीवन के पहले मार्गदर्शन का प्रतीक है। इसी के साथ साथ और भाई किसका किसका मेल आया हुआ है। पिंकू सोनी जी ने लिखा है कि मैम जी सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी, मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा मेरी माँ का ही अहम रोल होता है, मेरे साथ नहीं है। सो इन्होंने लिखा है थैंक एट माय मेल, टिकैत नगर बाराबंकी से ये मेल इन्होंने लिखा है। और पिंकू जी, मैं मानती हूँ कि इस समय या आज के समय में आपकी माँ आपके पास नहीं है, लेकिन ये वो रिश्ते होते ना जो शायद हमेशा ब्लेसिंग बनकर हमारे साथ रहते हैं। उनका एहसास ही बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल लिखने के लिए और इतनी प्यारी प्यारी बातें लिखने के लिए। और इसके अलावा और भी मेल यहाँ पर आए हुए हैं। मैम जी सादर प्रणाम, ओके ओके, पिंकू जी आपने फिर से वही सेम मेल लिख दिया है तो मैं दोबारा इसको नहीं लेती हूँ। लेकिन ऑब्वियसली माँ का जो रोल है हमारी ज़िंदगी में वो सबसे बड़ा होता है। लेकिन हाँ, अगर हम परिवार की और हम सभी की छत की बात करें, हौसलों की छत की अगर हम बात कर लें, तो उसमें एक नाम जो सबसे ऊपर आ जाता है ना, वो होता है पिता का, फादर का, यानी हम सभी के पापा का नाम।

भाई पिता जो है या जो पापा है हमारे वो परिवार का वो मजबूत स्तंभ होते हैं जिनके सहारे पूरा घर खड़ा रहता है ना। शायद आपके साथ भी यही चीज़ होता होगा, आप इनको अज्यूम करके देखिए। तो अक्सर जो हमारे फादर होते हैं, हमारे पिता होते हैं, अपने जज्बात कम जाहिर करते हैं, लेकिन उनकी हर चिंता, हर मेहनत, हर संघर्ष अपने परिवार के लिए ही होता है। वो खुद धूप में खड़े रहते ताकि उनके बच्चे कभी धूप में ना आए, है ना। उनके सपनों में अक्सर अपने बच्चों का भविष्य बसा रहता है और पिता का प्यार शायद माँ की तरह दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी जो गहराई होती है किसी समुंदर से कम नहीं होती। जब भी हम जिंदगी में किसी भी मुश्किल का सामना करते हैं तो पिता की दी हुई सीख और उनका भरोसा हमें हमेशा आगे बढ़ने का हौसला देता है। तो बस यही चीज़ है कि हर परिवार का जो रिश्ता है वो अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है। और भाई इंडियन फैमिलीज़ की बात ही हम क्या कहें, हमारा ये जो परिवार है, हमारा जो रिश्ता है ना, वो वहाँ से शुरू हो जाता है जहाँ पर पापा की डांट मार, मतलब लड़कियों को तो नहीं पड़ती लेकिन लड़कों को तो जमकर पड़ती है, वहाँ से लेकर वो मोमेंट भी जहाँ पर एक इंसान, एक लड़का और एक बच्चा अपने पापा के लिए, अपने माँ के लिए और अपने पिता के लिए रो देता है ना। तो बस ये रिश्ते कुछ ऐसे ही हैं, खट्टी मीठी यादों से भरे हुए। तो चलिए आप भी हमारे साथ शेयर करिए और भी अपने जो भी फीलिंग्स हो अपने परिवार के किसी भी पर्टिकुलर सदस्य को लेकर, जो भी आप कहना चाहें, fmakashwanilakhnow@gmail.com पर कहिएगा। और एक हाँ चीज़ बहुत मुझे इम्पॉर्टेंट लगती है हम सभी की ज़िंदगी में, कि अगर आप किसी से भी जुड़े रहना चाहते हैं ना ताउम्र, आपको लगता है कि वो इंसान आपके लिए ज़रूरी है और आप उस चीज़ का एहसास उस इंसान को नहीं करा पा रहे, तो बस एक छोटा सा काम करिए, उस इंसान से हमेशा उसकी खैरियत पूछते रहिए। और हाँ, ये भी कोशिश करिए कि वो जवाब में सिर्फ ये ना कहे कि हाँ भाई सब बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है, जो उसके दिल की बात हो, जिस तरह का वो इंसान उस हालात में हो वो आपको बता सके। तो ये खैरियत पूछना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है हर किसी की ज़िंदगी में। बस ऐसा ही कुछ ये गाना भी है, इंजॉय करिए इस गाने को, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, आपकी दोस्त जरीना के साथ।

जी हाँ दोस्तों, 100.7 FM रेनबो पर इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है फैमिली फन, और आज हम बात कर रहे हैं कि भाई हम सभी की जिंदगी में अपने परिवार के सदस्यों की जो अहमियत होती है वो बिल्कुल अलग अलग तरह से होती है, और हम वही आपसे जानना भी चाह रहे हैं कि आपके किसी पर्टिकुलर सदस्य की आपके परिवार में आपको क्या लगता है, क्या इंपॉर्टेंस है। वैसे मेल्स यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपनी बात कहूँगी। एक्चुअली होता है क्या है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, कुछ ऐसी कैटेगरीज होती जिनको बच्चे बड़े पसंद होते हैं, और कुछ को लगता है ना कि भैया बच्चे हमसे दूर ही रहें तो बेहतर है। मतलब कुछ को लगता है कि बच्चे बड़े इरिटेटिंग होते हैं। लेकिन एक सही बात जो है, जो हमारी इंडियन सोसाइटी में है, हमारी इंडियन फैमिलीज में है, वो ये है कि बच्चे जो हैं वो ऑब्वियसली हर घर की, हर परिवार की रौनक होते हैं, है ना। अगर हम असली रौनक की बात करें, असली चहल पहल की घर में बात करें, तो वो बच्चे ही होते हैं। आप कभी अज्यूम करके देखिए कि जिस घर में बच्चे हैं, और अगर 2-3 घंटे के लिए भी वो बच्चे अगर गायब हो जाएं, कहीं घूमने चले जाएं, और आप उस घर में एंटर होकर देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कितना सन्नाटा है इस घर में। मतलब घर की दीवारें ना काटने को एकदम दौड़ती हैं, तो बच्चों की जो चहचहाहट है, या जो उनकी किलकारियां हैं, या जो उनकी शरारतें हैं, वो हमेशा से ही हर परिवार के लिए एक बहुत ही बड़ी चमक का काम करते हैं, जो हमेशा बढ़ती ही जाती है। बच्चे बड़े होते हैं, उनकी हरकतें, उनकी बातें, उनकी चीज़ें बढ़ती हैं, जो परिवार को एक बहुत अलग तरह से बांधे रहती हैं, है ना भाई। जब हम बात करते हैं ना बच्चों की हंसी, उनकी शरारतों की, उनकी मासूम बातों की, तो ऑब्वियसली देखा जाता है कि खुशियां बिखेर देती हैं। वो हर किसी की ज़िंदगी में होता है, और अगर आप कितने भी उदास क्यों ना हो, आप बस आधा एक घंटा बच्चों के साथ बिता कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी कितनी प्यारी है, कितनी मासूम है, कितनी एक्साइटमेंट्स के साथ भरी हुई है। तो चलिए इसी के साथ भाई अगला जो मेल है वो शामिल कर लेती हूँ। रविंद्र सिंह ने हमें मेल लिखा है राजेंद्र नगर लखनऊ से। अरे वाह, पास से ही ये मेल आ गया है, और इन्होंने जो लिखी है बात, वो ट्रस्ट मी मुझे बहुत बड़ी और बहुत ज़रूरी बात लगती है। इन्होंने लिखा है कि जो घर के बुज़ुर्ग हैं वो अनुभवों का ख़जाना होते हैं। उन्होंने लिखा है घर में दादा दादी या नाना नानी को होना किसी भी बरकत से कम नहीं होता। उनकी कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि जीवन को अनमोल सबक सिखाती हैं। उनके पास अनुभवों का ऐसा खजाना होता है जो पीढ़ियों को जोड़कर रखता है। उनकी बातें, उनका स्नेह और उनकी दुआएं परिवार की सबसे बड़ी पूंजी होती है। और आगे ये लिखते हैं कि बचपन में उनकी गोद में बैठकर सुनी गई कहानियाँ, उनके हाथों का प्यार शायद ही कभी भुलाया जा सके। वो परिवार की उस जड़ की तरह होते हैं जो हर सदस्य को अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से जोड़े रखते हैं। तो बस ये लिख कर दिया है रविंद्र सिंह ने, और सीरियसली ये बहुत ही बड़ी बात लिख कर दी है। मतलब आज के समय में शायद ही कोई इस चीज़ को समझ पाए, लेकिन ये रियलिटी है। आप अगर नहीं भी समझेंगे, समझने से इनकार करेंगे, तो आप इस सच्चाई को कभी भी नकार नहीं सकते हैं कि जो परिवार है, जो परिवार के बुज़ुर्ग हैं, वही हमें हमारी संस्कृति, हमारे समाज, हमारे परिवार से जोड़ते हैं। वो उस जड़ की तरह होते हैं ना कि जो अगर मजबूत नहीं होगी, जो नहीं होगी, तो शायद वो पेड़ ना बन पाए, उस पेड़ पर फल फूल ना आ पाए, और उसमें हरियाली कभी नहीं आ सकती। तो थैंक यू सो मच रविंद्र जी, आपने इतना प्यारा मेल लिखा और इतनी प्यारी बात उसमें लिख कर दी। और इसी के साथ और भी मेल्स आए हुए हैं जी। किसका मेल है? ये अमेठी से मेल आया हुआ है, ग्राम गौतमपुर से, और मेल क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल जो अगला गाना है वो आप सभी के रेडियो सेट तक पहुंचाऊंगी। तो बस भाई बहनों की बात हुई, उनके रिश्तों की बात हुई, उनके रिश्तों की चमक की बात हुई, तो ये गाना कैसे ना आए, ऐसा हो नहीं सकता।

जी हाँ, इतना प्यारा सा गाना है, तो बस बिल्कुल रेडी हो जाइए इस गाने को एंजॉय करने के लिए श्रेया घोषाल की आवाज में। और जब तक आप इस गाने को एंजॉय करते हैं, मैं बस देखती हूँ अगला क्या आपको सुनाऊं, क्या बातें करूंगी, और जो मेल है वो बस शामिल करने की तैयारी करती हूँ। फिलहाल सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, आपकी दोस्त जरीना के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
4: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,

जी हाँ दोस्तों, 12:50 का वक्त हो चला है, प्रोग्राम चल रहा है फैमिली फन, और फैमिली फन में बहुत सारी बातें आपके साथ हो रही है। और भाई जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने गाना सुना रक्षाबंधन फिल्म का, ऑब्वियसली उसको सुनते हुए एक चीज जो मुझे लगता है जो कभी भी मिस आउट नहीं हो सकती है, जो कहीं से भी कम नहीं हो सकती है, वो है भाई बहन का प्यार। भाई बहन का जो रिश्ता है शायद दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता होता है ना, सबसे स्पेशल, सबसे डिफरेंट, जिसमें दोस्ती भी होती है, लड़ाई भी होती है, शिकायतें भी होती है और बेशुमार प्यार भी होता है। बचपन की शरारतें हों, छोटी छोटी नोकझोंक, या फिर एक दूसरे को परेशान करने की जो अनगिनत किस्से हैं, यही यादें जिंदगी भर चेहरे पर मुस्कान लेती आती है ना। आप भी शायद इस चीज़ को कोरिलेट कर सकते हो ना, कि मतलब बचपन में आपने अपने भाई से, अपनी बहन से जिस तरह से लड़ाई की होगी ना, मतलब ये मार, वो उठाओ पटक, ये वो, तो अगर जब बड़े हो जाते हैं ना, कुछ टाइम उस चीज़ को बीत जाता है, या जब आप अच्छी एज में आ जाते हैं, आपको लगता है कि अब ये सब नहीं करना, तब वो किस्से जब आप याद करते हैं तो सीरियसली वो लाइफ के सबसे फन लविंग मोमेंट्स हो जाते हैं ना। कितनी भी क्यों ना बहस हो जाए भाई बहन से, लेकिन मुसीबत के समय वही जो है वही सबसे पहले काम आते हैं, साथ खड़े दिखाई देते हैं, और यही वो लोग होते हैं जिनसे हम अपने दिल की हर बात को आसानी से शेयर कर लेते हैं। मतलब लड़ाई झगड़ा हो भी रहा है तो भी हमें पता होता है कि ये फला बंदा, मतलब मेरी बहन या मेरा भाई, जाके मम्मी पापा को ज़रूर कान में ये बोल देगा या नहीं बोलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम सभी के माइंड में हमेशा चला करती हैं, और एक वक्त के बाद यही सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत रिश्ता बनता जाता है। तो चलिए गाना अगला हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेल्स भी यहाँ पर कुछ आए हुए हैं, तो उनको भी शामिल कर लेती हूँ। मैं सौरभ उत्तर प्रदेश जिला मेठी ग्राम गौतमपुर से ये लिख कर दिया है सौरभ जी ने, और लिखते हैं मैम जी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। इन्होंने लिखा है हम भी अच्छे हैं, आशा है कि हम सब अच्छी हों, बिल्कुल सब ऑब्वियसली बिल्कुल अच्छे होंगे। इन्होंने लिखा है कि हमने दो लाइंस लिखी हैं, ये लाइंस हमने खुद लिखी हैं, तो लाइंस कुछ इस तरह है कि कुछ गुजारिश है रब से कि कभी दूर ना होवे वो हमसे। आप समझ रहे हो ना, हम सब समझ चुके हैं कि इन लाइन्स से और कुछ नहीं कहूँ, मतलब इन्होंने ये पर्टिकुलर लाइन्स लिख दी हैं और आगे लिखते हैं कि मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। और हम दो लोग आपको सुन रहे हैं, प्रिंसी और सौरभ, बाकी सभी लोग इनके घर में सो रहे हैं, और हम आपका प्रोग्राम सुनते सुनते मैथ्स के सवाल हल कर रहे हैं। क्या बात है, मतलब इंटरटेनमेंट के साथ स्टडीज़ भी आप करते जा रहे हैं। तो चलिए अपने आप सवाल हल करते करते इतनी प्यारी आपने बात लिख दी, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मेल लिखने के लिए। नेक्स्ट है अंशु गुप्ता जी, लिखते हैं मैम नमस्ते, मैं नारायण गुप्ता, ओके मेल आईडी अलग है, अंदर इन्होंने नाम लिखा हुआ है कि नारायण गुप्ता टिकैत नगर से हूं। मेरे जीवन में मेरा पूरा परिवार इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए माता पिता का साथ और फैमिली का प्यार हमें मजबूती प्रदान करता है। मेरे दोस्त हैं पिंकू सोनी, ओ पूरा परिवार, पूरे दोस्त सब मिलकर मेल कर रहे हैं। पिंकू सोनी जी का पहले भी मेल आ चुका है और उनका नाम जरूर ले लेना, इन्होंने लिखा है, उन्होंने हमें रेडियो सुनने के लिए प्रेरित किया है। इन्होंने लिखा है कि ऐड माई मेल, तो देखिए आपका मेल जो है वो ऐड हो चुका है। और पिंकू जी थैंक यू सो मच, आप जिस तरह से प्रमोट कर रही हैं हमारे चैनल्स को, हमारे एंकर्स को, हमारे प्रोग्राम्स के लिए, वो बहुत बहुत शुक्रिया। और अंशु गुप्ता जी का फिर से भी मेल आया, तो दोबारा नहीं पढ़ते हैं। सोनू परवाना जी क्या लिखते हैं, हमारे सभी बहनों की शादी हो गई है, वैसे इस समय एक बहन मेरे पास है क्योंकि गर्मियों में घूमने आई है और सबसे मिलने आई है। आंचल सेठ ने ये मेल लिखा हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया सेठ फैमिली, वी आर सो प्राउड कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं। और आगे इन्होंने लिखा है कि अगले मेल में एक्चुअली लिखा है कि बहन चाहे सिर्फ प्यार दुलार नहीं मांगती,

बड़े उपहार रिश्ता बना रहे सदियों तक, मिले भाई को खुशियां हजार। बहुत प्यारी बात लिखी है भैया मोनू सेठ जी। क्या लिखते हैं, भाई और बहन का रिश्ता बना कर रखें, क्योंकि जैसे भाई भाई जैसा भाई दोबारा नहीं मिलता, और मेरे भैया मेरा अभिमान है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू सेठ जी। और देखिए, पता है बहुत बार क्या होता है ना, कि ये जो बातें आपने लिख कर दे दी ना कि मेरे भैया मेरा अभिमान है, या मेरी बहन मेरी ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है, या मेरी माँ ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है, या मेरे पिता या मेरे दादी दादा, वो बहुत बार ये हमारी परवरिश उस तरह की होती है, या हम उस तरह के माहौल में पले बड़े होते कि हम ये बातें उनको नहीं जल्दी कह पाते हैं। और ऐसे में रेडियो या जो हमारा चैनल है, वो एक बहुत खूबसूरत ज़रिया बनता है, जहाँ पर आप इतनी प्यारी प्यारी बातें आप अपने अपनों तक पहुँचा पाते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत सारी ये बातें लोग अपने, जैसे भैया मोनू सेठ ने लिख दिया ना अपने भाई के लिए, मुझे पता है शायद ही आप कभी ये बात सामने से अपने भाई को बोल पाए, लेकिन जब हमें जरिया मिल जाता ना, तो हम बेझिझक दिल खोल कर अपनी बातें अपने अपनों के लिए, अपने प्यार के लिए कह पाते हैं। तो इतने सारे मेल्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए भी, इतनी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए भी, और हमारी बातें सुनने के लिए भी। और हम यही चाहेंगे कि भाई आपके अपने परिवार में जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी क्लोज्ड हैं आप, जिनके जो आपके अपने करीबी हैं, वो हमेशा आपके साथ रहें, और उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा बनी रहे। तो चलिए अब इसी बात के साथ मुझे दीजिए इस प्रोग्राम से, फैमिली फन से इजाज़त। अगला प्रोग्राम लेकर जल्दी से वापस आती हूँ। फिलहाल ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, दोपहर के एक बज रहे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति की सादगी, विनम्रता, साहस और जनसेवा की प्रतिबद्धता देशवासियों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने पूरे राष्ट्र की उत्कृष्ट सेवा की है और विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए उनका अटल समर्पण बहुत ही प्रेरणादायी है। श्री मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राष्ट्रपति को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर कहा कि ट्रस्ट से अनुरोध है कि सरकार ने एसआईटी जांच बैठाई है। एसआईटी की जांच से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। श्री योगी कल अयोध्या में रुदौली विधानसभा क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय समेत 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी के विरासत और विकास के विजन को साकार करने की दिशा में डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर अग्रसर है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा 2026 के परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन द्वारा कल गोरखपुर लखनऊ गोरखपुर के मध्य दो जोड़ी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। ये सभी ट्रेन पूरी तरह से अनारक्षित श्रेणी की होंगी, जिनमें कुल 12 कोच लगाए जाएंगे। वहीं अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की तरफ से भी विशेष अनारक्षित परीक्षा स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। उधर राजधानी लखनऊ में नीट परीक्षा 75 केंद्रों पर फिर से कराई जाएगी। इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी विशाख जी ने सभी केंद्रों पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। सभी को एक दिन पूर्व केंद्र पर जाकर केंद्र व्यवस्थापक से आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अभ्यर्थियों को बीती रात 12 बजे के बाद से उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों और सिटी बसों के टिकट में 50% की छूट मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योगों के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक।

0: रखूंगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सात रंग का इंद्रधनुष है,
2: सात सुरों की सरगम है,
3: सात जन्म है सात समंदर,
1: सात हमारा हरदम है,
3: जिंदगी के सतरंगी रंग
2: FM रेनबो के संग।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल से किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस स्कीम के तहत मुल्क भर के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बराह रास्त मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़िद एक तकरीब में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की मुराद तकसीम की। उत्तर प्रदेश समेत मुल्क भर के एक वर्चुअल सामेईन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की नौजवान ताकत पर बहस कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि इस स्कीम का मकसद पहली बार मुलाजमत के मुतलाशियों को बाइख्तियार बनाना और नौजवानों और सनत के दरमियान पुल बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस स्कीम से बड़ी तादाद में मुलाजमतें पैदा हुई हैं। जनाब मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के नौजवानों की ख्वाहिशात, हुनर और सलाहियतें तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की राह हमवार करती हैं।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70,00,000 जॉब सृजित हुई है। करीब 20,00,000 युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस पहल के तौर पर लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ और गोरखपुर समेत रियासत के 17 जिला में प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 290 करोड़ रुपए से ज्यादा के 245 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। कबल चीफ मिनिस्टर ने गोंडा में देवी पाटन और बस्ती डिवीजनों के महकमा तामीरात आम्मा के साथ मीटिंग की और 13 बड़ी सड़कों की तरक्की को मंजूरी दी। उन्होंने कुल 4,901,65,00,000 रुपए के 1,000 से ज्यादा तरक्याती मनसूबों की तजावीज को भी मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स ममालिक के साथ तिजारत, टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के रवाबत को बढ़ा रहा है। रियासती हुकूमत ने इतला दी है कि माली साल 2025-26 के दौरान ब्रिक्स ममालिक और शराकत दार ममालिक को 5,36,00,000,00,000 डॉलर से ज्यादा की बरामदात की गई। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के वजीर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आगरा में ब्रिक्स MSME फोरम से खिताब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश मुख्तलिफ ममालिक को मशीनरी, गारमेंट्स, चमड़े के सामान, कालीन और कीमती पत्थर बरामद कर रहा है। रियासती हुकूमत के एक बयान के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक को 3,94,00,000,00,000 डॉलर और पार्टनर ममालिक को तकरीबन 1,43,00,00,000,00,000 डॉलर की बरामदात की गई। आगरा में ब्रिक्स MSME फोरम में ब्रिक्स ममालिक और माइक्रो, छोटे और दरमियाने दर्जे के इंटरप्राइजेस सेक्टर के नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में गुज़िश्ता 12 सालों में गैर मामूली तब्दीली हुई है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के उसूलों पर कार फरमा है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ गुज़िश्ता 12 सालों में अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों को उजागर करने वाले खसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। आज हुकूमत की इन तब्दीलियों के इकदाम के बारे में जानें, जो एक मजबूत हिंदुस्तान के विज़न को पूरा कर रही हैं।
2: सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह

0: काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं।
1: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कल के नीट UG के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुलगीर मॉक ड्रिल करेगी। ये मश्क इम्तिहान से कबल तैयारी के मेयार का जायजा लेने के लिए की जा रही है। दरियस्ता नीट इम्तिहान 2026 के उम्मीदवारों की सहूलत के लिए शुमाल मशरकी रेलवे लखनऊ डिवीजन इंतजामिया की तरफ से कल 21 जून को गोरखपुर और लखनऊ गोरखपुर के दरमियान दो जोड़े गैर महफूज इम्तिहानी खसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। दरियस्ता शुमाली रेलवे लखनऊ डिवीजन भी 21 जून को खसूसी गैर महफूज इम्तिहानी खुसूसी ट्रेन चलाएगा। और महकमे मौसमियात ने आज रियासत के मगरबी इलाकों के कुछ अजला में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है, जबकि मशरकी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। महकमे के मुताबिक अगले 3 दिनों तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी और रियासत भर में मौसम खुश्क रहेगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 100.7 FM रेनबो पर। 1:16 का वक्त हो चला है। जरीना आपकी दोस्त एक बार फिर से जुड़ चुकी है आप सभी के साथ अगला प्रोग्राम यानी होठों पे तेरी बात लेकर। और भाई आप हमेशा से ही जानते हैं, हर रोज आपको वही काम करना होता है। होठों पे तेरी बात में हम एक देते हैं आपको एक टॉपिक और उस टॉपिक पर आपको अपने ओपिनियन, आपकी सोच, अपने विचार हमारे साथ साझा करने होते हैं। तो बस आज ऐसे ही टॉपिक के साथ हम भी बिल्कुल रेडी हैं। वैसे मतलब होता क्या है ना, हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्लानिंग लेके चलते हैं। मतलब कभी कभार तो लाइफ टाइम भी प्लानिंग चलती है कि फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, कल को वो जॉब करने लगेंगे, उसके बाद ये बढ़िया सा मकान बनवाएंगे और वहाँ पर खेत वेत लेके डाल दिया है, उसको बेचेंगे, फिर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ज़िंदगी हमारी पूरी सेट है ना। बहुत बार कुछ और भी प्लानिंग चल रही होती है कि भाई ये एग्ज़ाम देने के बाद ये पढ़ाई किया है, अब वो एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद जॉब लग जाएगी, लाइफ सेटल है, शादी वादी कर लेंगे, बच्चे हो जाएंगे, बस उसी तरह ज़िंदगी चलती रहेगी। तो बहुत सारे लोग और लगभग सभी लोग कुछ ना कुछ ज़िंदगी में प्लानिंग लेकर चलते हैं। ये तो होगी लंबी प्लानिंग, कुछ लोग तो अगले 2-3 महीने की भी प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई फिलहाल ये काम कर रहे हैं, अगले 2 महीने के बाद वो मकान बनवाएंगे या ये चीज़ ऐसे करेंगे वो करेंगे और हमारी लाइफ ऐसे चल रही। तो बहुत बार ये होता है कि हम बस सोचते विचार करते रहते हैं और होता कुछ भी नहीं है जैसा हमने सोचा होता है। तो आज मैंने क्या सोचा है कि प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में यही बात शेयर करिए आप। आपको क्या लगता है कि हमारी ज़िंदगी वैसे ही चलती है जैसा हम सोचते हैं? आपको क्या लगता है, अब तक आपने जो ज़िंदगी बिता ली है वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसा आपने पहले सोचा था कि इस तरह की आपकी ज़िंदगी होगी जो अब आप बिता रहे हैं? या इतना सोचना, विचारना, इतनी प्लानिंग करना, ये सब व्यर्थ है, ये सब यूज़लेस है। मेल करिए हमें fmakashwani@gmail.com पर, और ये LUCKNOW वाला लखनऊ है, LKO मत लिखिएगा, मेल नहीं पहुंचेगा हमारे पास। फटाफट से बताइए आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी वैसी ही है जैसे आपने सोचा था, और अगर नहीं है तो ऑब्वियसली हमारा इतना सोचना, इतना समझना, इतना प्लानिंग करना, ये सब बेकार है। मेल जब तक आप टाइप करेंगे तब तक हम अगला गाना आपको सुनवाएंगे। तो ये रहा प्यारा सा गाना आप सभी के रेडियो सेट पर, इन्जॉय करिए इसको और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की आपकी दोस्त जरीना के साथ।

जी हाँ दोस्तों, फिल्म खट्टा मीठा का ये प्यारा सा खट्टा मीठा सा ट्रैक था आप सभी के रेडियो सेट पर। इसी के साथ 1:23 का वक्त हो चला है, प्रोग्राम चल रहा है होंठों पे तेरी बात, और आपकी बात जो है वो लगातार हम तक पहुंच रही है। हम पूछ रहे थे आपसे कि क्या भाई जिंदगी वैसे ही होती है जैसा हम सोचते हैं, तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मेल्स आने शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं ज़रूर एक बात कहूँगी कि भाई ज़िंदगी की सबसे दिलचस्प बात ही यही है कि ये हमें अक्सर वहाँ लेकर जाती है जहाँ जाने के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता है। मतलब वही होता है ना कि हम जो सोचते हैं वो हो ही नहीं पाता है, जो नहीं सोचा होता वो ऐसा अनएक्सपेक्टेड वे में होता है कि लगता भैया ये तो कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था, है ना। कई बार हम जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं वो बंद हो जाते हैं, लेकिन उसी बंद रास्ते पर कोई ना कोई नया रास्ता हमारे लिए खुल जाता है। कई बार जो चीज़ हमें उस वक्त हारी हुई सी लगती है वही बाद में हमारी सबसे बड़ी जीत बन जाती है, ताकत बन जाती है। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है मेरी लाइफ में

प्लानिंग के साथ चीज़ें कुछ भी नहीं हुई हैं। जो चीज़ें जैसी होती जाती हैं बस उसको पॉजिटिव वे में लेते जाइए, बस ज़िंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है। और ऐसे ही बहुत सारे मेल्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहला मेल जो आया था वो था किसका, पिंकू सोनी जी, बहुत देर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आई एम श्योर उससे पहले भी प्रोग्राम्स में ये जुड़ी ही रही होंगी। लिखा इन्होंने, मैम जी सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी, मेरा मन है कि जो हम सोचते हैं वो करते हैं, पर जो होता पर होता वही है जो भगवान चाहता है। बट इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है इनको और मेरा मेल इन्होंने लिखा शामिल कर ले, टिकैत नगर बाराबंकी से है इनका ये मेल और नाम इन्होंने चाहा है कि कुछ हम ले ले, कुलदीप जी, उधौल आकाश जी और ये कौन है, मुरारपुर रिंकी पिंकी से, अच्छा मुरारपुर से रिंकी पिंकी और गुलाबशाह और सभी लिसनर्स। तो पिंकू सोनी जी मैं थोड़ा सा कहूँगी कि आपका मेल थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा आप कॉमा फुल स्टॉप लगा देंगे तो हमें समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कभी कभार आपके शब्द मुझे थोड़ा सा मेरे मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से सर से निकल जाते हैं। खैर मेल आपका पूरा मुझे समझ में आ गया और मैंने आई होप सारे नाम भी ले लिए हैं। और ये देखिए देखते देखते इतने सारे मेल्स आ चुके हैं तो फटाफट से मैं इनको शामिल कर लेती हूँ। लिखते हैं सुल्तान राजा जी, हेलो जरीना, अस्सलाम वालेकुम, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से, सुल्तान रज़ा, इकबाल रज़ा, ज़ीशान रज़ा, अफजल रज़ा, मोनिश रज़ा, सादिक रज़ा, मम्मी पापा, मैम आज तक का रिकॉर्ड रहा है मेरा, मैंने जो भी सोचा है वो मेरे साथ कभी नहीं हुआ ये इन्होंने लिख कर दिया है। और आगे लिखते हैं कि लेकिन उल्टा उसका ज़रूर होता है, कश्मीर जाएंगे घूमने, इन्होंने प्लान बनाया था लेकिन ऐसा हुआ कि जाने को ही नहीं मिला। फिर उसके बाद लिखते हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन के जाने को मिला, सिर्फ इसलिए मैंने अब सोचना बंद ही कर दिया, मतलब जो इन्होंने सोचा था वो हुआ नहीं, जो नहीं सोचा वो हो गया, तो सोचना बंद कर दिया इन्होंने। ये बहुत अच्छा है, मतलब देखिए जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है ना, मतलब हमारी ज़िंदगी, हमारा फ्यूचर, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसके बारे में ना उतना दिमाग लगाने से कुछ नहीं होगा, बस आपका दिमाग ही खर्च होगा। तो बेटर हम सभी को इसी तरह सोच लेना चाहिए। भैया मोनू सेठ जी क्या लिखते हैं, जीवन यापन पर विचार करना बिल्कुल सही है, ये जिम्मेदारी और परिपक्वता का प्रतीक है। जीवन में जब हम विचार करते हैं तो उसमें रुकावटें, समस्याएं और एक मन में टेंशन बनी रहती है, लेकिन जब हम कर्म करते रहेंगे तो प्रत्येक दिन तो फल मिलना ही है। ओके, ये एक पॉजिटिव सा मेल था जो इन्होंने लिखा है कि भाई जिम्मेदारियों को लेकर के सोचना बहुत ज़रूरी है। वो तो ठीक है मोनू जी, मतलब टेम्परेरी अगर हम सोच रहे हैं मेरी किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती तो उसको हम निभाते जाएं, वो अलग चीज़ हो जाती, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग लेके चलते तो वो होता नहीं है। और जो आपने बोला है ना, कर्म करते रहेंगे फल मिलता रहेगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट जो है ये किसका है, विनीत कुमार, ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ी चीनी मिल, ज़िला सीतापुर से है ये मेल, होंठों पे तेरी बात कार्यक्रम करने वाली बहन को गुड आफ्टरनून इन्होंने लिखा है और सादम प्रणाम लिखते हैं, ये स्वीकार करें विनीत का। ओके, तो ये बिल्कुल स्वीकार हो चुका है। और लिखते हैं, हम तो खेती किसानी करते हैं, जो कुछ थोड़ी बड़ी खेती है उसी में से जो कुछ भगवान दे देते हैं उसी में संतोष करता हूँ, और कोई ज़्यादा इच्छा मेरी नहीं है, जो हमें रुखी सुखी मिलती है उसी में मेरा विश्वास भला होता रहता है। बहुत प्यारी बात है और यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी है, जो ऊपर वाला दे रहा है उसमें आप आसानी से खुशी के साथ गुजारा करिए, क्योंकि क्या होता है ना, हर कुछ अच्छी लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ या पैसा नहीं होता है, खुशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका आई थिंक उतना ज़्यादा पैसों से रिलेशन नहीं होता है, है ना। सतीश अनेजा जी क्या लिखते हैं, सलाम जरीना बहन जी, वालेकुम अस्सलाम, लिखते हैं, जब हम परमात्मा से सच्ची मोहब्बत करते हैं और सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं तो आपकी ज़िंदगी सार्थक रहती है। आप जो भी करने की सोचते हैं तो परमात्मा की दृष्टि आप पर होती है, काम सही ही होता है। मैंने आज तक जो भी करने का सोचा है उससे अच्छा ही हुआ है। एक गांव से छोटे से शहर में बसा था और छोटे से शहर से चंडीगढ़ का निवासी बन गया, ये मेहनत का और ईमानदारी का ही फल मिला मुझे। अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, खुदा ने सांसें दी हैं, ज़िंदगी दी है, हर रोज़ सुबह नई सवेरा और नई उमंग देता है, उसको सजदा करता हूँ। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा जी ने बहुत ही प्यारी बात लिख कर दी है और ये सच में होता है। मतलब शायद हम उतना ज़िंदगी का फेस देख पा रहे होते जहाँ पर हम सिर्फ उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला हमें ये दे दे वो दे दे, बट एग्जैक्टली क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें कभी कभार ऊपर वाला दे देता है और ये तभी हो पाता है जब आप जिंदगी को लेकर पॉजिटिव हो, आप निश्चल हो, आप प्रेम के साथ, समर्पण के साथ अपने जीवन में जो भी

काम है उसको करते जाएं। तो सतीश जी बहुत प्यारी बात, बहुत ही प्यारा मेल, बहुत बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। और इसके अलावा महेंद्र, दीपन जी, रामेश्वर जी, इन सब के भी मेल यहाँ पर हैं जिनको मैं आगे ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि अब वक्त आता है कि अगला गाना मैं आप सभी की रेडियो सेट पर भेजूँ। तो बस ये लीजिए प्यारा सा गाना आप सभी की रेडियो सेट पर, एंजॉय करिए इस गाने को, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, ये प्यारा सा गाना था फ्रॉम द फिल्म रमैया वस्तावैया। और इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को बता देते हैं कि प्रोग्राम चल रहा है इस समय होंठों पे तेरी बात। आपकी प्यारी प्यारी बात जो है वो हम तक पहुंचती जा रही, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि क्या जिंदगी हमारी बिल्कुल वैसे ही चलती है जैसा हम सोचते हैं। भाई जिंदगी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली वी ऑल नो कि जिंदगी किसी लिखी हुई स्क्रिप्ट की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसमें अचानक आने वाले मोड़, अनचाहे बदलाव और अचानक से आने वाली जिंदगी की जो घटनाएं हैं, यही इसे खास बनाती हैं। अगर ये चीज मतलब जिंदगी में जो भी हो रहा है, जो होने वाला है, वो सब हमारे सोच के मुताबिक होने लगे तो शायद मुझे लगता है ना कि हमारी लाइफ में हैरानी, एक्साइटमेंट, सीखने के मौके, ये सब बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, है ना। खैर ये तो मेरी अपनी बात थी। देखें आपकी बात क्या है जो प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में हमारे साथ जुड़ने वाली है। भाई बहुत सारे मेल्स आए हुए हैं। महेंद्र दीपन जी क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। आदरणीय जरीना मैम जी, सादर प्रणाम। मैं महेंद्र दीपन राजस्थान के नागौर जिले से गांव रूर से हूँ। आज के आपके प्रोग्राम होठों पे तेरी बात को बहुत ही एकाग्रता के साथ सुन रहा हूँ। आज का विषय बहुत गहरा है। क्या आपकी ज़िंदगी वैसी ही चल रही है जैसा आपने सोचा था, या फिर सोचना व्यर्थ था? इस विषय पर मेरे अनुभव कुछ इस प्रकार हैं। इन्होंने लिखा है कि बचपन में मैंने भी अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत सारे ख्वाब देखे थे और बहुत कुछ सोचा था, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि सब सोचना शायद व्यर्थ था। सच तो ये है कि मेरी ज़िंदगी वैसी नहीं चली जैसे मैंने सोचा था, बल्कि उससे कहीं अलग और बेहतर चली। आज मैं भविष्य की चिंता में ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, बस जो सोचा है उसे सहज भाव से, अच्छा इन्होंने लिखा जो होता है उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेता हूँ। मेरा बस एक ही उसूल है, जीवन में सब कुछ हो पर कुछ गलत नहीं होना चाहिए। सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी में जो भी अनचाहा हुआ वो मेरे लिए आज तक का सबसे बेस्ट अनुभव रहा है। मैं अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र से बेहद खुश हूँ। मेरे संदेश को प्रोग्राम में शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी प्यारी प्यारी बात आपने लिख कर दी है। और इससे मुझे एक चीज़ याद आती है कि देखिए हम जब कुछ प्लानिंग लेकर चलते हैं ना, हमको सोचते हैं तो सिर्फ हम उतना ही देख रहे होते हैं जितना हमारी समझ में है। हमें लगता है हमारी आने वाली इस ज़िंदगी में ऐसा होगा, वैसा होगा, ये चीज़ें होंगी, वो नहीं होंगी, या जो भी हम सोचते, लेकिन जो ऊपर वाला है ना, वो सिर्फ उस फेस को नहीं देख रहा, वो पूरी लाइफ को हमारी देख रहा होता है। तो वो अपने हिसाब से हमारे लिए हमेशा ही बेहतर सोचता है, जो महेंद्र जी ने लिख कर दिया है। और अगर इस विश्वास के साथ हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमेशा और हमेशा ही अच्छा, बेहतर ही होता है हमारी ज़िंदगी में। बहुत बहुत शुक्रिया। रामेश्वर जी क्या लिखते हैं, चलिए देखते हैं। इन्होंने लिखा है प्रोग्राम होठों पे तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुत

प्रस्तुतकर्ता बहन जरीना को सादर प्रणाम। मेल इन्होंने लिखा, शामिल कर लें, आपका कार्यक्रम बराबर सुन रहे हैं, हमें आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति कर रही हैं और प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम व पोस्ट मुंगीसारपुर कानपुर देहात से है और इन्होंने सबके नाम लिख दिए हैं और लेकिन उसके साथ जिस टॉपिक पर, मतलब आज की बात जो हमने इनसे चाही थी, उस पर कुछ नहीं लिखा। सो रामेश्वर जी, ये आपने बहुत सिंपल सा मैसेज भेजा, इसको हम आगे भी अगर आप फॉरवर्ड कर दें तो प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे बात चाहिए थी आज के टॉपिक पर कि क्या जिंदगी वैसी ही चलती है जैसा हम सोचते हैं। और इस पर सतीश अनेजा जी का शायद फिर से मेल आया हुआ है, लिखते हैं ये कि जब हम परमात्मा से मोहब्बत करते हैं और सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं तो आपकी जिंदगी सार्थक रहती है। आप जो कुछ भी करने की सोचते हैं तो परमात्मा की दृष्टि पर आप पर ही होती है, काम सही ही होता है। मैंने आज तक जो भी करने का सोचा है उससे अच्छा ही हुआ है। एक गाँव से, अच्छा ये बात इन्होंने पहले भी लिख दी थी और बार बार भेज दी, तो मैं दोबारा नहीं शामिल करूँगी। शैलेश जी लिखते हैं, क्या है भाई, नीलू शर्मा रूप, अच्छा ये शैलेश कुमार के नाम से आईडी है, नीलू शर्मा रूपपुर चंदेल से, हाय जरीना मैम कैसी हो आप, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। इन्होंने लिखा है, हमने जो प्लानिंग सोची थी वो बिल्कुल नहीं हुई। स्कूल के टाइम पर मैंने सोचा था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडियन आर्मी में जाएंगे और मैंने बहुत मेहनत की, हाइट की वजह से नहीं लग पाया आर्मी में। उसके बाद मेरी प्लानिंग थी कि मेडिकल ज्वाइन करना है, वो भी सपना रह गया। तीसरा सपना था कि क्रिकेटर बनूंगी, वो उम्र ज़्यादा हो गई तो वो भी नहीं कर पाई। ओके नीलू जी, मैं समझ सकती हूँ, एक्चुअली सपने आपके ना ऐसे ऐसे रहे, शायद आपने अगर पहले क्रिकेटर सोचा होता तो वो हो जाता, और हाइट आपको पहले ही चेक कर लेनी चाहिए थी कि कितनी है और कितना क्राइटेरिया है, तो आपका ये शायद सपना भी ना इस तरह टूटता। अच्छा मेडिकल ज्वाइनिंग आपकी हो सकती थी, आई डोंट नो कि क्यों नहीं हो पाई। खैर ओवरऑल होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अब शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही बेहतर होगा। आपने इतने सपने सजाए वो नहीं पूरे हुए क्योंकि ऊपर वाला बहुत बार कुछ बेहतर प्लानिंग हम सभी के लिए लेकर चलता है। सो आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर ही हो, इन तीनों प्रोफेशन को जो आपने चूज़ करने का सोचा था उससे कुछ अच्छा ही हो आपकी लाइफ में। रचना मिश्रा क्या लिखती हैं, हाय मैम, मैं आपको डेली सुनती हूँ, मैं डेली नहीं आती हूँ। आगे इन्होंने लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खैर मुझे लगता है शायद जब जब आप सुनती हूँ, ये आप तब की बात कर रही हूँ। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बोलने का ढंग बहुत अच्छा है, मुझे पुरानी यादों में पहुँचा देता है जब मैं छोटी थी,

मतलब इनकी छोटी बचपन की पुरानी यादों में इनको पहुंचा देता। आगे इन्होंने लिखा, खैर गर्मी तो बहुत हो रही है, इसलिए सभी अपना ध्यान दें, धूप में कम निकलें, पानी ज़्यादा पिए। मैं लखनऊ से हूँ, मेरा नाम रचना मिश्रा है, मुझे ये गाना आपकी, अच्छा गाने का इन्होंने यहाँ पर फरमाइश कर दी। तो रचना जी, मैं अभी फरमाइशी प्रोग्राम बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत काम की बातें लिखी हैं, तो उसको पहले शामिल करूँगी। मोहम्मद आसिफ जी क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। और आसिफ जी ने लिखा हुआ है कि अस्सलाम वालेकुम जरीना मैम, कैसी हो आप? उम्मीद है कि अच्छी होंगी आप। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, वालेकुम अस्सलाम भी। और मैम, मेरी ज़िंदगी वैसी ही है जैसे मैंने सोचा था। माय गॉड, मतलब टचवुड, ये पहला ऐसा मेल है जो मुझे लगता है ये लिख रहा है कि जैसा सोचा था वैसा ही चला, वरना बहुत कम ऐसे लोग हैं ज़िंदगी में जैसा सोचते हैं वैसा ही होता। आगे चलिए देखते हैं क्या इन्होंने लिखा है। कभी कभार वैसा थोड़ा बहुत नहीं होता, बट लव यू ज़िंदगी में, मोहम्मद आसिफ अंसारी। अच्छा, लव यू ज़िंदगी इन्होंने लिख दिया, मोहम्मद आसिफ अंसारी, हैदराबाद तेलंगाना से, न्यूज़ ऑन AIR पे हमें सुन रहे हैं। और इन्होंने लिखा है कि पढ़ाई के बाद सोचा था कि गांव में ही रहकर कुछ करूंगा, बट ये नहीं हो पाया। सादिया अंसारी, साहिबा अंसारी, समा अंसारी, अच्छा सबके नाम लिख दिया इन्होंने। दीदी बबीता राव, दीदी, सब लोग आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने के लिए। मतलब आपने बात नहीं लिखी कि क्या आपने सोचा था और क्या हुआ, बस इतना सा लिख दिया कि जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ। खैर हुआ तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है सोनू परवाना जी, लिखते हैं, जीवन एक संघर्ष है, लड़ते रहो बढ़ते रहो, यही हमारी सोच है। ऊंच गाँव मीठी से, ओके ऊंच गाँव मीठी से ये मेल था, तो मैंने इसको शामिल कर लिया है। आंचल सेठ क्या लिखती हैं, कुछ अच्छा मांग रही थी ऊपर वाले से, लेकिन वो ऊपर वाले की दुआ से कुछ और ही ज़्यादा अच्छा हुआ। बहुत प्यारी बात है। और ऐसे मेल्स तो मतलब आई रियली एक्सपेक्ट कि ज़िंदगी में जो सोचा आपने अगर वैसा हुआ तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, ये सभी के लिए और ख़ासकर उनके लिए जिनको ऊपर वाले ने इस तरह की ज़िंदगी से नवाजा है। दीदी नमस्ते, गुरुग्राम हरियाणा से, ये मेल किसने लिखा है, संतोष चौरसिया ने। सोचा हुआ बात 50% सही हो सकती है किसी के भी जीवन में। पूजा भारद्वाज नाम ले लीजिएगा। अच्छा, मैंने नाम ले लिया है। और इनकी मतलब 50% चीज़ें लाइफ में वैसी होती कि जैसा इन्होंने सोचा था। उसके बाद नमस्कार जरीना जी, किसने लिखा है, नरेंद्र, ये कौन है, नरेंद्र सुधार जी, राजस्थान से ये मेल आया है। इन्होंने लिखा, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करने का सोचा था उसमें सफल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी हर काम को माँ बाप के आशीर्वाद के साथ ही शुरू करता हूँ, मंदिर में फूल चढ़ाकर करता हूँ, मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता, और ख़ुद पर नाज है जो आशीर्वाद इनको मिल रहा है। बहुत बहुत बहुत शुक्रिया मेल लिखने के लिए, बहुत ही प्यारा आपने मेल लिखा है। गाना इनको एक याद आ रहा है आज के टॉपिक पर, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। यस, और नहीं चलेंगे तो ऊपर वाला चलाता रहेगा, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आगे बढ़ने के अलावा, ज़िंदगी में आगे चलने के अलावा। रामराज जी क्या लिखते हैं, श्री गणेशाय नमः, होटो पे तेरी बात, ज़िला रायबरेली से, गाँव पहाड़ीपुर से, रामराज, राजूभान, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, सबके नाम इन्होंने लिख दिया है। और प्यार भरा धन्यवाद इन्होंने लिखा है, लेकिन टॉपिक पर कुछ नहीं लिखा है। तालिब अंसारी जी क्या लिखते हैं, जल्दी से पढ़ लेती हूँ, आज का मुद्दा बहुत अच्छा है, जैसे सोच होगी वैसे ही होने लगता है, सिर्फ सोच का डिफरेंस है, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचो तो नेगेटिव होगा। और अस्सलाम वालेकुम इन्होंने लिखा हुआ है, वालेकुम अस्सलाम। एग्जांपल, मान लो अगर हम किसी के काम के लिए लाइन में लगे हों और जल्दी में हों, बगल वाली लाइन में लग जाओ तो लगेगा जो लाइन से हटकर आए थे वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है, बाकी ऊपर वाले से के करम से सब कुछ है, अपनी लाइफ से खुश हूँ, और एक तमन्ना थी उम्रा पे जाने की, वहाँ भी हो आए, आई एम हैप्पी। बहुत बहुत प्यारी बात, बहुत खूबसूरत बात कि आपने जो जो सोचा वो हुआ, आप उम्रा पे भी हो आए। वकील अहमद जी क्या लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, होटो पे तेरी बात कार्यक्रम अच्छा लगता है, सोचा कम समय पर नहीं होता है, आम की बाग में खाना खा रहे हैं आपका, आप भी आकर खा लें, क्या बात है, मतलब टाइम बिल्कुल हो चुका है, बहुत अच्छी बात है कि आपने हमें पूछ लिया और हमारी भूख को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया आपने। हवा इन्होंने बताया बहुत बढ़िया चल रही है। अहमद मंसूरी, कटका हथूरी, ज़िला

नमस्कार, शाम के 4 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा है कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर में सम्मान मिलता है और वो एक सशक्त नेता हैं। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद दिया गया है। समिति ने पाया है कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारण, ऐंठन और कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ललितपुर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध तुवन मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधिवत भूमि पूजन और पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ललितपुर अब विकास और नवाचार की नई पहचान बन रहा है। जिले में मेडिकल कॉलेज और अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना हो चुकी है, जबकि प्रदेश का पहला बल्क ड्रग पार्क भी यहां बनाया जा रहा है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। कानपुर नगर के कमिश्नर के विजेंद्र पांडियन ने आज भारत सरकार के उपक्रम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को द्वारा स्थापित देश के पहले असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मार्ट का उद्घाटन किया। आधुनिक रिटेल केंद्रों के रूप में विकसित असिस्टिव टेक्नोलॉजी मार्ट यानी एंटी मार्ट से दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक आधुनिक रिटेल शैली के सहायक उत्पादों को देख परख और खरीद सकेंगे। लखनऊ में आर्मी मेडिकल कोर EMC सेंट्रल ऑफ कॉलेज के ऑफिसर्स ने कॉलेज में सीनियर कैडर कोर्स के आज भव्य समापन परेड आयोजित की। परेड में 125 नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स ने हिस्सा लिया, जो भविष्य में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स का पद संभालेंगे। इस सैन्य प्रशिक्षण ने इस वीर सैनिकों के मनोबल, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को सुदृढ़ किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो चैनल।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: करियर पर है ध्यान,
3: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
2: पॉजिटिव है फैशन,
3: क्रिएटिव है पैशन,
2: टेक्नोलॉजी में रुचि,
3: बने पर्सनालिटी ऊंची,
2: फॉलो करें ट्रेंड्स,
3: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
2: ओनली ऑन यूथ वेव,
3: यूथ की बात यूथ के साथ,
2: शाम 4 बजे 100.7 एफएम रेनबो पर,
3: धड़कन लखनऊ की।

100.7 FM रेनबो चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस शनिवार की दोपहरी जिसमें कार्यक्रम शुरू हो चुका है यूथ वेव। और यूथ वेव में आपसे मुखातिब कौन है, जरा पहचानिए उसे। वही आपका अपना आरजे विजय आज आपके साथ आ चुका है 4 से 8 के इस शानदार प्रोग्राम में। लेकिन यहाँ पर यूथ वेव में बात होगी आज शनिवार की, हालांकि स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, लेकिन स्किल की डेवलपमेंट तभी होती है जब आप स्वस्थ रहें और पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त रहें। यानी कि कल है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, तो आज की शाम उसका जिक्र होना चाहिए, योग की बात होनी चाहिए, और खासकर उन युवाओं के लिए जो है वो मार्गदर्शन होना चाहिए जो योग को अपने जीवन की शैली बनाना चाहते हैं। हमारे पास हमारे साथ अभी कुछ ही देर में आशुतोष कृष्णा जो कि योग विशेषज्ञ हैं हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे, जिन्होंने युवा अवस्था में ही योग को अपनी जीवन शैली बनाया और तमाम तरह से भारत में अलग अलग शहरों में जाके इसका प्रचार प्रसार भी किया, क्लासेस भी ली। हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्यारा सा गीत मैं आपको सुनवाऊंगा, आइए उसे सुनते हैं फिर वापस लौटते हैं।

0: यूथ का पसंदीदा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, 4:11 का समय है, यूथ वेव जिसका नाम है विजय आज आपके साथ है और मेरे साथ इस समय आशुतोष कृष्णा जो योग विशेषज्ञ हैं वो मौजूद हैं। हेलो
1: हेलो
0: आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम यूथ वेव में।
1: विजय जी मुझे बहुत बहुत खुशी मिल रही है आपसे जुड़ करके और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे आमंत्रित किया।
0: आशुतोष मेरी आवाज साफ आ रही है ना?
1: बिल्कुल साफ आवाज आ रही है।
0: हाँ तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की आपको शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि कल है वो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस और योग जिस तरह से आपने योग को अपनाया है अपने जीवन शैली में ढाला है वो वाकई दुनिया के लिए प्रेरणादायी है और सबसे बड़ी चीज है कि बहुत ही युवा अवस्था में आपने योग को अपना लिया जी। क्या सोच रही आपकी कि आपने योग को अपनी जीवन शैली बनाया?
1: सर ऐसा है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि शरीर माध्यम फल धर्म साधनम
0: जी।
1: हम संसार में जितना भी काम कर रहे हैं जो भी हम ड्यूटीज पूरी कर रहे हैं उसका जो साधन है वो शरीर है
0: जी।
1: तो शरीर को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। तो शारीरिक स्वास्थ्य की खोज में मैंने योग का सहारा लिया। फिर जैसे जैसे मैं योग की तरफ बढ़ता गया तो मुझे पता चलता गया ये सिर्फ शरीर की बात नहीं है, ये शरीर से मन की बात है, मन से फिर आत्मा की बात है और आत्मा से फाइनली परमात्मा तक की बात है
0: जी।
1: यही रीजन रहा कि मैंने योग को अपने साथ अपनाया।
0: अच्छा मतलब आपने जाना कि योग ही जो है वो मार्ग है जिसमें आप परमात्मा को पा सकते हैं और मन की शांति जो है वो ढूंढ सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बताइए कि जैसे जब से हमारी केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी सरकार बनी 2014 से तब से जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाने लगा। अच्छा 21 जून का ही दिन जो है वो खास अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के लिए क्यों चुना गया, कुछ इस पे प्रकाश डालेंगे आप?
1: हाँ सर ऐसा है कि 21 जून जो होता है वो समर सोल्स्टिस होता है। अगर हम देखें जो उत्तरी गोलार्ध है जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून होता है और रात से छोटी होती है।
0: ओके।
1: इसीलिए ये प्रतीक है सबसे ज्यादा रोशनी होने का और योग भी क्या है एक तरह का प्रकाश है और जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि अस्तोमा सज्जव है मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। तो शायद यही हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच रही होगी 21 जून को उन्होंने योगा दिवस के रूप में अपनाया।
0: अच्छा इस बार की योगा दिवस की जो थीम है वो कुछ बुजुर्गों पर आधारित है
1: जी।
0: तो ज्यादातर लोग योग की बात करते हैं तो उनको एक बुजुर्ग की तस्वीर ही नजर आती है कि योग तो बुजुर्गों के लिए जो है

0: रिटायरमेंट आदमी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और यूथ के लिए तो ज़रूरत ही नहीं है इसकी। तो मैं ये जो धारणा है लोगों की, इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या ये गलत है या कुछ हद तक सही है?
1: नहीं नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। मैं मुझसे भी बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि मैंने जब योगा अभ्यास शुरू किया था तो मेरी एज बहुत ज्यादा रही होगी, 15 वर्ष की रही होगी।
0: हाँ।
1: तो योग की जो मैंने शुरुआत की तो मुझसे भी कई लोगों ने कहा कि तो बुजुर्गों के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए है, आप कहाँ इसमें पढ़ रहे हैं। लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब मुझसे कोई इस तरह की बात करता है तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ। जब आप फोन खरीद के लाते हैं, नया आईफोन खरीद के लाते हैं, तो उसका मैनुअल आप पहले दिन पढ़ते हैं कि आखिरी दिन पढ़ते हैं? योग करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने आज आईफोन खरीदा है और आज आप उसका मैनुअल पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा शरीर कैसे काम करेगा, हमारी आत्मा कैसे काम करेगी, हमारा मन कैसे काम करेगा, और उसके फंक्शन को हम समझ करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तभी हो सकता है जब आप जिस पहले दिन लेकर के आए आईफोन उस दिन आप सीखने की कोशिश करें। ऐसे ही योग का जो अभ्यास है वो पहले बचपन से होना चाहिए, स्कूल्स में होना चाहिए, और हमारी केंद्र सरकार इस पर बहुत सारा काम कर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत सारा काम इस पर हो रहा है कि स्कूल्स को योग से जोड़ा जाए, फिटनेस से जोड़ा जाए।
0: जी जी।
1: और ये बहुत आवश्यक है इसीलिए। और अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह बच्चे एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ की तरफ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये बच्चों में भी आ रही है, जो मिडिल एज के लोग हैं उनमें भी आ रही है, और सीनियर सिटीजंस में तो आ ही रही है। इन सबको हैंडल करने के लिए हमें बचपन से बच्चों को योग और व्यायाम और प्राणायाम सिखाना चाहिए, जिससे फ्यूचर में वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ हो सके और इन सारी समस्याओं से बच सके।
0: जी जी जी। लेकिन ये जो धारणा है ये अभी भी जो है वो शायद देश के या विश्व के हर प्राणी के अंदर जो है नहीं पैदा हुई है कि योग जो है वो उसकी जीवन शैली के लिए कितना ज़रूरी है। लोग जिम को प्रेफर ज़्यादा कर रहे हैं और योग को अपनाने में जो है वो थोड़ा सा संकोच बरत रहे हैं।
1: हाँ सर, ऐसा कई जैसा देखने को मिलता है। लेकिन योग का अगर अभ्यास आप कर रहे हैं तो जो फिटनेस के सारे एस्पेक्ट हैं, जैसे कि जो हम जिम की बात करते हैं तो वो कुछ एक एस्पेक्ट को कवर अप करता है।
0: जी।
1: जैसे फिटनेस के एस्पेक्ट की हम बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की बात करें, या हम बात करते हैं एंड्यूरेंस की या फ्लेक्सिबिलिटी की, फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के जिम में हम उतने एक्सरसाइजेस नहीं करते, या कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की बात करें, या आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस अभी ऐसे हुए कि जिम में लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो गया, लोग गिर गए।
0: जी।
1: लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि योग करते हुए किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया।
0: हाँ, ये बात तो है।
1: तो फिटनेस के लिए और योग में ऐसा नहीं है कि आप शारीरिक, लोगों को लगता है कि जिम करके हम ज्यादा मसल्स को डेवलप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। योग करते करते भी आप अपने शरीर को, मसल्स को वैसे ही डेवलप कर सकते हैं, उसमें भी ऐसी बहुत सारे व्यायाम है जिससे आप अपने शरीर को डेवलप कर सकते हैं।
0: क्या योग करके जो है वो महिला या पुरुष अपने वजन को कम कर सकती हैं?
1: सर, वजन को कम करने के लिए तो योग से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि योग में कई, जैसे जब आप जिम कर रहे होते हैं और आप फैट बर्निंग की बात करते हैं तो मान के चलिए कि 45 मिनट 40 मिनट के बाद बॉडी के अंदर फैट बर्न होना शुरू होता है।
0: जी।
1: कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस में यही प्रोसेस 30 मिनट 25 मिनट के बाद शुरू हो जाता है। लेकिन योग में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं पहले मिनट से फैट को बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम वगैरह करते हैं तो आप तुरंत ही इसका रिजल्ट देख सकते हैं। दूसरी बात, ये योग के द्वारा हम अपने बेसिक मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा सकते हैं। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर बढ़ता है तो उससे जो आप खाना खा रहे हैं वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होगा, तो फैट भी जल्दी डाइजेस्ट होगा, इससे फैट आपका जो है वो जल्दी कम हो जाएगा इन कंपेरिजन टू जिम।
0: अच्छा, तो ये जो योग और जो एक सामान्य व्यायाम होता है जिसे नॉर्मल एक्सरसाइज कहते हैं, ये दोनों में अंतर है कि ये दोनों एक समान है?
1: नहीं सर, दोनों में अंतर है। योग में जब भी हम बात करते हैं तो हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, मन की भी बात करते हैं। योग के 8 हिस्से हो जाते हैं।
0: जी।
1: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
0: ओके।
1: तो हम जब बात करते हैं योग की तो जिसको हम लोग सिर्फ व्यायाम समझ लेते हैं वो पहला स्टेप है, जिसको हम कहते हैं आसन। तो आसन को आप व्यायाम के बराबर में रख सकते हैं, लेकिन अच्छा। उसके आगे के जो स्टेप हैं वो योग में है लेकिन आपके व्यायाम में नहीं।
0: ओके। अच्छा, मान लीजिए जैसे कि किसी व्यक्ति को जो है एंजाइटी बहुत ज्यादा है या किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है, वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाता है, तो क्या योग में इसका कोई उपचार है या कोई आसन ऐसा है जो मनुष्य को, क्योंकि आज के समय में ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं, यूथ में तो बहुत हो रही हैं, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, योग के द्वारा आप मानसिक स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा होता है कि जब हम योग का अभ्यास करते हैं,

0: तो जैसे आपने एंजाइटी की बात करी या आपने डिप्रेशन की बात करी,
1: जी
0: तो चार बेसिक हार्मोन्स हैं बॉडी के अंदर जो इन सारी समस्याओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक को बोलते हैं डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स।
1: ओके,
0: जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो ये सारे हार्मोन ज्यादा मात्रा में ठीक होते हैं। जैसे आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो कई बार वो हार्मोन्स लिखते हैं आपको, तो वही टैबलेट के फॉर्म में वो आपको दे रहे होते हैं, लेकिन जब आप बाहर से लेना शुरू कर देते हैं इन हार्मोन को तो फिर आपको उसकी आदत पड़ जाती है।
1: ओके,
0: और हम ये चाहते हैं कि बॉडी अपने आप इन सारे हार्मोन को जनरेट करे और वो हार्मोन जो तो आपके लिए नेगेटिव हो रहे हैं उनको कम। जैसे कॉर्टिसोल एक हार्मोन, तो अगर उसका सिस्टम बॉडी में ज्यादा होगा तो आप स्ट्रेस में रहेंगे, तनाव में रहेंगे। ये जो औषधियों का नाम आप सुनते हैं अश्वगंधा वगैरह का, इनका काम यही होता है कि बॉडी में जाके कॉर्टिसोल को कम करें,
1: जी,
0: और वही सारा काम आप प्राणायाम के थ्रू, ध्यान के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए और एंजाइटी डिप्रेशन जैसी समस्याओं के लिए योग एक बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है, जिससे आप दवा खाने से भी बच सकते हैं और अपने शरीर को खुद ब खुद स्वस्थ कर सकते हैं।
1: अच्छा, योग का जब नाम आता है तो एक आसन है प्राणायाम, जो है वो सबसे ज्यादा उसका जिक्र किया जाता है, तो ये क्या योग का मुख्य आसन होता है प्राणायाम?
0: नहीं सर, योग के मैंने आपको आठ स्थिति बताए थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो आसन का मतलब होता है फिजिकल फिटनेस के लिए किया जाने वाली
1: ओके,
0: क्रियाएं। इसके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं स्थिर सुखम आसन,
1: अच्छा,
0: जिस सिचुएशन में आपको सुख मिलने लगे, बॉडी को स्थिरता में सुख मिलने लगे, वही आसन। इसीलिए हम, मैंने आपसे भी कहा था कि योग करते समय किसी को कार्डियक अरेस्ट नहीं पड़ता। तो अगर टीचर सही है तो वो ये कहता है कि जितनी आपकी बॉडी की क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप अभ्यास करिए और धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाइए।
1: ओके,
0: जब आप आसन करके शरीर को ठीक करने लगते हैं तो उसका अगला जो स्तर आता है उसे हम कहते हैं प्राणायाम।
1: अच्छा,
0: प्राण मतलब ऊर्जा और आयाम मतलब होता है उसको साधना या बढ़ाना या कंट्रोल करना। तो प्राणायाम का सिंपल सा मतलब होता है कि आप अपने अंदर की जो प्राण ऊर्जा है उसको आप बढ़ा रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं। तो सांसों की कुछ क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा आप प्राणवायु को, सांसों को कंट्रोल करते हैं और अपने मन पर नियंत्रण करने का प्रयास, इसीलिए इसको प्राणायाम।
1: ओके, अच्छा आशुतोष जी, ये बताइए कि एक व्यक्ति जो है स्वस्थ रहने के लिए कितनी देर योग कर सकता है?
0: ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस आदमी की शारीरिक अवस्था कैसी है, उसके गोल्स क्या है, वो क्या करना चाहता है।
1: ओके,
0: तो 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट से लेकर के 1.5 घंटे, 2 घंटे तक वो योग का अभ्यास कर सकता है अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार। जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर बार देश काल परिस्थिति के हिसाब से अभ्यास करना चाहिए। जाड़े का समय है, आप अभ्यास बढ़ा सकते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, आप थोड़ा अभ्यास कम कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे अभ्यास है कि जाड़े आ रहे हैं तो अलग तरह के अभ्यास करने हैं, गर्मी है तो अलग तरह के अभ्यास करने हैं। तो शरीर को उस पर्टिकुलर परिस्थिति के हिसाब से हम लोग आसन प्राणायाम रिकमेंड करते हैं, जिससे उसको समग्र रूप से स्वास्थ्य।
1: अच्छा, अच्छा, योग के 8 अंग होते हैं, और ये 8 अंग जो है वो कौन कौन से होते हैं?
0: सर, इन्हीं की बात मैं कर रहा था कि 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसीलिए इसको अष्टांग योग कहते हैं, 8 हिस्सों वाला योग।
1: अच्छा,
0: महर्षि पतंजलि ने इसका प्रतिपादन किया था अष्टांग योग। तो यम और नियम का मतलब है हमारी जो ड्यूटीज हैं अपने शरीर के प्रति और समाज के प्रति, वो आती हैं यम और नियम में।
1: ओके,
0: आसन, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि आसन का मतलब होता है शरीर को शक्तिशाली बनाना, शरीर को शुद्ध करना। जो जितनी भी आप क्रियाएं देखते हैं, सूर्य नमस्कार और डिफरेंट आसन देखते हैं, ये आसन का पार्ट। इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम का मैं जनरली ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसा कि आपने नाम सुना होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम, प्राणायाम, प्रामरी प्राणायाम। तो इनका मुख्यतः यूज जो है वो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अपने मन पे कंट्रोल करने के लिए और सांसों को कंट्रोल करने के लिए इनका उपयोग करते हैं।
1: ओके,
0: इसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है कि आप जो है, प्रत्याहार दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और आहार। जो हमारा आहार है हम उसका उल्टा काम कर रहे हैं। यहाँ पर इसका मतलब है इंद्रियों पर नियंत्रण से है। मान लीजिए आपका बहुत मन कर रहा है कि आज मुझे आइसक्रीम खानी, और आप कह रहे हैं नहीं, मैं अपने मन पे कंट्रोल करूंगा, मुझे आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। ये हुआ प्रत्याहार
1: जी।
0: तो आप उसका अगेंस्ट जाकर के अपने शरीर

0: आपको जो चीजें स्वस्थ रखेंगे उनके हिसाब से आप चलेंगे। इसके बाद अगला जो लेवल होता है उसे हम कहते हैं धारणा। धारणा इज कंसेंट्रेशन।
1: ये धारणा जो है ये कौन से नंबर का अंग है, चौथे या पांचवें?
0: छठे अंग।
1: ये छठा अंग है। तो आशुतोष जी, आपको इसी छठे अंग पे मैं रोकना चाहूंगा, क्योंकि अभी चार बज के पच्चीस मिनट पर हमारे दिल्ली केंद्र से रोजगार समाचार आएंगे, तो एक 5-7 मिनट का ब्रेक लूंगा, उसके बाद वापस मैं आपसे जुड़ूंगा, तो इसी छठे अंग से हम बातचीत शुरू करेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। ठीक, तो अभी आप बातचीत सुन रहे थे आशुतोष कृष्णा, जो कि योग विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले रोजगार समाचार का समय है।

जहां किसी विशेष कारणों से जो है रोजगार समाचार आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन ये जो प्रोग्राम है यूथ वेव, ये आप तक चल रहा है। आशुतोष कृष्णा से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक होगा, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: लखनऊ है तो महज गुंबद मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं आप, एफएम रेनबो 107 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर प्रोग्राम चल रहा है यूथ वेव। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यहां पर बात चल रही है। आशुतोष कृष्णा योग विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने भारत का भ्रमण किया है, योग का प्रसार प्रसार किया है, उनसे बातचीत चल रही है। आशुतोष जी, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका सर।
4: बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी।
3: तो अंगों की बात हम कर रहे थे और छठे अंग के बारे में आपने बताया था ना योग के, तो वहां से शुरू करते हैं आप, बाकी आप दो अंग और बचे हैं।
4: जी
3: जी,
4: तो मैं सर बता रहा था कि चौथा अंग होता है प्राणायाम।
3: हाँ।
4: पांचवा होता है प्रत्याहार।
3: जी,
4: तो मैंने आपको बताया था प्रत्याहार का बेसिक आयाम है कि जो

0: जी
1: तो मैं सर बता रहा था कि चौथा अंग होता है प्राणायाम,
0: हाँ?
1: पांचवा होता है प्रत्याहार
0: जी,
1: जो मैंने आपको बताया था। प्रत्याहार का बेसिक काम है कि जो भी हमारी इंद्रियां चाहती हैं उसके अगेंस्ट हम चाहें, इससे हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण हो। और इसीलिए महर्षि पतंजलि ने सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र बताया है, जो यहाँ पर योग की डेफिनेशन बताई है, उन्होंने बड़ा सिंपल सी बात कही, योग चित्त वृत्ति निरोधः, जो मन में आपके उठ रहे हैं, जो इंद्रियां कर रही हैं, उसका निरोध कर देना, उसको रोक देना ही योग है।
0: ओके।
1: और इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है प्रत्याहार की। प्रत्याहार के बाद हम बात करते हैं धारणा की, जहां पर हम रुक थे। धारणा का मतलब होता है, जिसको हम मॉडर्न सेंस में कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, किसी एक पॉइंट को लेकर के अपना फोकस वहां पे लाना, कॉन्सेंट्रेट करना और अपना ध्यान वहीं पे केंद्रित करना, इसे हम कहते हैं धारणा।
0: ओके।
1: जब आप धारणा लंबे समय तक अभ्यास कर लेते हैं तो हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे आप कुछ क्रियाओं के बारे में सुना होगा, क्रिया होती है त्राटक, जिसमें कैंडल को जला करके उसकी जो लौ होती है उस पर हम फोकस करते हैं। तो जो आजकल के लोग में समस्या देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, खास करके बच्चों में फोकस नहीं हो पा रहा है, भटकाव हो रहा है मन में,
0: जी, जी,
1: सब को दूर करने के लिए हमें धारणा का अभ्यास करना चाहिए। उसकी बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं, जैसे कि कुछ लोग एक बिंदु पर फोकस करके कंसंट्रेट करते हैं, कुछ लोग दीवार पर एक पॉइंट लगा के कंसंट्रेट करते हैं, कुछ लोग फूल रख के उस पर कंसंट्रेट करते हैं, कुछ लोग कुछ मंत्रों के सहारे कंसंट्रेट करते हैं, ये कहलाती है धारणा।
0: अच्छा।
1: इसके बाद जब हम उस पर नियंत्रण कर लेते हैं तो अगला जो हमारा स्टेप होता है, जो अगला अंग है, वो है ध्यान, जिसको आप मेडिटेशन कहते हैं।
0: ओके।
1: मेडिटेशन में आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, आपका मन अपने आप एक जगह पर स्थिर हो जाता है और आप उसी में ध्यान में लगे रहे, तो इसे कहते हैं हम ध्यान। और ध्यान के बाद जो आखिरी स्टेप है उसे कहते हैं समाधि।
0: समाधि।
1: जब इंसान बहुत लंबे समय तक ध्यान में चला जाता है तो अपने आप एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर उसको शरीर का, दुनिया का, सब जगह का भान खत्म हो जाता है, उसे हम कहते हैं समाधि।
0: ओके।
1: क्योंकि आखिरी और आठवां हिस्सा है योग का।
0: अच्छा, इस बार की जो थीम है वो वृद्धों को शामिल कर जो है वो रखी गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या किस तरह की ये थीम है, क्या?
1: थोड़ा सा मैं, मेरा आपसे इसमें विरोधाभास है। जो थीम है वो है हेल्दी एजिंग। तो एजिंग तो हम सब की हो रही है, आपकी भी हो रही है, हमारे भी हो रही है,
0: बिल्कुल जाहिर सी बात। हाँ हाँ हाँ।
1: बच्चा पहले दिन पैदा हुआ है उस दिन से ही उसका एजिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो मेरा कहना यह है कि थीम ये है कि कैसे इस एजिंग को हम लोग हेल्दी बनाए, तो इसके बारे में इस बार की थीम है।
0: अच्छा।
1: तो होता क्या है कि मैं एजिंग से ये समझ लेते हैं कि हम केवल बुजुर्गों की बात कर रहे
0: हैं, सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं। हाँ,
1: ऐसा नहीं है, हर इंसान की एजिंग हो रही है, एज बढ़ रही है, लेकिन हाँ इसका प्रभाव हमको ज्यादातर एक एज के बाद दिखना शुरू होता है, स्पेशली 40 के बाद या 35 के बाद या 50 के बाद उसका इम्पैक्ट हमें आता दिखाई पड़ सकता है। हम लोगों को लगता है कि 35 तक 40 तक हम कुछ भी करें, कुछ भी खा लें, कोई एक्सरसाइज ना करें, कोई प्राणायाम ना करें, अपनी लाइफस्टाइल को गड़बड़ रखें तो भी चल जाएगा, और इन सारी चीजों को हम ठीक करेंगे 35 से 40 या 50 के बाद, तो ये गलत तरीका है काम करने का। मुझे लगता है कि बहुत यंग एज से जब आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ है तो कैसे वो आगे स्वस्थ रहे, कैसे कैसे एज का इम्पैक्ट हमारे ऊपर कम हो, कैसे एज के साथ आने वाली समस्याएं हमको ना आए, उसके लिए हमको ये काम करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र हमारे कहते हैं, न तस्य रोगो न जरा न व्याधि, योग अग्नि रक्षितम शरीरम।
0: ओके।
1: जो शरीर योग की रग्नि अग्नि में रक्षित होता है, ना तो उसको जरा मतलब वृद्धावस्था, ना कोई बीमारी, ना कोई व्याधि आती नहीं है। तो यही कहना का तात्पर्य हमारे प्रधानमंत्री जी का इस बार थीम रखने का, कि हम जैसे जैसे एज की तरफ आगे बढ़े तो हम इन सारी समस्याओं से बचे रहे। इसमें हम जापान का उदाहरण ले सकते हैं। जापान में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिनकी एज 100-100 साल से ज्यादा है और वो भी बड़ी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। और हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि 70 प्लस का जो भी व्यक्ति है उसको बहुत बीमार, बहुत कमजोर मान लिया जाता है कि अब तो ये बीमार रहेगा ही रहेगा। तो इस सोच से बाहर आने की जरूरत है, इसलिए ये थीम इस बार की है योगा फॉर हेल्दी एजिंग।
0: ओके। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है विकसित भारत का 2047 का, उसमें आप योग की भूमिका किस तरह से देखते हैं?
1: सर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको शक्तिशाली बनना पड़ेगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से।

0: हमारे जो यूथ है हमारा खटके नहीं शारीरिक रूप से शक्तिशाली, हम देख रहे हैं कि आजकल 18-18 साल के बच्चों को हार्ट पड़ रहा है
1: जी।
0: हमारे घरों में लाखों रुपया महीने का जो है वो बीमारी खर्च हो रहा है, छोटे छोटे ऑपरेशन में लाखों रुपया खर्च हो जा रहा है। तो डिप्रेशन एंग्जायटी की टैबलेट बच्चे खा रहे हैं। हमारे आपके बचपन में याद कीजिए कि हमने कभी ये सुना ही नहीं था कि कोई इंसान एंग्जायटी में है या डिप्रेशन में है।
1: जी जी।
0: लेकिन आज ये प्रेवलेंट होता चला जा रहा है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। तो अगर हमारे परिवार हमारा इन सब चीजों से लड़ता रहेगा देश की तरक्की कैसे। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि घरों में विघटन हो रहा है, लोग आपस में झगड़ रहे हैं, परिवारों में मुकदमे चल रहे हैं।
1: जी जी।
0: अगर ये सब भी होता रहेगा तो देश कैसे विकसित होगा। तो इन सबको मिटाने के लिए, इन सारी समस्याओं को हटाने के लिए योग एक माध्यम हो सकता है कि जिसके सहारे हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करें, अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करें, अपने सामाजिक स्वास्थ्य को ठीक करें।
1: जी।
0: आप देखिए आज लोगों के पास चार लोग नहीं है बैठ के बात करने के लिए।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ बात।
0: ये बहुत बड़ी समस्या है तो आगे जाकर के मानसिक स्वास्थ्य को खराब करती है। तो इन सबसे बचने के लिए एक बड़ा साधारण सी चीज है योग। और विजय जी आपको पता है कि योग का मतलब क्या होता है? योग का बहुत साधारण सा मतलब होता है जोड़ना।
1: अच्छा।
0: योग करने का मतलब होता है जोड़ना। तो शरीर को मन से जोड़ना, मन को आत्मा से जोड़ना, अपने को पूरे समाज से जोड़ना। जब हम सब जुड़ते रहेंगे साथ रहेंगे तभी ये देश की तरक्की होगी, तभी देश विकसित होगा। और ये देश तभी विकसित होगा जब हर घर में हर व्यक्ति तक योग पहुंचेगा।
1: बिल्कुल। और हर व्यक्ति तक जब योग पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है जब इंसान का डेवलपमेंट होगा तो देश का डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और जो है वो विकसित भारत की बात जब मैंने की है तो योग का जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है, एक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, देश और दुनिया में इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी इसमें सृजित हो रहे हैं, इसे किस तरह से आप देखते हैं?
0: सर बहुत सारे रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं क्योंकि योगा एक्सपर्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है कि देश में आने वाले टाइम में जो पढ़े लिखे योगा एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे योगा एक्सपर्ट्स ऐसे घूम रहे हैं जिन्होंने कहीं से कुछ छोटा मोटा सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया या टीवी देख के सीख लिया है, यूट्यूब देख के सीख लिया। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने योग विषय को लेकर के पीजी किया है, पीएचडी करी है, ऐसे कुछ कोर्सेज किए हैं जिससे आपको सब्जेक्ट के बारे में पता है
1: जी,
0: तो ऐसे एक्सपर्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। आने वाले टाइम में इनकी डिमांड और बढ़ेगी, सारे स्कूल्स में डिमांड बढ़ेगी, कॉलेजेस में डिमांड बढ़ेगी, कई सारे हॉस्पिटल्स ने अपने यहाँ पर जो है योग एक्सपर्ट को अपॉइंट करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे जेलों में, बहुत सारे जो है हॉस्टल्स में, सब जगह पर योग एक्सपर्ट की जो है वॉन्ट आ रही है। तो अगर बच्चा पढ़ाई करता है इसमें, और इंडिया में जितनी डिमांड है वो है, उससे बहुत ज्यादा डिमांड यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस कंट्रीज में बहुत सारी डिमांड है। तो अगर आपके पास एक्सपर्टीज है, अगर आपको जो है विदेशी भाषाओं का थोड़ा ज्ञान भी है, तो आप विदेशों में जाकर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और भारत के अंदर भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रहा है लगातार।
1: जी तो आशुतोष जी बहुत अच्छा लगा, आपने जो है योग पे इतनी सारी बातें की और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कल हमारे प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंचेंगे और वहां पर योग दिवस का नेतृत्व वो करेंगे वहां पे, तो आप भी योग से जुड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने जितनी बातें कही हैं जिन युवाओं ने इसको सुना होगा वो भी योग को अपनी जीवन शैली बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष कृष्णा जी आपका।
0: धन्यवाद सर।
1: ये हमारे साथ थे आशुतोष कृष्णा जो कि योग विशेषज्ञ थे और आज यूथ वेब में इनको शामिल किया हमने क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और यूथ जो है उसको योग की शरण में जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि योग मानसिक शांति का एक आधार है। और जैसा मैंने कहा था डिप्रेशन और एंजाइटी ये सब जो दिक्कतें हो रही हैं, ये सारी दिक्कतें जो है अगर आप योग की शरण में जाते हैं तो मुझे उम्मीद है इसका आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। फिलहाल एक बढ़िया सा गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: सूर्य
1: ये कपड़े कैसे पहन रखे तुमने? ये बैक पे टैटू तुमने कब बनवाया?
2: और ये गोरा कौन है तुम्हारे साथ?
3: I don't owe you any explanation. हमारा ब्रेकअप हो चुका है, remember?
2: ब्रेकअप?
3: तुम्हारे और मेरे बीच
2: डांसिंग, भाई सब डांसिंग, आओ ना, लोनली लोनली।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: 107 FM रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं यूथ वेव, आज विजय के साथ। और भाई कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 21 जून का समय है और हेल्थ एंड फिटनेस कार्यक्रम में एक विशेष कार्यक्रम जो है वो कल पेश किया जाएगा जिसकी थीम है करें योग रहे निरोग। और इसमें हमारे साथ स्टूडियो में योगाचार्य श्री कृष्ण दत्त मिश्रा जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के मौजूद होंगे, जो कि बताएंगे कि योग के लाभ क्या क्या है, किस तरह से शारीरिक, मानसिक और हृदय को ये लाभ पहुँचाता है, तनाव को कम करता है। इसके अलावा आकाशवाणी लखनऊ FM पर आप 100.7 MHz पर तो सुन सकते हैं, न्यूज़ ऑन एयर ऐप पे और DTH पर भी आप ये सुन सकते हैं। और साथ ही अगर आपकी कोई समस्या है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप 0522-223-8845 0522-223-8852 ये नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपने मन के सवाल जो है आप योगाचार्य जी से पूछ सकते हैं।

जी बिल्कुल, अगर योग को जीवन शैली बनाएंगे तो मटकने की जो शैली है वो आपकी लगातार जारी रहेगी। फिलहाल 4:55 का समय उसका यूथ वेव को यहीं वाइंड अप करना चाहूंगा। टॉप 10 के साथ फिर हाजिर होऊंगा। बस सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर। शानदार गीत और शानदार बातें।

0: सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी।
1: चलते रहे इश्क भी बढ़ जाते
2: हैं। हमारी और आपकी साझा कहानी,
3: आपके अपने रेनबो की जबानी।
1: आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी।
4: जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर।
5: ये प्रूफ
6: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
0: 100.7 FM रेनबो,
4: धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, शाम के 5 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों का योगदान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज झांसी में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा, यूपी तब विकसित होगा जब सभी जिले विकसित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुलामी की मानसिकता छोड़नी होगी और अपनी विरासत पर गौरव करना होगा। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 22 मई से 20 जून के भीतर 100% सफलता के साथ पूरा हो गया है। इस कार्य की सफलता को राष्ट्रीय जनगणना की तैयारियों में राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। यह अभियान राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयों में चलाया गया है, जिनमें से 75 जिले, 350 तहसीलें, 17 नगर निगम, 200 नगर परिषदें और 500 नगर पंचायतें, 13 छावनी बोर्ड और 8 औद्योगिक नगर शामिल हैं। इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 5,00,000 गणनाकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया था। सुल्तानपुर में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग और पुलिस विभाग ने आज किन्नरों के सहयोग से विशेष जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के दौरान किन्नर समाज के प्रतिनिधियों ने वाहन चालकों से भावनात्मक अपील करते हुए दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट पहनने तथा चार पहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाकर यात्रा करने की अपील की है। साथ ही नशे की हालत में वाहन न चलाने और यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करने का संदेश दिया है। 39वीं गोरखा प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी में आज आयोजित

0: अगस्त 2 पासिंग आउट परेड के साथ 135 अग्निवीर भारतीय सेना के अनुशासित और प्रशिक्षित सैनिकों के रूप में राष्ट्र सेवा के लिए तैयार हो गए हैं। 24 सप्ताह के कठिन सैन्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद इन अग्निवीरों ने देश की सुरक्षा अखंडता की रक्षा का संकल्प लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 प्रसारित होगा। सुनते रहिए FM रेनबो चैनल, जिस पर अब आप एक विशेष कार्यक्रम सुनने जा रहे हैं।
1: विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों और सरकार के प्रयासों पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
2: भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा से निकला योग आज केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्वस्थ जीवन का सूत्र बन चुका है। शरीर मन और आत्मा के संतुलन का ये विज्ञान अब सीमाओं से परे जाकर वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुका है और इस परिवर्तन के केंद्र में रहा भारत का वो प्रयास जिसने योग को विश्व मंच तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया और तब से पूरी दुनिया योग को स्वास्थ्य संतुलन और सकारात्मक जीवन शैली के रूप में अपना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फ्रांस दौरे के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए योग की बनती वैश्विक पहचान और उसके लिए योगदान देने वालों का जिक्र किया।
3: इस समय फ्रांस समेत पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे की तैयारियां भी चल रही। इस अवसर पर मैं फ्रांस में योग को आगे बढ़ाने वाले श्रीमान महेश गात्राडयाल जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता। मैं पद्म पुरस्कार से सम्मानित शार्लो शोपा जी को भी प्रणाम करता, जिन्होंने 100 वर्ष की आयु में भी योग के माध्यम से फ्रांस को भारत की विरासत से जोड़ा है।
2: इस साल 21 जून 2026 को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वस्थ आयु के लिए योग थीम के साथ मनाया जा रहा है। ये थीम विशेष रूप से इस बात पर केंद्रित है कि बढ़ती उम्र के साथ भी व्यक्ति कैसे स्वस्थ सक्रिय और ऊर्जावान जीवन जी सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 15 से 21 जून तक योग सप्ताह के दौरान कई कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसका शुभारंभ नमो घाट पर हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने योग का महत्व बताते हुए योग सप्ताह के तहत होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी।
4: ये सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, योग एक शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने की एक ऐसी जीवन शैली है करना, ये अभ्यास की चीज है। लगातार अभ्यास करते रहे तो ये साधना की चीज है। बहुत सहज और सुलभ हुआ, प्रधानमंत्री का ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया तो मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश और देश में जिस तरीके से हर वर्ष योग के द्वारा संख्या के लिहाज से एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम होता है।
2: उत्तर प्रदेश में इस बार योग दिवस को लेकर अभूतपूर्व तैयारियां देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि योग दिवस केवल एक औपचारिक कार्यक्रम न होकर जन भागीदारी का महाअभियान बने। प्रदेश सरकार ने इस बार योग दिवस को गांव-गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश की सभी 58,000 ग्राम पंचायतों और 762 नगरीय निकायों के पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार के प्रयासों में योग प्रशिक्षक और समाज सेवी भी सहयोग कर रहे हैं। 3 योगासनों में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली योगा एथलीट भूमि तिवारी का कहना है कि योग न सिर्फ हमें स्वस्थ रखता है बल्कि स्वयं को संयमित रखने और जीवन में कुछ कर गुजरने की चाह भी पैदा करता है।
5: नियमित योग करने से कई प्रकार की जटिल बीमारियों से बचा जा सकता है और यह बात वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी हो चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की योग परंपरा को विश्व स्तर तक पहुंचाया गया। मैं अपने भाई बहनों से कहना चाहती हूं कि आप योग को अपनी दिनचर्या में जरूर अपनाएं। योग करने से आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा।
2: प्रदेश का आयुष विभाग भी योग के इस अभियान को जन आंदोलन बनाने में जुटा है। प्रमुख सचिव आयुष रंजन कुमार ने बताया कि न केवल प्रदेश के सभी 75 जिलों में पूरे सप्ताह योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं बल्कि लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए आयुष कवच पोर्टल पर ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही है। सरकार का प्रयास है कि इस बार अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया जाए। इन्हीं प्रयासों के क्रम में फर्रुखाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने बताया कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में पूरा कार्यक्रम

0: होगा।
1: जनपद फरुखाबाद में पूरा जो कार्यक्रम है वो हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसमें आयोजित किया जाएगा, और इस बार भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें अलग अलग विभागों को, बच्चों को, डीआईएस को, बीएसए को, अलग अलग विभागों को टारगेट्स दिए गए हैं, उनकी तरफ से कुछ पर्टिकुलर संख्या में लोग आएंगे योगा करने के लिए, तो एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया।
0: प्रदेश भर में इस बार योग दिवस पर जन भागीदारी बढ़ाने के बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। महोबा में योग सप्ताह के तहत ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों पर आयोजित योग शिविरों में बड़ी संख्या में लोग भाग लेकर योगाभ्यास कर रहे हैं। योग से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के रहने वाले 85 वर्षीय शिव कुमार गोस्वामी ने कहा कि इस वर्ष की थीम वृद्धजनों के स्वस्थ जीवन को समर्पित है। सबको संकल्प लेना चाहिए कि नियमित योगाभ्यास करें।
2: तो मूल रूप से इस बार जो उनका फोकस है, उनकी थीम है 12वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, कि वृद्ध जनों को जो है प्रोत्साहित करिए, उसके लिए उन्होंने ये थीम रखी है कि सारे वृद्ध जन योगाभ्यास नित्य करें और विशेषकर वृद्ध जन संकल्प लें ताकि वो और दीर्घायु हों।
0: महोबा के बाद बात आगरा की, जहां योग सप्ताह के तहत 15 जून से शुरू हुए कार्यक्रमों में शहर के प्रमुख स्थान ताजमहल के पास सहित विभिन्न स्थानों पर योग शिविर का आयोजन कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने के लिए योग साधक अपील कर रहे हैं। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और बास्केटबॉल के प्रशिक्षक डॉक्टर रिनेश मित्तल ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी सरकारी, अर्ध सरकारी स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से योग दिवस का सफल आयोजन किया जाएगा।
3: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उस बैठक में सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि सभी विभागों को अपने अपने कार्यालयों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एनसीसी ऑफिस में, स्काउट्स ऑफिस में, सभी में योग कराना है।
0: आगरा में योग दिवस को लेकर उत्साह है तो समूचे ब्रज क्षेत्र में भी योग दिवस को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। मथुरा के विभिन्न पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लोग अनुलोम विलोम, कपालभाति सहित विभिन्न योगासनों का अभ्यास कर रहे हैं। योग शिविर में शामिल रहे समाजसेवी रामकिशन पाठक का कहना है कि नियमित योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ, मन शांत और जीवन अधिक संतुलित बनता है। उन्होंने सभी से इसमें शामिल होने की अपील की है।
4: जनपद की जनता जनार्दन से निवेदन है कि आप 21 तारीख को अपने घरों से निकलकर प्रातः अपने निकटतम योग स्थल पर जाएं, योगी जी के, मोदी जी के आह्वान पर योग करें और अपना और अपने परिवार का निरोग रहने का रास्ता प्रशस्त करें।
0: योग का वास्तविक महत्व केवल एक दिन के आयोजन में नहीं बल्कि उसे जीवन का हिस्सा बनाने में है। आधुनिक जीवन शैली, बढ़ता तनाव, अनियमित दिनचर्या और स्वास्थ्य चुनौतियों के बीच योग हमें संतुलन, अनुशासन और मानसिक शांति प्रदान करता है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी के सहभागिता के प्रयास में आप भी भागीदार बनिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर, शांत मन और सकारात्मक जीवन की शुरुआत किसी बड़ी दवा से नहीं बल्कि एक छोटे से संकल्प से होती है।
5: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों और सरकार के प्रयासों पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
6: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
7: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
6: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
8: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

100.7 FM रेनबो चैनल पर टॉप 10 सॉन्ग शुरू हो चुके हैं। 5 बजे का समय होता है झूमने नाचने और गाने का, और जुड़ने का उस दिल से जो दिल आपके दिल में धड़क रहा है। तो डिस्को के जरिए आज हम जुड़ेंगे उन 10 गानों के साथ जो आपके और हमारे दिल में आज भी धड़क रहे हैं, कुछ इस तरह से।

अच्छा, कभी कभी जो है वो आपके साथ बैठे या चलते चलते कंप्यूटर जो है अचानक नाराज हो जाते हो और एकदम से दा, है ना, कुछ ऐसे ही होता है। ऐसे ही कुछ हो गया हमारे कंप्यूटर जी को, नाराज हो गया मुझे लग रहा है। चलिए फिलहाल गाने को कंटिन्यू करते हैं, जो फ्लेवर है उसको टूटने नहीं देते। जी हाँ, 80s का वो दौर था जहां पर डिस्को की बात हो रही थी, डिस्को का नाम आ रहा था, पैर थिरकने वाले कलाकार सामने आ रहे थे। बस गौर कीजिएगा इन गानों पर।

जी हाँ, डिस्को दीवाने नाजिया हसन का ये 80s का वो गाना जो आया था, बहुत पॉपुलर हुआ था और आज भी बहुत बहुत बहुत याद किया जाता है। और उसी दौर में एक आवाज़ थी जो गूंज रही थी, जिसे हम बप्पी लहरी के नाम से जानते हैं। उन्होंने भी बहुत सारे गाने जो है वो डिस्को को बेस बनाकर गाए हैं, जैसे अनिल कपूर का ये वाला गाना।

दशमलव 7 एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं टॉप 10 विजय के साथ। 5:21 का समय हो चुका है और आपको भी अगर 80s का वो डिस्को से रिलेटेड कोई गाना याद आता है जो धूम धड़ाके वाला हो तो मुझको जरूर याद दिलाइए, मैं आपके गाने को जरूर प्ले करूंगा। लेकिन धूम धड़ाके वाला 80s का वो गाना होना चाहिए जिसमें अब वो दौर था जब बब्बी लहरी की आवाज हुआ करती थी, किशोर दा की आवाज हुआ करती थी और डांस हुआ करता था जबरदस्त, है ना। जैसे मैं चुन के लाया हूं वैसे ही आपको अगर कुछ याद आए तो मुझे जरूर बताइएगा मेल के जरिए। फिलहाल एक और बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आपका इंतजार कर रहा है और इसमें रीना राय और शतगन सिन्हा, इनका ये डांस का वीडियो है, सुनिए आप जरा इसको।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की।
4: आप सुन रहे हैं इसमें टॉप 10 विजय के साथ। 5:29 का समय हो चुका है यहाँ पर, और ये जो फिल्म हथकड़ी का गाना मैंने आपको सुनवाया था, पहलाज नेहलानी साहब की ये फिल्म थी, और संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, राकेश रोशन, रंजीता, प्रेम चोपड़ा, बप्पी लहरी और बहुत सारे कलाकार। मल्टी स्टारर फिल्म थी। जीवन साहब, मदन पुरी, सिमी ग्रेवाल, ये सारे लोग, मजहर खान साहब, कन्हैया लाल, इन सब की इसमें एंट्री थी और एक बड़ी स्टार कास्ट थी। इसी वजह से हथकड़ी फिल्म और इसके गाने इस तरह से रखे गए थे कि फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए। लेकिन डुपर तो नहीं हुई, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो हिट चल गई थी। शत्रुघ्न सिन्हा और रीना राय की केमिस्ट्री जो है उस समय अखबारों की सुर्खियां बनी रहती थी, इसलिए भी ये फिल्म कुछ थोड़ा सा कमाल कर गई थी। फिलहाल चलिए 80s की दूसरी फिल्म, जो सबसे बढ़िया अमिताभ बच्चन साहब का हॉट ड्रामा कहूँ, कॉमिक ड्रामा कहूँ, जो भी था, जिसने हिट बनाया था फिल्म को, नमकलाल फिल्म से ये गाना आपको सुनवाता हूँ।

डांस डांस फिल्म का ये गाना भी आपने सुना, मिथुन चक्रवर्ती, स्मिता पाटिल और मंदाकिनी, जी हाँ ये थे, शक्ति कपूर साहब का भी रोल था इसमें, और बी सुभाष साहब की ये फिल्म थी। और बी सुभाष साहब जो है वो जब इस फिल्म को उन्होंने रिलीज़ की, और रिलीज़ करने से पहले ही काफ़ी घबरा गए थे, वो डर गए थे क्योंकि बोनी कपूर साहब और अनिल कपूर साहब की फिल्म मिस्टर इंडिया रिलीज़ हो चुकी थी, उसने तहलका मचा दिया था। अनिल कपूर साहब का वो गायब होने वाला कैरेक्टर, उसने तो एक नया ही इतिहास रचा था, और उसके आगे ये फिल्म का आना और उसके बाद चलना, तो बी सुभाष को लग रहा था कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन फिर भी जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस में अच्छा कलेक्शन किया। स्मिता पाटिल का जो इस फिल्म में रोल था, उसके बाद उनकी आवाज़ को डब किया गया क्योंकि इस फिल्म के पूरे होने के कुछ ही समय बाद जो है वो उनका देहांत हो गया था। और प्रतीक बब्बर साहब जो है उन दिनों जो है वो स्मिता पाटिल माँ बनने वाली थी, और प्रतीक बब्बर साहब का जन्म होने वाला था, लेकिन उसके बाद जो है वो कुछ मिस हैपनिंग ऐसा हुआ कुछ कि स्मिता पाटिल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके अलावा जो है इस फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर, बी सुभाष साहब ने जो है मिथुन चक्रवर्ती को इस फिल्म में लिया ही इसलिए था क्योंकि वो जानते थे कि मतलब मिथुन दा का उस समय जो ऑरा था डांस का, जो डिस्को वाला जो था, वो हर फिल्म को हिट करा रहा था, चाहे डिस्को डांसर हो चाहे वो प्यार का मंदिर हो, उसमें एक गाना ही था। इसीलिए बी सुभाष साहब ने जो है 1988 में कमांडो फिल्म में इस पूरी स्टार कास्ट को जो है वो रिपीट कर दिया कि जिस तरह से डिस्को डांसर ने या डांस डांस ने कमाल किया है, वैसे ही हो सकता कमांडो फिल्म भी जो है मिथुन की चल जाए। हालांकि वो बॉक्स ऑफिस पर उतना कलेक्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी मिथुन दा का जो मिथुन दा का ऑरा था, जो उसका डांस का जो स्टाइल था, वो उस समय के युवा पर पूरी तरह से छाया हुआ था। 5:42 का यहां पर समय हो चुका है और विजय आज आपके साथ है टॉप 10 में। एक और 80s का बहुत ही प्यारा सा गीत जो इंतजार कर रहा है।

0: मेरी उम्र के नौजवानों,
1: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: किया।
1: कभी किसी

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
4: सात एफ एम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं इस समय टॉप 10 विजय के साथ और 5:52 का समय हो चुका है। यहां पर भैया मनु सेठ का मेल आ गया है। विजय भैया जी नमस्ते, कैसन हैं आप? बहुत दिन बाद आए हैं, उम्मीद थी जल्द आएंगे, आप आए लेकिन खुशी हुई। हाँ भैया मनु सेठ, कुछ कार्य की व्यस्तता ऐसी ज्यादा थी कि जिसकी वजह से आना जो है हो नहीं पाया, लेकिन अब आ गए हैं तो आना होगा और नाच गाना भी होगा। रामराज जी का भी जो है मेल आया है, टॉप 10 कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, जिला रायबरेली से और पहाड़पुर से इन्होंने जो है मेल किया है। सभी लोग जो है वो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और शाम को अपनी रंगीन बना रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर टॉप 10 प्रोग्राम चल रहा है और आपको बता दूं कि टॉप 10 प्रोग्राम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी होती हैं। आपको बता दूं कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस पर हमारे हेल्थ एंड फिटनेस पर एक विशेष कार्यक्रम होगा 12:00 से 1:00 तक 21 जून 2026 है। हमारे साथ होंगे योगाचार्य श्री कृष्ण दत्त मिश्रा जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के, और इसे आप 100.7 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर न्यूज ऑन एयर ऐप और DTH पर सुन सकते हैं। संपर्क आप करेंगे 0522-223-8845 और 0522-223-8852, ये नंबर है जहां पर आप अपनी समस्या और योग के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हेल्थ एंड फिटनेस कार्यक्रम में मिलाकर आप योगाचार्य जी से बात कर सकते हैं, क्योंकि थीम है करें योग रहें एंड निरोग। ये आकाशवाणी की, दूरदर्शन की और पूरे देश की यही अपील है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कि करें योग तो रहेंगे निरोग। और योग का महत्व कितना है ये भी 4 से 5 यूथ वेब में मैंने जो हमारे साथ एक्सपर्ट थे उनसे जानकारी ली ही थी, आपको बताया ही था। तो योग के जो है वो लाभ क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, मानसिक शांति, एकाग्रता, हृदय स्वास्थ्य बढ़ता है, इससे तनाव कम होता है और जीवन खुशहाल बनता है अगर योग को हम अपनी जीवन शैली में धारण करते हैं। तो चलिए फिलहाल अब इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करूंगा मैं। एक आखिरी डिस्को सॉन्ग जो मैं छोड़े जा रहा हूं, जाहिर सी बात है कि वो जो गीत होगा वो हमारे बिग बी के नाम होगा, तो उन्हीं के नाम के साथ वापस शाम में आपसे फिर मुखातिब होता हूं। सुनते रहिए FM रेनबो।

नमस्कार, शाम के 6 बजे अब सुने मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त आज जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली में तारकेश्वर से 9.44 करोड़ किसानों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों को शुभकामनाएं दी हैं और अपील की है कि वो खेत बचाओ अभियान से जुड़ें, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, साथ ही आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें। हम सब मिलकर धरती माँ रक्षा करें। श्री मोदी ने कहा कि वो हमारी माँ है, हम उसको केमिकल से मारने का पाप नहीं कर सकते। भारत और दक्षिण कोरिया ने लोक प्रशासन और डिजिटल शासन के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के गृह सुरक्षा मंत्री यून हो जुंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। इस दौरान डिजिटल शासन, सरकार में प्रौद्योगिकी के सकारात्मक उपयोग, लोक प्रशासन, क्षमता निर्माण, नागरिक, केंद्रीय सेवा वितरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल महोबा पहुंचेंगे। सीएम योगी यहां अपने गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली गोरखगिरी पर्वत पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही वह जिले के करोड़ों के विकास योजनाओं को सौगात देंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा सीएम मुख्यालय में बन रहे 55 करोड़ की लागत के निर्माणाधीन कचहरी भवन और नए ट्रामा सेंटर का औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं। दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 22 मई से 20 जून के भीतर 100% सफलता के साथ पूरा हो गया है। इस कार्य की सफलता को राष्ट्रीय जनगणना की तैयारियों में राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। यह अभियान राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयों में चलाया गया है, जिनमें 75 जिले, 350 तहसीलें, 17 नगर निगम, 200 नगर परिषदें, 545 नगर पंचायतें, 13 छावनी बोर्ड और 8 औद्योगिक नगर शामिल हैं। प्रदेश के उद्यान, कृषि, विपणन, कृषि, विदेश व्यापार और कृषि निर्यात विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह आज 2 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंच रहे हैं। शासन के द्वारा उन्हें जनपद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का मुख्य अतिथि नामित किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य मंत्री अमेठी में शाम 7 बजे सुल्तानपुर स्थित सर्किट हाउस पहुंचेंगे। इसके बाद वो उद्यान और मंडी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM Rainbow Channel।

0: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें।
1: वो भूली दास्तां जो फिर याद आ गई।
0: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत अफसाने।

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

107.7 FM रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं शाम एवध आज विजय के साथ। 6:04 का समय हो चुका है और शाम एवध की शाम गुलजार हो चुकी है इस समय लखनऊ की शाम, क्योंकि रेडियो पर आ चुका है शाम एवध प्रोग्राम विजय के साथ। यहां पर बहुत सारी बातें शाम एवध में आपके साथ होंगी और क्रिकेट का अपडेट भी होगा, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच क्रिकेट खेला जा रहा है। आज तीसरा वनडे मैच है, आखिरी वनडे मैच है। भारत 3-0 से क्लीन स्वीप करने

0: की ओर जो है वो बढ़ेगा। और फिलहाल क्या ताज़ा अपडेट है आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्यार से गीत आपको सुनवाता हूँ, उसके बाद लौट कर आता हूँ। तो एंजॉय कीजिए शाम अवद विद विजय।
1: लोग कुछ शूट कर रहे हैं
2: हमारे बिना, शूटिंग कैसे कर रहे हैं?
3: ये तो अपना गाना, कम ऑन,
4: बॉल की शूटिंग हमारे बगैर।
5: Yeah, fair,

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
2: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: आप सुन रहे हैं शाम आवाज विजय के साथ। और भाई, छात्रवृत्ति में डोमिसाइल लगाना अब जरूरी नहीं होगा। केंद्र ने SC और OBC छात्रों के लिए प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन में डोमिसाइल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इससे छात्र आसानी से आवेदन अब कर पाएंगे। सरकार ने उमंग प्लेटफॉर्म पर सेतु डिजिटल सेवा भी शुरू किया है, जिससे आवेदन सत्यापन और निगरानी में पारदर्शिता आएगी। यानी कि छात्रों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। बस आपको अब मेहनत करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, परीक्षा को पास करने की ज़रूरत है, दिन रात एक करने की ज़रूरत है। जब आप दिन रात एक करेंगे तभी तो आपके पापा कहेंगे क्या। वही जो आमिर खान के पापा कहते हैं।

दोस्तों सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी विल मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: साथ एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे शाम में अवध विजय के साथ। भाई अगर आप ऑफिस से निकले हैं अपने घर जाने के लिए इस समय, हालांकि शनिवार है, बहुत से ऑफिसेज बंद हैं लेकिन बहुत से खुले भी हैं, तो प्लीज सीट बेल्ट अपनी कार में लगाकर आप निकलें और हेलमेट का प्रयोग करें। सिग्नल्स और ट्रैफिक नियमों का पालन आप जरूर करें, क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक जाम होता है शहर में वो बहुत दुखदाई और दर्दाई हो जाता है, और ऊपर से सूरज साहब का जो टेम्परेचर जो टॉर्चर होता है वो तो बस पूछिए नहीं। तो इसलिए जो है वो कोशिश ये करें कि शहर में जाम की स्थिति ना बनने पाए, ताकि जो दोपहिया वाहन वाले लोग हैं वो धूप में खड़े खड़े तपे ना। भाई आप तो कार के अंदर एसी में बैठ जाते हैं, लेकिन वो जो दोपहिया वाहन वाले बेचारे बाहर चल रहे हैं उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है। हम बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर सड़क पर उतर जाते हैं और जाम लगा देते हैं। तो भाई इस तरह की स्थिति का सामना जो है वो ना हो तो बेहतर है, और बाकी सरकार तो प्रयास कर ही रही है आपके लिए कि भाई शहीद पथ को जो है चौड़ा किया जाए, उसमें भी जो है वो कुछ ज़्यादा बेहतर से बेहतर सुधार हो सकते हैं वो सारे किए जाएं। तो सरकार जब अपना काम कर रही है तो हमें भी एक देशवासी होने के नाते अपना काम करना चाहिए, ताकि जो है हम भी वो है ना विकसित भारत का जो संकल्प है उसको हम पूरा कर सकें। फिलहाल शामेवद में एक और बहुत ही प्यारा सा गीत, फिर लौट कर आते हैं।

0: वैसे दीवाने चलते चले जाते हैं, उन्हें तपती गर्मी, धूप से, बारिश से, मौसम से कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो चूंकि दीवाने होते हैं इसलिए वो चलते ही चले जाते हैं। तो भाई सलमान खान का तो यही हाल है, लेकिन मौसम का क्या हाल रहने वाला है उसकी जानकारी देने के लिए शाम अवध में हमारे साथ मोहम्मद दानिश जी जुड़ चुके हैं। दानिश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। कैसे हैं सर?
1: मैं अच्छा हूं।
0: ये गर्मी आपको भी परेशान कर रही होगी जैसे हम लोग को कर रही है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो सर मौसम का मिजाज क्या रहने वाला है, कुछ नरमी आने वाली है कि तेवर सख्त रहने वाले हैं?
1: नहीं नहीं देखिए, आज कल परसों कुछ इसी तरीके से मौसम रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा बदलाव होने की संभावना है, और कहीं ना कहीं उसके बाद थोड़ा सा बादलों की आवाजाही के साथ कुछ छींटा टकी टाइप का हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आज कल परसों तीन दिन थोड़ी गर्मी का असर हमको देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर आने वाले दिनों में थोड़ा राहत मिल सकती
0: है, थोड़ी राहत मिल सकती। अच्छा मानसून भाई साहब के आने का क्या अंदेशा है कुछ?
1: देखिए मानसून का तो जैसा कि जो मानसूनल फ्लो है वो उतना अच्छा बन नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद है कि तीन चार दिन के बाद थोड़ा मानसूनल फ्लो भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो कुल मिला के अगर हम करें तो आने वाले अगले चार पाँच दिनों में कुछ अच्छी खबर आने की संभावना बन रही
0: है। मतलब जून जाते जाते और जुलाई आते आते कुछ अच्छे माहौल की एहसास होगा। हाँ
1: जी
0: जी। चलिए आपने इतना ही कह दिया, बहुत रात हमें तो कुछ ठंडा सा लगने लगा मुझे तो आपके कहने से ही सर। थैंक यू वेरी मच। तो दानिश जी ने बताया कि भाई किस तरह से जो है थोड़ा दो तीन दिन की जो है गर्मी है, उसके बाद मौसम थोड़ा सा राहत देगा और मानसून भी जो है वो उसके भी आने की आहट कुछ नजर सी आ रही है। तो बस कुछ दिन की बात और है भाई, कुछ दिन, सिर्फ कुछ दिन टंकी के गर्म पानी से नहा लो ऊ करके, और उसके बाद तो पानी ठंडा हो ही जाना है, थोड़े दिन की बात और है। फिलहाल अगर ऐसा नहीं होता है तो चलिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको जो है ठंडा ठंडा से सुना देता हूँ। आइए इंजॉय करते हैं इस गाने को शाम में।

0: 107.7 एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे शाम में अवध 6:26 का वक्त है और ये तन्हाई तन्हाई गाना जो है वो बीच में ही रुक गया था। हाँ, बहुत जल्दी में था, भाग गया, गर्मी लग रही होगी। फिलहाल कोई बात नहीं, और मौसम का अपडेट आपके पास आ ही गया है, कुछ देर में आएगा ट्रैफिक का अपडेट। लेकिन इससे पहले आपको बताऊंगा कि भाई आशियाना का वनस्थली पार्क जल्द ही मैजिकल लैंड फैंटेसी पार्क के रूप में सामने आने वाला है। क्या होगा यहाँ पर, क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली है, वो सब आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ बारिश सा ठंडा ठंडा सा गाना जो है वो हो जाता है।
1: अरे

0: देखो भैया, ये गाना से तुम्हार घर में बारिश हुई कि नहीं हुई? हमारे स्टूडियो में तो बारिश हो गई भैया, हम तो तरबतर हो गए इन बारिश से, क्या बताए, बड़ा ठंडा एहसास हो रहा है। वो कहते हैं ना गाँव में एक कहावत है कि अगर कोई से कोई काम कराना हो तो उके मन की बात जो है वो बार बार करे चाहिए। तो हम भी कहें कि बादल का अगर बरसावे का है तो वही के मन की बात वही का गाना लगा दो तो क्या कहने हैं, है ना। अच्छा, सुना है कि दिन में थोड़ा सा कुछ जगह पे लखनऊ में बारिश हुई है, कुछ लोग तरबतर हुए हैं, लेकिन देखते हैं अब दो तीन दिन में हालात कैसे बनते हैं। फिलहाल भैया कुल मिला के बारिश हो चाहे ना हो, छतरी लगाओ चाहे ना लगाओ, ट्रैफिक का बहुत ध्यान रखो, बहुत संभाल के चले हो। काहे से विकास जी हमारे साथ फोन लाइन पे आ गए हैं। विकास जी नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार सर
0: जी। नमस्कार सर,
1: को नमस्कार
0: जी, बताइए सर।
1: लखनऊ शहर में वर्तमान में यातायात सामान्य गति से गतिमान है
0: जी,
1: कहीं भी अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है सर। एक मार्ग जो अपना लखनऊ कानपुर मार्ग है वहाँ पर आलमबाग के पास

0: को नमस्कार
1: जी बताइए सर।
0: लखनऊ शहर में वर्तमान में यातायात सामान्य गति से गतिमान है
1: जी,
0: कहीं भी अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है सर। एक मार्ग जो अपना लखनऊ कानपुर मार्ग है वहां पर आलमबाग के पास में थोड़ा सा दबाव है यातायात का, बाकी कहीं पर यातायात का दबाव नहीं है सर।
1: सर वहाँ पे
0: सामान है
1: आलमबाग में तो बस अड्डे की वजह से जो है दबाव रहता है, बसों का आना जाना इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से वहाँ ट्रैफिक का दबाव हमेशा रहता है, ये तो है। और मुझे लगता है प्रशासन को इसका कोई हल निकालना भी पड़ेगा क्योंकि बड़ा दर्ददायी हो जाता है ये।
0: बिल्कुल सर, इसके लिए लगातार जो है परिवहन विभाग से कार्रवाई चल रही है सर, और इसको अन्यत्र स्थापित करने के लिए भी विचार किया जा रहा है।
1: जी जी जी
0: जी सर।
1: और कोई डाइवर्जन वगैरह तो ट्रैफिक में नहीं है?
0: नहीं सर, आज कोई डायवर्जन नहीं है, यदि कोई डायवर्जन होता है तो आपके माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचाएंगे।
1: क्योंकि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जगह जगह कार्यक्रम भी हैं।
0: योग दिवस के दौरान सर कल जो है हमारे कुछ क्षेत्र में, जैसे कि अगर हजरतगंज की बात करें
1: जी जी
0: तो
1: जी।
0: हमारा जो जनभवन है, जनभवन के आसपास डायवर्जन रहता है सर।
1: अच्छा।
0: और इस दौरान जो हम हजरतगंज से DSO चौराहा बदरियाबाग की तरफ यातायात प्रतिबंधित रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ लाल बत्ती चौराहा से सिसंडी तिराहा की तरफ यातायात प्रतिबंधित रहता है।
1: ओके।
0: तो इस दौरान आप गोल्फ चौराहा से SN ओवरब्रिज वाला मार्ग प्रयोग कर सकेंगे, साथ ही आप हजरतगंज से विधानसभा वाला मार्ग का प्रयोग कर सकेंगे।
1: तो
0: ये मार्ग थोड़ी देर के लिए प्रतिबंधित
1: रहेगा। इसकी टाइमिंग क्या रहेगी प्रतिबंधित?
0: ये सर प्रातः जो है हम लगभग 6 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक सर ये रहेगा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, 6 बजे जो योगा का जो टाइम है उसके हिसाब से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है कोलकाता में जो है योग दिवस का नेतृत्व करेंगे इसी समय पे। ठीक है
0: सर।
1: ठीक सर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर ट्रैफिक अपडेट देने के लिए, शुक्रिया सर।
0: जी धन्यवाद, आभार।
1: तो भाई ट्रैफिक का अपडेट ये है कि ज़्यादा कुछ डाइवर्जन वगैरह नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। आपको संभाल के गाड़ी चलानी होगी, और अगर आप संभाल के गाड़ी नहीं चलाएंगे तो भाई दिक्कत इस तरह से आएगी।

0: शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

FM रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं समय शाम है वाद्य विजय के साथ। 6:39 का समय हो चुका है और आशियाना का वनस्थली पार्क जल्द ही मैजिकल लैंड फैंटेसी पार्क के रूप में सामने आने वाला है। यहां पर जुरासिक पार्क की तर्ज पर ड्रैगन, यूनिकॉर्न, साइक्लोप्स, एरावत के 10 इंटरैक्टिव रोबोट मॉडल देखने को मिलेंगे। साथ ही सुप्रसिद्ध इंडियन फेरी टेल पंचतंत्र की कहानी और किरदार भी लोगों को यहां पर लुभाएंगे। क्या बात है। और LDVC प्रथमेश कुमार जी ने पार्क का निरीक्षण करके विकास कार्यों का पूरा जायजा ले लिया है और सितंबर 2026 तक सभी विकास कार्यों को पूरे करने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी इसको पूरा करो, तभी जो है वो क्या कहते हैं ना, पार्क बनकर तैयार होगा और इसमें जो है वो जुरासिक पार्क की थीम पर बहुत सारे जानवर भी देखने को मिलेंगे। बच्चों का एक खासा आकर्षण यहाँ पर होगा। तो चलिए बच्चों, हमारे नौनिहाल के लिए काफ़ी कुछ हमारी सरकार जो है वो प्रयास कर रही है, सोच रही है कि उनका जो है वो मनोरंजन होता रहे। तो फिलहाल एंटरटेनमेंट तो आपका भी हो रहा है शाम अवध में, तो इसी बात पर एक बहुत ही प्यारा सा गीत हो जाए। और गीत गया कहाँ, वो रहा

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: FM रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं शाम में अवध विजय के साथ। 6:46 का समय हो चुका है और भारत अफगानिस्तान के मैच की अगर बात की जाए तो 93 रन भारत बना चुका है। इस समय 0 पर यानी कोई विकेट नहीं गिरा है। यशस्वी जायसवाल ने 50 रन बना लिए हैं, अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है। रोहित 30 पर खेल रहे हैं इस समय और अफगानिस्तान ने गिरते पड़ते 219 रन का भारत को टारगेट दे दिया था और उसके जवाब में भारत जो है वो अभी कोई विकेट उसने नहीं खोया है और ये दोनों ही खिलाड़ी मैदान में जमे हुए हैं। यानी वनडे मैच में 3-0 से क्लीन स्वीप करने वाला है भारत, अफगानिस्तान कोई भी मैच उसके हाथ नहीं लगेगा भाई। तो ये तो बहुत अच्छी खबर है, इसी तरह से आगे बढ़ते रहो भैया, इसी तरह से। हाँ समझ गए भैया, गाड़ी चला रहे हो तो सीट बेल्ट जरूर बांध लेना और अगर टू पहिया यानी दो पहिया से हो तो हेलमेट लगा लेना।

6:51 मिनट का समय हो गया है भाई, अब इस प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना है, लेकिन लेकिन 7 बजे और 7 से 8 जो प्रोग्राम होता है हेलो एफएम, घंटी बजना शुरू हो चुकी है, फोन घनघनाने लगा है। अभी थोड़ी देर राहत की सांस लीजिए, अभी आऊंगा और आपसे बातचीत जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले कल होगा 21 जून प्रातः 10 बजे आज के मेहमान कार्यक्रम, जिसमें कौन मेहमान है कल का ये जानना आपके लिए और अपन के लिए बहुत जरूरी है, समझा? हाँ, 10 बजे आप सबका अपॉइंटमेंट है, हाँ, क्या? तो भाई अपॉइंटमेंट है श्री रंजन कुमार साहब, प्रमुख सचिव आयुष विभाग उत्तर प्रदेश, और इनसे बातचीत करेंगे सुभाष खन्ना जी। एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, न्यूज ऑन एयर ऐप और डीटीएच पे आप आज के मेहमान कार्यक्रम को सुन सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कल 12 से 1 के बीच में जो प्रोग्राम होना है उसमें कृष्ण दत्त मिश्रा जी, योगाचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी हमारे साथ होंगे, योग पर चर्चा होगी, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिलहाल चलिए अब इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनवाता हूँ, सुनिए दिल थाम कर।

0: गणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: 6:56 का समय है, शाम हेवत को यही वाइंड अप करना चाहूंगा। हेलो एफएम, मैं दोबारा आपसे मुखातिब होता हूँ। सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ की शानदार फ्रीक्वेंसी पर।

नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए टॉप 10 समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और रचनात्मक संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा और प्रभाव को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त आज जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली में तारकेश्वर से 9.44 करोड़ किसानों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री को मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया। भारत और दक्षिण कोरिया ने लोक प्रशासन और डिजिटल शासन में सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के गृह और सुरक्षा मंत्री यून हो जुंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ये पुष्टि की है। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से लगाया है प्रतिबंध। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल करा रही है। इसका उद्देश्य परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ललितपुर में 1,766 करोड़ की 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ललितपुर पहले विकास से कोसों दूर था, लेकिन आज ये नवाचार के लिए जाना जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मधुमक्खी गलियारा विकसित करने की योजना बनाई है। योजना के तहत हाईवे के किनारे फूल और औषधि के पेड़ लगाए जाएंगे। भारतीय रेलवे ने बिना टिकट या अनाधिकृत तरीके से यात्रा करने वाले यात्रियों लगाए जाने वाले न्यूनतम जुर्माने की राशि को 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। ये नया नियम 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो जाएगा। वाराणसी में आज आयोजित पासिंग आउट परेड के साथ 135 अग्निवीर भारतीय सेना के अनुशासित और प्रशिक्षित सैनिकों के रूप में राष्ट्र सेवा के लिए तैयार हो गए हैं। 24 सप्ताह के सैन्य प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद इन अग्निवीरों ने देश की सुरक्षा और अखंडता की रक्षा का

संकल्प लिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो चैनल, जिस पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है हेलो FM। चलिए 7:03 का वक्त हो गया, एक छोटा सा गाना लगा देते हैं, उसके बाद आप लोगों का फोन कॉल अटेंड करेंगे।

0: the Bangalore. सात बजे छह मिनट का समय हो चुका है। भूत मंगला फिल्म का ये गाना भी आपने सुन रहे थे। हम तो भाई डर के इजीली गाना धीमा कर दिया। फिलहाल मेरे साथ फोन लाइन पे कौन है? हेलो,
1: हेलो, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग जी, कौन बोल रही हैं?
1: जी मैं निशा अंसारी जिला वारण के बोल रही हूँ।
0: निशा जी नमस्कार, कैसी हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं सर? आप
0: जी जी थोड़ा सा कुछ जरूरी कामों की वजह से अवकाश पे चला गया था, लेकिन अब वापस आ गया हूँ। आप बताइए कैसी हैं, सब ठीक ठाक है? जी जी। निशा जी क्या करती हैं आप?
1: हम सिलाई करते हैं और हथकरघा चलाते हैं और जो काम है वो करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, सिलाई करती हैं आप, हैं?
1: जी हाँ।
0: तो कैसे, मतलब कुछ खास तरह के कपड़े सिलती हैं या जो नॉर्मल हैं वो सिलाई करते
1: हैं?
0: सभी तरह के
1: हैं।
0: अच्छा अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छा है। सिलाई का काम भी जो है वो वाकई बहुत अपने आप में एक टैलेंट है, रखता है। तो गाना आपने धड़कन फिल्म का सुनना चाहा है, किसको सुनाना चाहती हैं आप?
1: आपको पहले सर।
0: थैंक यू। और
1: कितने लोग कुछ नाम लेना है?
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: गुलाब सिद्दीकी है, सुभान अंसारी, रुसाना अंसारी, सानिया अंसारी,
0: जी जी जी,
1: सुभान अंसारी और सुभान कुरैशी, और जितने लोग सुन रहे सभी को
0: जी जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका गाना आपको सुनवाता हूँ, ठीक है? धन्यवाद जी, धन्यवाद। 7:07 का वक्त हो गया है। यहाँ पर गीत और संगीत का सिलसिला लगातार जारी है। चलिए धड़कन फिल्म का गाना आपको सुनवा दी।

0: जी हाँ, धड़कन फिल्म का गाना भी आपने सुना। फरमाइश पे इस समय फोन लाइन पे मौजूद है। हेलो
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: लवकुश जयपुर का सांग उकेर बाराबंकी से बोल
0: रहे हैं। लवकुश जी बोल रहे हैं बाराबंकी से।
1: जी बाराबंकी बॉर्डर है, सीतापुर लखनऊ बाराबंकी तीनों बॉर्डर।
0: कैसा मौसम है वहाँ का?
1: मौसम सर तो इस समय गर्मी का है, आज बादल का आवागमन लगा रहा है।
0: बारिश हुई थी क्या उधर?
1: बारिश नहीं हुई, हल्का बूंदी आई थी। बारिश तो नहीं हुई है।
0: बारिश नहीं हुई, सिर्फ बूंदी हल्की हल्की आई थी।
1: हल्का सा बूंदी आई थी।
0: तो
1: हो जाए तो मौसम ठंडा पड़ जाए। आज तो गर्म बहुत ज्यादा हो,
0: बहुत ज्यादा गर्म हो रही वाकई में। तो कैसे घर पे रहते हैं कि आप मतलब काम वाम करने जा रहे हैं?
1: नहीं सर, खेती करते हैं, सब्जी की खेती करते हैं, घर पे रहते हैं, सब्जी की खेती करते हैं।
0: सुबह जाते होंगे जल्दी उठ के फिर? है
1: सुबह 5:30 बजे खेत चले जाते हैं, 10 बजे घर आ जाते हैं।
0: 10 बजे घर आ जाते हैं, हाँ ठीक भी है। लेकिन 10 बजे भी अच्छी खासी गर्मी हो जाती होगी, है ना?
1: जी सर, गर्मी तो हो ही है।
0: चलिए, वो जमीन फिल्म का गाना सुनने की फरमाइश की, किसको सुनवाना चाहते हैं?
1: आपके लिए और सभी सुनने वालों के लिए।
0: धन्यवाद, धन्यवाद, क्या बात है। चलिए बहुत अच्छा, आपको तुरंत आपका जो है गाना सुनवाता हूँ, ठीक है सर? थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए, जमीन फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी को सुनवाता हूँ, भाई साहब की फरमाइश पे।

0: सुबह शुरू में साथ एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं हेलो एफएम, विजय के साथ मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं?
1: इतने दिनों के बाद आए, सलाम का जवाब देना भूल गए, फिर से जवाब दो।
0: अरे अस्सलाम वालेकुम जी, हाँ जी जी जी जी, बहुत दिनों बाद तो आया हूँ। जी
1: नहीं, वालेकुम अस्सलाम कहो पहले।
0: अच्छा, वालेकुम अस्सलाम कहेंगे, ठीक है भाई, हमें तरीका नहीं आता है, माफी चाहते हैं, है ना।
1: तो नहीं, आपको सब आता है, आप काफी दिनों के बाद स्टूडियो में आए इसलिए भूल गए।
0: भूल जा रहे हैं, हाँ सब भूल जा रहे हैं, ये बात तो सही है।
1: आप जो है तो आप नहीं
0: भूलेंगे। हाँ, इधर कुछ व्यस्तता इतनी थी कि जिसकी वजह से आना नहीं हो पाया, लेकिन जो है वो अब जल्दी जल्दी आऊंगा। और ये बताइए, अपना नाम तो बताइए।
1: जिला सीतापुर पचैनापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बताइए आप कैसे हैं?
0: बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ मैं। और आपसे बात हो गई तो और भी अच्छा हो गया हूँ। और आपने जो है गाने की जो फरमाइश की है वो रास फिल्म का गाना है, किसको सुनवाना चाहती हैं?
1: सबसे पहले आपको
0: शुक्रिया।
1: गुलाब साहब की, साहेबान सारी, साजियान सारी, रिंकी पिंकी, आरजे पूनम
0: जी जी जी,
1: और मोहम्मद फैज भाई, मोहम्मद आसिफ भाई, वकील अहमद भाई, और जितने सुन रहे हैं उन सभी सुनने वालों को।
0: चलिए मैं आपका गाना तुरंत सुनवाता हूँ, क्योंकि 3 मिनट बाद समाचार आ जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा गाना जो है वो।
1: हेलो
0: जी जी जी जी जी,
1: हमारे यहाँ विविध भारती नहीं बजता है, हमारी बात अधिकारी तक पहुंचा दो कि विविध भारती बजने लगे।
0: ठीक है, बिल्कुल हम पहुंचा देंगे, बिल्कुल पहुंचा देंगे, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: भारती चैनल नहीं पकड़ता है
0: जी, मैं जो है सोमवार को जैसे ही ऑफिस खुलेगा आपकी बात जो है वो तुरंत पहुंचाऊंगा, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू, बाय बाय बाय।

0: पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड में बनेगा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों में होगी आयोजित। प्रदेश में अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किरायों में मिलेगी 50% की छूट। और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य पूरा। दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा संपन्न। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हुगली में तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। इनमें उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनके खातों में 4,352 करोड़ रुपए की राशि पहुंची है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश भर के किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।
1: आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रदेश भर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी से इस कार्यक्रम में सहभागिता की। श्री योगी ने प्रदेश के किसानों की ओर से इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि अन्नदाता के परिश्रम, सम्मान और समृद्धि के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। प्रदेश के किसानों ने खुशी व्यक्त करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। जौनपुर के एक लाभार्थी ने कहा,
2: किसानों को बहुत फायदा मिलता है। बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए, जुताई देने के लिए काम आ जाता है। उसके लिए हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं। जैसे छोटे मोटे किसान हैं, उनको फायदा हो जाता है, इससे किसानों को आसान हो जाता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ललितपुर में 1,766

0: 68 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड विकास का एक मॉडल बन रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना बुंदेलखंड में साकार हो रही है, शुद्ध पेयजल लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है।
1: अब मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बहन और बेटियां, हमारी माताएं सिर में घड़ा लेकर के नहीं, हर घर नल की योजना साकार हो रही है। बुंदेलखंड के अंदर शुद्ध पेयजल उनके घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है, तो बुंदेलखंड अब एक मॉडल बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी अगर हम कहीं बसाने जा रहे हैं तो वह भी बुंदेलखंड में बसाने जा रहे हैं।
0: श्री योगी ने कहा कि ललितपुर में प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है।
1: आज ललितपुर बदल चुका है, अब ललितपुर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है, अटल आवासीय विद्यालय भी है, और अभी 1500 एकड़ क्षेत्रफल में हम उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क आपके ललितपुर जनपद में बनाने जा रहे हैं।
0: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,69,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को इस बार परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद के कारण रद्द कर दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और नकल विहीन ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। केंद्रों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती के साथ पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। प्रदेश में 59 जिलों में नीट की पुनर्परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश रेलवे लखनऊ मंडल विशेष अनारक्षित स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है। वहीं प्रवेश पत्र दिखाने पर अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में भी योग के दिवस के अवसर पर सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश में सभी जनपदों में योग दिवस के अवसर पर कल योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पे होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं लखनऊ स्थित राजन भवन में इस अवसर पर महिला योग सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाएं योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगी। इसी तरह विभिन्न जनपदों में प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। योग दिवस पर विद्यालयों में सामूहिक योगाभ्यास और योग से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां विद्यार्थियों को योग के शारीरिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी। समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुलामी की मानसिकता को लेकर कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आत्मनिर्भरता के लिए गुलामी की मानसिकता को दूर कर अपनी विरासत के प्रति गौरवान्वित होना चाहिए। मेरठ की ग्राम पंचायत फफुंडा स्थित प्राथमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉ सोमेंद्र तोमर ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि आज प्रदेश विकास, निवेश और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है।
3: सरकार आपके द्वारा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हमेशा प्रयास यही है कि सरकार

0: सरकार अपने जो सम्मानित नागरिक है उनसे संवाद करके उन सुझावों के साथ हम लोग प्रदेश और देश के विकास में उनकी सहभागिता हो। आज भी हम लोगों ने यहाँ पर जो स्टॉल्स के माध्यम से जो जिले के अलग अलग विभाग है उनकी सबकी स्टॉल्स लगी और यहाँ पर जो उनके सुझाव है, यदि कोई पेंशन के लिए था तो उसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन हमारी स्वयं सहायता समूह 32 स्वयं सहायता समूह इस गांव के अंदर है, उसकी जो मातृशक्ति का योगदान हमारे इस गांव के लिए, इस मेरठ के लिए हो रहा है, उसका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों की जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया, इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान जनगणना का काम 100% पूरा कर लिया गया है। पहले चरण में निर्धारित 22 मई से 20 जून 2026 तक घरों की गणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। राज्य के जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार प्रदेश के सभी 75 जिलों, 350 तहसीलों और 1,00,000 से अधिक गांवों में मकान सूचीकरण के लिए 5,00,000 से अधिक प्रगणकों और पर्यवेक्षकों ने सक्रिय भूमिका निभाई। जनगणना का दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गणना होगी। इसी चरण में जाति गणना की भी की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड में बनेगा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों में होगी आयोजित। प्रदेश भर में अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में मिलेगी 50% की छूट। और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य पूरा। दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा संपन्न। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जी एक बार फिर वापस स्वागत है आपका न्यूज ब्रेक के बाद, और मेरे साथ फोन लाइन पे समय। हेलो हेलो भाई, हेलो हेलो हेलो। चलिए खैर, फोन जो है वो कट गया भाई हम, लेकिन गाने की फरमाइश सात समुंदर पार थी। देखते हैं इधर कौन है। हेलो
2: हेलो, नमस्ते सर जी।
1: हाँ नमस्ते जी, क्या नाम है आपका सर?
2: मोहम्मद तालिब अंसारी, राजा कटरा बारह बंकी। सर जी हम ही थे।
1: अच्छा। मैं सोचूं यार भाई।

0: आ गया अपना, चलिए ठीक है, लेकिन अच्छी मुलाकात।
1: धड़कने सर जी ऊपर नीचे लगे इतनी, मैंने सर जी कॉल लगा।
0: हाँ मैं भी बड़ा ताज्जुब, मैंने फेडरल ऊपर क्या देखा, मैंने आवाज ही नहीं आ रही कोई, क्या बात है, लेकिन चलिए आ गई। खैर आपका गाना था विश्वात्मा का। किससे सुनवाना चाहते हैं
1: सर जी? बहुत दिनों के बाद सर जी आप आए हैं।
0: हाँ भाई थोड़ा सा जो है माफी चाहता हूँ, क्या करूँ, है ना, थोड़ा सा व्यस्त हो गया था इस वजह से, लेकिन आ गया हूँ तो आ गया हूँ। अब
1: आप सर जी पानी गिरेगा पक्का।
0: हाँ लग रहा पानी गिरेगा
1: जी, आप आए हैं सर जी, आप पानी देखिए नेक्स्ट 3-4 दिनों में पानी गिरेगा।
0: हमने आज पानी

0: सर जी, उसके बाद में 2-3 दिन के बाद पानी गिर जाएगा। हाँ तो मिले सर जी, आए फिर पानी गिरा था सर जी, फिर आए फिर पानी
1: क्या बात
0: गिरेगा।
1: सब आप लोगों का प्यार और प्रार्थना है। ये बताइए कि सात समुंदर पार गाना किसको सुनवाना चाहते हैं, कौन है सात समुंदर पार?
0: नहीं, हमारे हमारे भाई हैं मोहम्मद आसिफ भाई, तेलंगाना हैदराबाद से,
1: अच्छा,
0: और साबिर भाई हैं कानपुर से। जी हमारे दोनों भाई दूर रहते हैं लेकिन सर जी रेनबो से कनेक्ट रहते हैं, और हम लोग हम भी कनेक्ट रहते हैं, तीनों भाई रेनबो से कनेक्ट रहते हैं।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है।
0: लोकल मिल जाता है लेकिन उनको एस के थ्रू सुनना पड़ता है, लेकिन रेनबो हम लोग को कनेक्ट रखता है, ये सबसे बड़ी रेनबो की खूबी है।
1: ये बात तो है, अपना रेनबो है ही ऐसा, है ना। तो चलिए आपका गाना आपको सुनवा देता हूँ, ठीक है?
0: थैंक यू सर।
1: ठीक ठीक ठीक, परेशान ना होइएगा, फोन मिलाते रहिए, है ना, मिलेगा फोन। ओके ओके, गुड नाइट, बाय बाय बाय बाय बाय। चलिए तो भाई फरमाइश पर ये गाना सात समंदर पार जल्दी से सुनवा देता हूँ।

0: दिव्या भारती का डांस परफॉर्मेंस और विश्वातवा फिल्म 1992 की रिलीज हुई है फिल्म, और साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्कार सर, मैं प्रीतम बोल रहा हूँ।
0: प्रीतम जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: सर मैं इधर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, चंपावत जिले से।
0: चंपारण जिले से बोल रहे हैं?
1: चंपावत।
0: अच्छा चंपावत जिले से, तो वहाँ तो सर मौसम अच्छा होगा ना?
1: जी सर इधर गर्मी कमी होती है, फिर हवाएं चलती रहती है पहाड़ों का।
0: हाँ अभी मैं जो है वो गया था तो देहरादून होके आया हूँ, तो वहाँ का भी मौसम ठीक था, है ना? वहाँ पे कुल्हान एक जगह है पहाड़ पे ही, तो वहाँ मेरा जाना हुआ था, तो टेम्परेचर वहाँ भी 20-22-23 ऐसे ही था, तो बड़ा अच्छा और बहुत साफ मौसम रहता है वहाँ का।
1: जी सर, तो बारिश कभी भी आ जाती है, कभी भी धूप खिल जाती है।
0: हाँ तो अभी तो वहाँ पे जो है चंपारण में भी बारिश का येलो अलर्ट आया है आज, है ना?
1: जी,
0: हाँ मुझे पता है, मैं मैसेज आया था मोबाइल पे मेरे तो। अच्छा ये बताइए कि वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं आप?
1: जी सर इधर तो ऐसे खेत होते हैं, तिलहन की जैसे खेत होते नहीं, यहाँ तो सीढ़ीदार खेत होते हैं।
0: अच्छा अच्छा वो वाले होते हैं
1: जी।
0: अच्छा वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ भी बहुत सारे होते हैं?
1: ना सर इस तरफ नहीं, उधर गढ़वाल साइड में।
0: अच्छा उधर होते गढ़वाल साइड में है। हाँ मुझे

0: देखा था मैंने लौटते समय रुद्राक्ष का एक पेड़ देखा था मैंने। तो ये खेती जो है आप करते हैं, इसके अलावा और कुछ है? नहीं। अच्छा चलिए, तो ये है कि कितने साल से वहां रह रहे हैं आप?
1: इधर तो बहुत साल से यही है, पैदाइश दादा
0: कभी लखनऊ आना हुआ है?
1: जी, लखनऊ में ताऊजी रहते हैं सर, इधर नीलमथा जैन टेम्पल।
0: अच्छा, आते हैं फिर है?
1: जी,
0: क्या
1: आप
0: अच्छा
1: तो
0: लगता
1: आए
0: है लखनऊ में
1: हैं
0: आपको?
1: सर। लखनऊ में सर मैंने एक जगह इधर नवल्टी सिनेमा पड़ता है अंदर, वहाँ एक जॉब करी थी।
0: नवल्टी सिनेमा, हाँ, लाल बाग।
1: जी,
0: अच्छा, वहां जॉब
1: यहाँ
0: करी
1: मतलब
0: थी।
1: लखनऊ में पहले, आजकल तो अब गांव में ही रहना हो गया।
0: अच्छा, बताइए खाना पीना अच्छा लगता है लखनऊ का?
1: जी सर, बहुत बढ़िया
0: जायकेदार
1: खाना
0: होता
1: पीना।
0: है। हाँ, जायकेदार,
1: जी
0: मजा आ
1: सर,
0: जाता है खाने में।
1: जी सर,
0: ये बात तो है। चलिए बहुत अच्छा है। चलिए, लखनऊ में कुछ तो आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सुन के, और बहुत अच्छा लगा फोन करके। आप इसी तरह से फोन करते रहिए, भले आप उत्तराखंड में हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमारे दिल के बहुत नजदीक हैं।
1: जी सर, मैं सुनते रहता हूँ ना सर, इधर तो रेडियो अच्छा साथ पकड़ता है, पहले तो
0: ठीक
1: नहीं पकड़ता था, अब आजकल ठीक पकड़ने लग गया। ठीक
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो भाई देखिए, उत्तराखंड के हमारे जो लिसनर थे, उन्होंने कहा मौसम बहुत अच्छा रहता है फिलहाल। हेलो,
2: हेलो,
0: अरे रुकिए एक मिनट, एक मिनट होल्ड कीजिए भाई,
2: ठीक है ठीक है।
0: अब
2: हेलो
0: बताइए। हाँ, आवाज साफ?
2: जी, बिल्कुल सर,
0: दो लाइनें मिल गई थी आपस
2: जी
0: में।
2: जी जी सर,
0: चलिए क्या करते हैं सर, आप बताइए, नाम बताइए अपना।
2: जी सबसे पहले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरा सलाम, और सर आपको भी प्यार भरा गुड इवनिंग और प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरा सलाम।
0: सारा प्यार भरा है, क्या
2: जी
0: बात है,
2: बिल्कुल,
0: बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। प्यार भर गया आपका तो दिल हमारा पानी से भर गया। ठीक है।
2: जी सर, मेरा नाम है मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा, जिला बाराबंकी से बात करें सर।
0: अरे क्या बात है, तो चलिए धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से
2: जी
0: गुजर
2: सर,
0: जाना है। किसको सुनवाना चाहते हैं गाना?
2: सबसे पहले मेरे क्यूट से प्यारे वाले आरजे विजय सर आपको,
0: ओहो थैंक यू।
2: और उसके बाद में मोहम्मद कहीर भाई हैं,
0: हाँ
2: और मेरे आसिफ भाई हैं,
0: हाँ
2: और मेरी दो बहनें रिंकी पिंकी हैं, मोहम्मद जावेद अख्तर भाई हैं, समा परवीन आता है, गुलाब प्रसाद हैं, साहिबा हैं, सादिया यासिर हमीद भाई हैं, और बाबू अंसारी भाई हैं, और मोहम्मद अंसद भाई हैं।
0: ठीक है, ठीक है, सबको सुनवा दे।
2: सर
0: हाँ,
2: गाने का बोल गुनगुनाना चाहता हूँ सर, प्लीज।
0: गुनगुना दीजिए,
2: जी एक गाना मुझे सुनना है,
0: गुनगुनाइए। नहीं, गर्मी तो वैसे भी बहुत है, गुनगुना नहीं, ठंडाई दीजिए। ठीक है,
2: ठंडा दे
0: हाँ ठंडाई दीजिए। ठीक है।
2: ये गाना सुना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, ये वाला सॉन्ग है। थैंक
0: हाँ, समझ गया, वही लगाया है मैंने।
2: यू सो मच,
0: ठीक, नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो भाई फरमाइश पे बहुत ही प्यारा सा गाना आप सभी को सुनवाता हूँ, एंजॉय कीजिए। हेलो एफएम, प्रोग्राम का नाम है चल रहा है समय, और गाना ये रहा।

0: बिल्कुल, प्यार तो तभी बढ़ेगा जब आपके मन की बात और मेरे मन की बात मिलेगी। इस समय लाइन पर है, हेलो
1: जी, नमस्ते
0: जी। नमस्कार सर जी, कौन?
1: राम प्रसाद, ग्राम अर्जुन जिला हरदोई से बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी राम प्रसाद जी, कैसे हैं?
1: हम सर अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: बस बहुत अच्छा है। क्या करते हैं हरदोई में सर आप?
1: सर गांव रहते हैं, जिला है हरदोई।
0: अच्छा, जिला हरदोई है, गांव में रहते हैं।
1: गांव रहते हैं
0: तो खेती बाड़ी काम करते हैं?
1: जी हाँ, खेती करते हैं।
0: अच्छा, क्या उगा रहे हैं इस समय? इस समय खेत में क्या बोया है?
1: गन्ना।
0: गन्ना बो दिया है?
1: ये गन्ना में पानी लग गया आज, खा जल सो जाएगी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो गन्ने की खेती जो है वो बहुत आसान पड़ती होगी?
1: आसान है सर, गन्ने की तो धूप में काम करना पड़ता है गन्ने में।
0: अच्छा, गन्ने में मतलब ये कोई समय नहीं होता क्या? सुबह जाते हैं 5 बजे?
1: जी नहीं, हम सुबह से तो 9 बजे तक काम करते हैं।
0: अच्छा, काम करते हैं
1: 9 बजे तक, और फिर 4 बजे से 7 बजे तक काम करते हैं इधर।
0: अच्छा, और परिवार में कौन कौन है?
1: परिवार में दो है,
0: भाई बहन है। अच्छा, तो चलिए आपकी फरमाइश का जमाना दीवाना का गाना मैंने लगा रखा है, ठीक है
1: जी सर।
0: किसे सुनवाना चाहते हैं?
1: सुनने वालों को, आपको भी।
0: हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए साहब, फरमाइश पे गाना है। हेलो हेलो, चलिए दूसरे साहब नहीं है इस समय, फिलहाल ये गाना आपको

0: 7:50 का वक्त है, 50 हो गया, 7:50 का वक्त है। हेलो एफएम सुन रहे हैं आप और मेरे साथ फोन लाइन पे भी कोई जुड़ चुका है। हेलो वाह क्या आवाज है। नहीं भाई साहब नहीं। हेलो नो टेक्निकल फॉल्ट है भाई, टेक्निकल फॉल्ट है। 7:50 का वक्त है, टेक्निकल फॉल्ट है। भैया ने गाना मांगा था, ये दिल है आशिकाना का गाना तो है बजाना, लेकिन इस समय फोन लाइन पे कोई और है तो बात करना है। हेलो डायरेक्ट बात कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी नमस्कार।
1: नमस्ते सर।
0: कौन बोल रहा है जी?
1: आरती पाल।
0: आरती पाल जी कैसी हैं आप?
1: अच्छे हैं सर।
0: अच्छा क्या करती हैं आरती पाल जी?
1: कुछ नहीं सर, घर पे हैं।
0: अभी घर ही पे हैं
1: जी।
0: कौन से शहर से बोल रही हैं आप?
1: सुल्तानपुर से बोल रहे हैं सर।
0: सुल्तानपुर से बोल रहे हैं, अच्छा कैसा माहौल है? गर्मी तो वहाँ भी बहुत होगी आरती जी।
1: जी सर।
0: गर्मी बहुत होगी ना वहाँ पे?
1: जी सर बहुत गर्मी है।
0: अच्छा ये बताइए आम खाए दशहरी की नहीं आपने इस बार?
1: आम सर खाए, अभी हमारे यहाँ आम का पेड़ है ना, उसमें हाँ। लगा है पेड़।
0: कौन सा आम लगा है वहाँ पे?
1: अरे ऐसे नॉर्मल आम है सर।
0: नॉर्मल आम तो इसका भी तो कोई नाम होता होगा, देसी है कि चुस्वा है?
1: देसी देसी सर।
0: देसी आम है, वो भी बहुत मीठा होता है
1: जी सर।
0: तो उधर दशहरी आते कि नहीं
1: जी सर?
0: दशहरी आते हैं कि नहीं उधर सुल्तानपुर में?
1: आते हैं
0: तो आने लगे। इस बार दशहरी अच्छा आ रहा है कि नहीं? कुछ अंदर से कुछ फीका सा नजर आ रहा है।
1: अभी सर लाए नहीं, अभी हमारे यहाँ पेड़ में है इसलिए अभी बाजार से नहीं आया।
0: बाजार से नहीं आया? अच्छा मैं लाया, मैंने दशहरी खाया तो ऊपर से मीठा लेकिन अंदर से हल्का सा खट्टा आ रहा है दशहरी। तो हम लोग मैंगो शेक बना के ही पी जा रहे हैं फिर उसको, है ना। हाँ क्या करें अब, जब अंदर से खट्टा हो रहा है तो मैंगो शेक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं उसे, ठीक है। चलिए
1: कौन मीठा है ना सर?
0: जी जी जी हाँ हाँ। चलिए एक गाना लगा हुआ है, हमारे पहले लिसनर थे उनका फोन कट गया है, ये दिल आशिकाना का, वही गाना आपको भी सुनवा देता हूँ। किसे सुनवाना चाहेंगे आप बताइए? अच्छा
1: कोई नहीं सर, हम सब बैठे हैं, भाई है मेरा, बहन है।
0: सबको नमस्कार बोलिएगा, सबको नमस्कार, ठीक है। ठीक है चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है ऐसे ही फोन करती रहिए आरती जी।
1: थैंक यू
0: जी, नमस्कार नमस्कार। आरती पाल से जो है वो फोन मिल गया था। चलिए गाना बजाता हूँ, ये दिल आशिकाना।

0: जी हाँ, ये दिल आशिकाना है। 7:56 का वक्त हो गया। अब इस प्रोग्राम को ये वाइंड अप करना चाहूंगा, लेकिन हमें बहुत सारे हमारे भाई लोगों ने मेल भी किया है। राज कमल यादव जी, हेलो एफएम में, उन्होंने ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज से मेल किया है। और राजन शर्मा जी, नमस्कार राजन शर्मा, और धुरंधर मूवी का हालांकि गाने की फरमाइश की उन्होंने। सर इसमें फ़ोन प्रोग्राम होता है तो फ़ोन इन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो है जो मेल किया है, रामराज जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। आपने गुलफ्सा सिद्दीकी जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बैनत कुमार जी आपको भी, विनीत कुमार जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, भैया मोनू सेठ हमारे, वो तो हम जैसे ही आए थे वैसे ही उन्होंने हमको मेल कर दिया था, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपको। अशोक कुमार जी, दादा मोनू थैंक यू वेरी मच, आपका आपने मेल हमें किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब लेकिन इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करेंगे, क्योंकि अगला प्रोग्राम लेकर आ गए हैं हमारे अजीज कलाकार अनवारुल हसन साहब, नमस्कार।
1: हाँ तो मतलब मैं आ चुका हूँ, क्योंकि अब विजय भाई की देखिए सांसें फूल रही हैं, थक चुके हैं बहुत ज़्यादा,
0: बहुत अब सब थक चुका हूँ, बहुत थक गया हूँ भाई, बहुत थक गया हूँ, संभाल लो भाई,
1: चारपाई बिछा दिए खाट।
0: अब अनवारुल भाई का प्रोग्राम सुनेंगे हम लोग। हाँ, गुड बाय, टेक केयर।

नमस्कार, रात के 8 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुगली जिले के तारकेश्वर में प्रधानमंत्री किसान योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। इससे देशभर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों से अपील की कि वो खेत बचाओ अभियान से जुड़े। खुद

8 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुगली जिले के तारकेश्वर में प्रधानमंत्री किसान योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। इससे देशभर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों से अपील की कि वो खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, साथ ही आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुलामी की मानसिकता को लेकर कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आत्मनिर्भरता के लिए गुलामी की मानसिकता को दूर कर अपनी विरासत के प्रति गौरवान्वित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज मैनपुरी के लोहिया पार्क में आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन एवं सौंदर्यीकरण की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैनपुरी के वन चेतना केंद्र और समान पक्षी विहार को इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को भी मजबूत कर रही है। गोरखपुर नगर निगम ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक दिन पूर्व पर राप्ती नदी के तट स्थित रामघाट पर स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाएं हाथ करें सफाई साथ थीम के अंतर्गत स्वच्छता महापर्व का आयोजन किया। अभियान का नेतृत्व महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त अजय जैन ने किया। उपस्थित जनसमूह को प्रेरित करने के लिए महापौर और वरिष्ठ अधिकारियों ने खुद हाथों में झाड़ू और फावड़ा थामकर श्रमदान किया और सुंदर एवं स्वस्थ गोरखपुर के निर्माण का संकल्प दोहराया। रामपुर में रजा लाइब्रेरी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय योगोत्सव के अंतर्गत आज स्वर साधना योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता जिला योगासन खेल संघ के सहयोग से संपन्न हुई। प्रतियोगिता में विभिन्न जनपदों के विद्यालयों एवं संस्थानों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। इनमें विभिन्न स्कूलों के लगभग 50 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने आर्टिस्टिक एवं पारंपरिक योगा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा, अनुशासन, शारीरिक दक्षता तथा योग के प्रति समर्पण का परिचय दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

के देख लिया। मुस्कुराते हुए वक्त के शफाक दामन में लिपटी खुशबुओं की सौगात लेकर दिल के दरवाजे कोई आया है, हौले हौले चुपके चुपके से। ये किसकी आवाज है? एहसास की जंजीर हिल चुकी है, हवा में अभी तक एक आहट है, एक खुशबू है। 8:05 हो चुके हैं। खूबसूरत लफ्जों की रवानी के सफर आबशार में मैं आपका हम सफर अनवारुल हसन कबूल कीजिए

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: तुमसे नजर मिली तो गजल बन गई, हर लफ्ज ने तुम्हारे नाम का असर पा लिया। दिल की तर्ज पर जब तुम्हारी सूरत सामने आई, ख्वाबों ने भी सांसें थोड़ी सी तेज कर ली। तेरी अदाओं में बस गया एक बहाना इश्क है, हर सांस में घुल गया तुम्हारी यादों का शहद, मोहब्बत के हर अल्फाज में। यही हकीकत है या महज ख्याल, कभी कभी ये भी लगता है, लेकिन तुम्हारी आवाज जब कानों में घुलती है, मायूस दिल भी मुस्कुरा उठता है। रूह की तह में एक मंजिल है, एक आरजू जागती है, और इस वक्त अगर ठहर कर हम देखते हैं तो तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी नजर ने दी है ये स्याही सी रोशनी, जिसमें मैं लिखता हूं तो लिखता चला जाता हूं। लगता है जैसे एक जिंदगी का मकसद यही है, और अगर ये मुलाकात एक वक्त का फसाना बन जाए तो हर वक्त को मैं पसंद करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी याद है वहां। तुमसे नजर मिली तो गजल बन गई, और गजल ने तन्हाइयों को दावत दी, तो आओ क्यों ना खो जाए उस

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो।

बहुत सारी चीजें वक्त के साथ खत्म होती जाती हैं, सिर्फ जानतारे ही नहीं आपकी पलकें भी। वो एहसास नहीं पा पाती, वो सुकून नहीं पा पाती हैं, जागती रहती हैं ना रात भर। किसी की याद में जागते रहना परेशान भी तो करता है। जब निगाहों में उन रातों के तारे बिखर जाते हैं तो हयात की सुबह भी बदनाम लगने लगती हैं। कितनी प्यारी थी तुम्हारी आंखें, तन्हा गुफ्तगू करती थी, लेकिन आंखें भी कीमत चुकाती हैं हर पल की बेकरारी की, अधूरे ख्वाबों की, वो सूली सी शाम जो अपने निशान छोड़ जाती है। हुस्न याद ने दिल को आबाद रखा मगर आंखों की चमक ने धीरे धीरे काफी कुछ धुंधला कर दिया। कितना भी रोशन कर ले दिल के आलम को, आंखों की वो पलके कुछ कमजोर रहती हैं, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, कुछ रातें बेकरार करती हैं। और यादों का करार अगर इतना महंगा है तो क्या वो करार निभाना चाहिए? तो आंखों की भी हिफाजत कीजिए। बहुत खूबसूरत है तुम्हारी आंखें, इन्हें रात भर जागकर किसी की याद में इतना बेकरार, इतना बेबस मत करो। रात के 8:29 और 35 सेकंड हो चुके हैं। आप शार सुन रहे हैं, आप 100.7 FM रेनबो पर अनवारुल हसन के साथ।

रवा है छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पर, रवा है छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पर, नदी के सांस पे मल्लाह गीत गाता है। तुम्हारा जिस्म हर एक लहर के झकोलों से मेरी खुली हुई बाहों में झूल जाता है।

8:40 हो चुके हैं, 39 सेकंड भी बल्कि 40 सेकंड हो गए हैं और अब इजाज़त लेने का वक्त आ चला है आबशार से, क्योंकि हम थोड़ी देर में आपको समाचार संध्या के लिए दिल्ली ले चलेंगे और जब 9 बजे लौटेंगे तो एक खूबसूरत सी महफिल सजने वाली है, जहाँ जहाँ पर आपको भी मौका मिलेगा कि आप भी हमें मेल करें और आपके जो संदेश हो हम उनको शामिल करें। रेनबो कैफे में हम आपसे मुखातिब होंगे और रात 10 बजे जब हम लौटेंगे फिर तो दूर तक और देर तक रजनीगंधा की खुशबू महकेगी। तो फिलहाल इजाज़त लूँगा, एक शेर बढ़िया सा मेरे सामने था तो वो आप तक पहुँचा देते हैं कि इससे पहले कि बेवफा हो जाएं क्यों ना ए दोस्त हम जुदा हो जाएं, तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाएं। तो इजाज़त दीजिए अनवारुल हसन को, फिर लौटते हैं बहुत जल्द। शब्बा खैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले

0: 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार के परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
2: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध।

और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी बच चुका है 9 और खत्म हो चुका है आपका इंतजार और आ चुका है आपका यार. जी मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन फिर से मौजूद हूँ आपके साथ और बस आपकी जो भागीदारी है वो शाम शुरू हो चुकी है और प्रोग्राम आप अच्छे से जानते हैं कि कौन सा आप तक पहुंचने वाला है आज. जी रेनबो कैफ़े का आज नंबर है और इसीलिए शायद आप तो ज़्यादा उतावले हैं, बेकरार हैं और इसीलिए आपके मेल भी हम तक पहुंचने के लिए बेकरार हैं. बहुत सारे आ चुके हैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही और इसीलिए मुझे लगता है कि हम प्रोग्राम शुरू कर दें, बस आपके मेल भी पढ़ना शुरू कर दें उसमें. और सबसे पहला मेल क्योंकि आपने भेजा है 16 मिनट पहले ही आपने भेज दिया था हमको. जी भैया मोनू सेठ जी ने, मोनू सेठ खालिसपुर ऊंच गांव मीठी मीठी अमेठी से ये मीठा मीठा बहुत अच्छा लगा और मीठे मीठे से थोड़ा सा जो है एनर्जी भी आती है और यहाँ जब आप बहुत देर तक बैठे रहिए ना तो एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन होने लगता है, तो उसे हम मेंटेन करने के लिए कुछ मीठा पढ़ लेते हैं और ये मीठा पढ़ना आपके मेल के साथ हो जाता है. अन्नू भैया जी नमस्ते, कैसन हैं? उम्मीद है कल से भी अच्छे होंगे आप. वैसे गर्मी पड़ रही है, पानी का बॉटल साथ ज़रूर रखिएगा. मैं रखा हुआ है ये पीछे, ये लो देखो ये रखा, आई आवाज़? हाँ इसीलिए हमने रख के दिखा दिया. ये ना सब ये हम ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, बहुत सी बातें झूठ भी बोलते हैं और लिख रहे हैं कि विजय भैया के साथ कभी माटी के सुगंध प्रोग्राम में ज़रूर आना, जैसे हिट पे हिट एफएम स्टाइल में आते थे. आप पुराने हैं, आप सबको जानते हैं जी. अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर बिल्कुल शामिल हो गए. हमें मौका मिल जाए तो हम तो जाएँ ना यहाँ से आप क्या बात करते हैं, यहीं बैठे रहे, यहीं से बस सब काम होता रहे. चलिए शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए. सुल्तान रजा साहब का मेल है दूसरा मेल. इस सफर के हम सफर प्यार प्यारे आरजे हम सफर प्यार ऐसे. अब देखिए कुछ कुछ कुछ अच्छा प्यारे आपने लिखना चाहा है लेकिन प्यार ऐसे हो गया तो हम उसको सही कर दे रहे हैं. प्यारे आरजेस को सुल्तान रजा की जानिब से कीजिए स्वीकार प्यार भरा नमस्कार. बिल्कुल आपको भी. और कैसे हैं आप? कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से आपने ये मेल किया है और साथ में वही सारे नाम जो आप रोज़ लिखते हैं, इकबाल रजा, जीशान रजा, अफजल रजा, मोनिस रजा, सादिक रजा और बहेंद्र दीपन जी का भी आपने आप इसमें नाम लिखा है आज. और लिखते हैं कि हम वो नहीं जो मतलब से याद करते हैं, हम तो वो हैं जो रिश्ते से प्यार करते हैं. आपका पैगाम आए या ना आए लेकिन 100.7 एफएम रेनबो को रोज़ दिल से याद करते हैं. वाह क्या बात है. और हमेशा की तरह आपने एक शेर शायरी के साथ. अच्छा मैं नीचे घुमा के देख रहा था आज चाय नहीं भेजी, कल इन्होंने चाय भेजी थी खूब अच्छी सी, हम सोच रहे थे कि इनकी चाय आई होगी. चलिए कोई बात नहीं, वो कोई ना कोई हमको भेज देगा. अब आप दोबारा परेशान मत होइएगा, चाय न चढ़ाइएगा आप, है ना. किसी ने चढ़ाई होगी उसकी बन रही होगी तो उसकी गर्म गर्म आ जाएगी चाय हमारे पास. लिखते हैं कि दोस्ती हेडिंग डाली हुई साथ में. लिखते हैं कि दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है, दोस्त ना हो तो महफिल भी शमशान है. सारा खेल दोस्ती का है वरना जनाजा और बारात एक समान है. उफ़ थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना. अभी हम रात में करते हैं ऐसी बातें 11 बजे के बाद, तो अगर ऐसी बातें सुनना हो तो देर तक रहिएगा फिर है. अगला मेले कार्यक्रम पॉप टाइम अनवारुल भाई जी के साथ और मैं समझ गया ये विजयपाल यादव जी ने ललहुआ लखीमपुर खीरी से हमें मेल किया है. लिखते हैं कि दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होगा, यादों में आपके सिवा कोई पास कैसे होगा. हिचकियां कहती हैं आप याद करते हो पर बोलोगे नहीं तो हमें एहसास कैसे होगा. वही वाह क्या बात है. लिखते हैं कि आज पुनः आने के लिए भाई बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद. आबशार की गज़लें बहुत ही बढ़िया लगी, आज एकदम नई नई गज़लें सुनवाई. नई नई

कुछ नहीं कहेंगे इसमें, बहुत अच्छी लगी आप पॉप टाइम सुन रहे हैं। हाँ आज पॉप टाइम नहीं, आज आज रेनबो कैफ़े है। देखिए मंगलवार और शनिवार को रेनबो कैफ़े है, जिसमें आप भोजपुरी तड़का भी आप लग जाएगा और बहुत सारे गाने भड़कते हुए भी तड़कते हुए भी सब आप तक पहुंचते रहेंगे। चलिए जल्दी से हम अगला मेल पढ़ देते हैं ताकि सब लोगों को अब शामिल कर पाएँ जिन्होंने हमें मेल लिखे हैं। रेनबो कैफ़े पेश करने वाले को हमारा आदाब। आपका ये कार्यक्रम मैं रोज़ सुनता हूँ, इस कार्यक्रम के गीत बहुत अच्छे लगते हैं और हम जब भी पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़ते हैं क्योंकि आप वहाँ से पेस्ट कर देते हैं कॉपी करने के बाद। यहाँ पर ग्राम पोस्ट हरहरपुर मटकली ज़िला बरेली से ये हैं शाहरूर नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोहिन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ तो नए तरीके से मेल ड्राफ्ट करके रख लीजिए आज भाई हैं तो कल कुछ अलग स्टाइल में लिखिएगा, दरअसल स्टाइल में रहने का नहीं सुनाया क्या गाना आपने। चलिए रामराज जी का भी मेल आया है हमारे पास, श्री गणेशाय नमो। पॉप टाइम नहीं है आज रेनबो कैफे। चलो हम इस चीज़ को वही कर दें, हम अब दोहराएंगे नहीं नहीं तो ज़िला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, बंडी यादव, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, सबसे पहले हमारी तरफ से अनवारुल हसन जी को प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुँचे। आपका कार्यक्रम सुपर हिट है, गाने बहुत ही अच्छे लगते हैं और एक फरमाइश भेजिए। देखिए फरमाइश प्रोग्राम है नहीं है ना, लेकिन हो सकता है कि हमने यही गाना लगा के रखा हो आगे, तो बने रहिए हमारे साथ ना। और बस एक मेल और उसके बाद बाकी के मेल इस गाने के बाद पढ़ेंगे। हेलो सर नमस्कार, मैं विकास गांव सलीद तहसील सफीपुर ज़िला उन्नाव से आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ। कार्यक्रम बहुत ही लाजवाब और झक्कास चल रहा है, आपकी प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब रहती है, ये तो है। चलिए ये बुखार वाला गाना आप तक पहुँचा दें।

जी ये पहला और आखिरी प्यार बन जाए, ये जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि लड़की जो गा रही है ईमानदार है, मतलब ठीक है, समझ गए आप ना कि मतलब ज़्यादा नहीं चाहिए, बस एक है और आखिरी हो वही, और ये अच्छी बात भी है, है ना। 9:10 और 30 सेकंड हो चुके हैं, मैं अनवारुल आपके साथ हूँ और आप रेनबो कैफे सुन रहे हैं इस वक्त हमारे साथ, आंचल सेठ खालिसपुर से और साथ में आंचल के अंकित सेठ भी हैं रायबरेली से, आपने हमें ये लिखा है। भैया जी नमस्ते, कैसे हो आप? रेनबो कैफे में आपका स्वागत है। सभी को 9 बजे का ज़्यादा इंतज़ार रहता है क्योंकि दिन भर की थकान को दूर करने वाला प्रोग्राम आता है। चलिए अच्छी बात है। बाबू अंसारी आपका मेल भी आ गया और फिर वही, अरे भैया एक डांस करते हुए इन्होंने लड़का भेजा है, वो जो नीचे डांस कर रहा है, पूरी पूरी टीम है इनकी यहाँ पर और हम ही अकेले देख पा रहे हैं। क्या लिखा है इन्होंने, अस्सलाम वालेकुम माय डियर अनवारुल हसन सर, प्रोग्राम आज तो बड़ा ही लाजवाब लग रहा है और पीछे बैकग्राउंड में थीम म्यूजिक ने आज बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा चुना है। अरे कल भी हम यही बजा रहे थे भाई, ऐसा नहीं, हम कल भी यही बजाया था, ये हम इसको छुपा के रखे हैं अपने पास, यही बजाते हैं। और क्या लिख रहे हैं आप आगे, आप लिख रहे हैं कि आपने और कुछ मेरे पीछे जो दोस्त हैं उनका भी नाम, अच्छा मेरे जो रेडियो दोस्त हैं उनका भी नाम है शामिल कर लीजिएगा, कुलदीप गुप्ता, महेंद्र दीपन, फैज़ रामपुर कटरा से और गौस मोहम्मद अंसारी, आपने अपने इन मित्रों के नाम लिखे और हमने शामिल कर लिया है। कृष्णकांत सिंह जी आपका भी मेल आ गया, वो कितने रेनबो बना दिए हैं, सूरज भी निकाल दिया है रात में इन्होंने, वो संगीत की सुर लहरियां भी छेड़ दी हैं, ऐसे इमोजी आपने भेजे हैं और वही आपने बोल्ड और मतलब अपनी स्टाइल से जो आपने लेटर लिखा है। डियर आरजे अनवारुल हसन सर जी नमस्कार, आज पुनः आपका फिर से जोरदार स्वागत है। रेनबो कैफे कार्यक्रम जैसे शुरू होता है तो ऐसा लगता है जैसे सिंदूरी शाम के समय किसी म्यूजिकल कैफे में बैठे हों। आप जब अपने शेर व शायरी से इस प्रोग्राम में रोचकता लाते हैं तो बेहद पसंद आता है और एक घंटा कैसे निकल जाता है इस मस्ती भरे प्रोग्राम को सुनकर पता ही नहीं चलता। तो आपसे धन्यवाद दिया, धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ शामिल हैं। आज भी कृष्णकांत सिंह जी ने कैसरगंज बहराइच से ये मेल हमें किया है, आपका मेल आ चुका है जी। एक मेल और है, गीता केवल लिखा हुआ है और साहिब जी को नमस्ते, राम राम, प्रोग्राम तो एकदम झमाझम हुई। अच्छा एकदम झमाझम, हाँ बिल्कुल, आज लखनऊ में कई जगह पर आज बारिश भी हुई थी, हो सकता है प्री मानसून शावर हो या यूँ ही हो, बल्कि बता रहे हैं कि पूरे लखनऊ में नहीं बरसा, हम यहाँ पे जिस एरिया में अब बैठे हैं आके यहाँ वाले लोग बता रहे हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, हमारे घर में तो भी बरसा था पानी, सिर्फ घर में नहीं मोहल्ले में भी, वरना लोग मानते नहीं। सोनू परवाना जी, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन दोस्त, हम आप और रेनबो। सोनू परवाना खालिसपुर ऊंचगांव शुकुल मोल अमेठी से हमें लिखते हैं। और अगला विनीत कुमार जी का मेल, विनीत कुमार ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर, पॉप टाइम हम कहते नहीं बताएंगे कौन सा प्रोग्राम है, रेनबो कैफे है भाई आज, रेन हमें तो याद हो गया है, पहले हम भी कन्फ्यूज़ हो जाते थे। तो चलिए, आपने गुड इवनिंग हमें कहा है, शुभ रात्रि भी बोला है, सादर प्रणाम, राम राम, आपकी बोली, आपका सुंदर सुपर हिट पिछला प्रोग्राम, सुपर, अच्छा आपने पिछला प्रोग्राम भी सुपर हिट किया बता रहे हैं, अरे वाह ग्रेडिंग मिल गई हमको, धन्यवाद उसके लिए आपका। और कुछ आपके दोस्त हैं, आप हम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनके भी नाम ले लें। आज़ाद सिमरी से ओमकार, सीतापुर से सुरभि, सीतापुर से शम्मा परवीन अंसारी, सीतापुर से सीमा रावत, राजाजीपुरम लखनऊ से संतोष मौर्य, हरदोई से वीरपाल पट्टी, अतरौली से ममता, हरदोई से संजय अतरौली, संडीला से और रिंकी पिंकी रायबरेली से, चलिए सबके नाम लिखे हमने ले लिए आपने कहा तो। मोहम्मद आसिफ साहब आपका मेल पढ़ने के बाद हम गाना बजाएंगे। मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहा हूँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। अनवारुल सर कल रजनीगंधा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और आज आबशार भी बहुत अच्छा लगा सर को, बताओ अच्छा कैसे हो आप पूछ रहे हैं, हम तो वैसे ही हैं जैसे कल थे और ऐसे ही बहुत दिन पहले भी थे, तो जैसे पहले थे वैसे अभी भी है। नमस्कार सर, मैं शिवम शुक्ला ग्राम कटार से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत मज़ा आ रहा है। ये कुमकुम शुक्ला जी ने हमें

की आईडी से मेल है और शिवम शुक्ला ने हमें मेल किया है। गाना बजा देते हैं बढ़िया सा एक, कौन सा बजाएं कौन सा बजाएं कौन सा बजाएं, ये वाला बजाएंगे। देखो एकदम से हमने आंखें बंद करके उंगली रखी, इसमें पड़ गई उंगलियां भाई, भोजपुरी सॉन्ग पे।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जी और यहाँ प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त रेनबो कैफे में, बजकर 18 मिनट हो चुके हैं 41 सेकंड भी। मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ हूँ और हमारे साथ आपके ढेर सारे मेल हैं, बिल्कुल बारिश की तरह से हैं, जैसे बारिश हो रही हो। अनवारुल सर, सर जी नमस्कार, ये लिखने वाले हैं कमल पांडे जी। मैं कमल शंकर पांडे ग्राम मोहलिया कला चौराहा पोस्ट नसीरपुर जिला सीतापुर से मेल कर रहा हूँ। कार्यक्रम रेनबो कैफे के साथ जुड़ा हुआ हूँ सर जी। इस समय बहुत गर्मी पड़ रही है और हम सब गर्मी से बहुत परेशान हैं। मैं रेडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस गर्मी में अपने साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों का विशेष ध्यान रखें, उनके दाने पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। और हमें कार्यक्रम बहुत पसंद है, कार्यक्रम में गीत बहुत अच्छे बज रहे हैं जो पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम में मेरा मेल शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने संदेश दिया वो भी बहुत ज़रूरी संदेश है और हमें खुद इतना अंदर से ये हमें ख्याल रहना चाहिए कि हमारी क्या जिम्मेदारी समाज के प्रति है और ख़ास तौर से उनके प्रति भी जो बेजुबान है। गुड इवनिंग डियर सर जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक फरमाइश कर दी है सोनू भार्गव जी आपने, और बुंदेली सॉन्ग करें तो भाई क्यों नहीं बजेगा, भोजपुरी बजा है तो बुंदेली भी बजेगा।

है ना, तो परेशान मत होइए आप। ग्राम चकुमरी झरेखापुर जिला सीतापुर से आपने मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। और शादाब खान साहब, आपका मेल कहाँ से आया है? विलेज ये बेलई संडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई से आपने मेल किया है। लिखते हैं, सलाम अलैकुम सर, और कैसे हो आप? रेनबो कैफे का हमको बेसब्री से इंतज़ार रहता है, तो चलिए आपका जो सब्र है वो ख़त्म हुआ और आपको सब्र का फल भी मिल गया। कहते हैं कि मीठा होता है ये फल। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी जल्दी आया करो। वकील साहब कह, अरे भैया आप कल तो आए थे, हम अब इससे जल्दी क्या आ जाएं कि रात में क्या 18 घंटे के अलावा बढ़ा लें क्या टाइम? वैसे मन था हमारा कि कल हम जाएं ना, और हम गए नहीं थे, हम यहीं सो गए थे रात में, और हमारी नींद खुली थोड़ी सी देर में। हम सो इसलिए थे कि सुबह जल्दी उठेंगे तो हम यहीं गुड मॉर्निंग भी कर लेंगे, तो आपकी वो शिकायत ही पूरी हो जाएगी। लेकिन हम सोते रहे, किसी ने उठाया नहीं हम किनारे, ये जो सुबह लोग करने आए थे ना तो वो हमको देख नहीं पाए, ये बड़ा सा स्पीकर यहाँ रखा है, इसके आड़ में हम अपना चादर लपेटे सो रहे थे। तो वकील साहब आगे क्या लिखते हैं कि आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, रेनबो मेल काफ़ी, रेनबो मेल नहीं है, रेनबो कैफ़े काफ़ी अच्छा लग रहा है, गाने अच्छे बज रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, आप भी आकर खा लीजिए। ओफ ओ, दुखती रग पे हाथ रख दिया इन्होंने, खाने का सच में टाइम है ये, हमें नहीं मिलेगा लेकिन अभी ठीक है। तो वकील अहमद साहब ने मंसूरी कटका, वकील अहमद मंसूरी कटका हतोरी ज़िला सीतापुर से आपने मेल किया है, साथ में आपने दो नाम और लिखे हैं, साजिया अंसारी और शमा परवीन का। तो चलिए शुक्रिया लिखने के लिए, हमने आपका मेल पढ़ दिया। राजकमल यादव जी आपको भी पढ़ देते हैं। राजकमल यादव जी ने ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से लिखा है, और वेलकम बैक सर जी, प्रणाम, कैसे? प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। भुट्टा खाने को बुलाए थे, आप आए नहीं, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। देखिए कल भुट्टे पे आपने कल हमें एक मेल किया था जिसमें भुट्टे के बाद आपने कुछ लिखा ही नहीं था, आप अपना पढ़ लीजिएगा। तो भुट्टा के बाद हम समझ तो गए कि भुट्टा भून रहे हैं आप शायद, तो इसीलिए जल्दीबाजी में पूरा मेल नहीं लिखा। भुट्टा जलने लगा होगा तो आप दौड़ के भाग गए होंगे, मेल अधूरा छोड़ के आपने वहाँ क्लिक कर दिया, मेल हम तक पहुँच गया और भुट्टा वहाँ जल गया और आप हमारा इंतजार करते रह गए। चलिए किसी दिन आएंगे तो हम, अब आपने पता भी लिख दिया है तो हम पहुँच जाएंगे, खा लेंगे भुट्टा। भुट्टा बहुत अच्छा लगता है अगर ताज़ा ताज़ा हो, है ना, तो अगर खेत में आप उखाड़ के उसी वक्त निकाले वहाँ से, और हाँ हाँ, फिर उसमें नींबू वीबू लगा के थोड़ा सा नमक मिर्चा और थोड़ी सी चटनी वटनी लगा दे तो उफो मज़ा आ जाएगा। साथ में लिखते हैं कि हमारी बेटी हिमांशी यादव और मेरी वाइफ संगीता यादव भी आपको नमस्ते बोलें। बिल्कुल मेरी तरफ से नमस्ते और बच्ची को बहुत बहुत प्यार। साथ में अगला मेल भी पढ़ देते हैं और फिर गाना आप तक पहुँचाएँगे। दो मेल है बल्कि हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, आप ही का मेल है, वो आपने दोबारा लिख दिया है फिर से, आपके दो मेल आ गए हैं भैया। एक मेल और है, चलिए हम पढ़ देते हैं। अयोध्या प्रसाद जी ने हमें लालपुर सीतापुर से ये संदेश भेजा है और लिख रहे हैं कि आज भीड़ बहुत है, प्रोग्राम बहुत लोग सुन रहे हैं, हैं, और राधे लाल जी का नाम इन्होंने ख़ास तौर से कहा है कि ले लीजिएगा, क्योंकि राधे लाल जी वो व्यक्ति हैं कि जैसा ही कह रहे हैं कि आप गाना बजाते हैं तो वो नाचने लगते हैं। भाई वाह, क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो जगमोहन लाल जी का भी आपने नाम लिखा है कि वो भी बैठे सुन रहे हैं और बाकी और भी भीड़ इकट्ठा है, तो सबके लिए हम सुना देते हैं। तो आप भी थोड़ा सा वॉल्यूम तेज़ कर लीजिए और राधे लाल जी नाच पड़ें, इसलिए हम गाना बजाएंगे थोड़ा सा जोर से।

जी, और उसके बाद बिल्कुल शांति हो गई, मतलब सब नाचते नाचते लगता थक गए। 9:26 और 27 सेकेंड हो गए, और अगला गाना भी हम जोर से ही बजाएंगे। और जो मेल है अगला, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इंद्रपाल मिश्र जी ने हमें लिखा है, ग्राम अमृता मोहाली सीतापुर से, आशा, अवनीश, विनीश, अक्षत और गरिमा, ये भी ना आपने लिखे। और बड़ा मोटा मोटा बता ना क्या लिखा है इन्होंने। इन्होंने लिखा कि भगवान कसम एक बात आपसे सत्य सत्य कहता हूँ, प्रोग्राम आपका हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है। भाई वाह क्या बात है, ये तो बिल्कुल दिल को छू दिया आपने, तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए कि आपका प्रोग्राम अच्छा लग पा रहा है, मैं ठीक कर पा रहा हूँ। और आपके जो मेल हैं वो बारिश की तरह से बरस रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि आपको शायद ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तालिब अंसारी साहब राजा कटरा बाराबंकी से लिखते हैं, अच्छा पिछला प्रोग्राम आबशार सुन के ऐसा लगता है जैसे कभी कहीं खो से गए हों और अलग दुनिया में चले जाते हैं, है ना, ऐसा क्यों महसूस होता है सर जी? और फिर एकदम से धमाल मचाने वाला प्रोग्राम आप एकदम से लेकर आ जाते हैं, फुल एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं। शायद इसीलिए एफएम रेनबो कहा जाता है, क्योंकि इसमें हर रंग के प्रोग्राम हैं। बिल्कुल, आपने खुद सवाल किया और खुद जवाब दे दिया, और थैंक्स आकाशवाणी एफएम रेनबो, आपने लिखा है, ऑल आरजे एंड ऑल टीम मेंबर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लिखने के लिए तालिब साहब आपने। और ये सच भी है, और जब हम इमोशनल हो जाते हैं, कुछ मन से बोलने लगते हैं, तो आवाज़ वो दिल की होती है, वो दिल तक करके पहुंच जाती है, तो मुझे लगता है कि हम कामयाब हो रहे हैं, अपनी बात आपसे सही तरीके से कह पा रहे हैं। और ऐसा ही रात में भी होता है, जब आप रहेंगे मेरे साथ तो फिर आपको लगेगा कि चीज़ें बदल रही हैं, थोड़ा सा रोमांटिक होंगे, और उसका जो परिणाम होता है वो रात 11 बजे के बाद मैं सामने पेश करता हूँ कि कैसे चुपके चुपके फिर आंसू बहाने पड़ते हैं। 9:28 हो गए हैं, और अशोक कुमार जी का, अशोक राज जी का भी मेल आ चुका है, गुड इवनिंग आपने लिखा है, और रायपुर ओडारा मितौली लखीमपुर खीरी से आपने लिखा है हमें कि सॉन्ग अच्छे लग रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कम शब्दों में अपनी बात कह दी। राज प्रताप एंड बीडी, अच्छा बड़ा गाँव, अच्छा एड्रेस है वो, एंड नहीं है, राज प्रताप एड्रेस है इनका, बड़ा गांव मोहाली सीतापुर। अनवारुल सर नमस्ते, आपका कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम आपको बचपन से सुनते आ रहे हैं, हाँ हम 20 साल से करते आ रहे हैं। एक निवेदन है, सुगंध मार्टी के कार्यक्रम शाम को कर दिया जाए, आप और ओम भैया और अंजू शुक्ला जी एक साथ सुगंध मार्टी में आ जाइए तो तहलका मच जाएगा। हम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हाँ ऐसा ऐसा करवा दीजिए। भाई सही जगह पर आप अपनी बात कहिए, हमारे अधिकार

खिलाड़ियों तक अपनी बात पहुंचाइए। आप जानते हैं किस प्रोग्राम में कहना है, तो मुझे भी लगता है कि कुछ कुछ ख़ास प्रोग्राम हैं उनका वक्त अगर शाम का हो तो शहज़ादा बेहतर है, क्योंकि थोड़ा सा आराम से वक्त निकाल के लोग ज़्यादा बेहतर सुन पाते हैं उसको। और जहाँ तक मेरे आने की बात है, हम तो बिल्कुल तैयार हैं, हमारा तो बिल्कुल एक झोला तैयार रहता है कि बस उठाए और चल दिए, तो बस हम कभी भी आ जाएंगे। जैसे ही आप याद करेंगे, मोहम्मद साबिर अंसारी आपका भी मेल पाल देते हैं, प्रोग्राम मस्त लग रहा है। कानपुर में भी आपके जलवे हैं, आया है, क्या बात है। मेरे यहाँ सब लोग कहते रहते हैं 8:30 बजे से साबिर भैया एफएम लगाओ, 8:30 बजे से नहीं, अच्छा 8:30 बजे से कहना शुरू कर देते हैं, ये आप कह रहे हैं। मेरे भाई और दोस्तों के नाम ले लीजिएगा, अब बिल्कुल ले लेंगे, आप लिखिए तो। हाँ लिखा है नीचे भाई, देखिए तो, आसिफ अंसारी हैदराबाद से, तालिब अंसारी राजा कटरा से, इस्माइल अंसारी कानपुर से, अली अंसारी कानपुर से, अब हम भी नाम लिख देते हैं, अनवारुल हसन लखनऊ से, क्योंकि हम भी सुन रहे हैं, हम बजाते खाली नहीं है, सुनते भी हैं, बहुत बड़े बड़े स्पीकर रखते हैं यहाँ पे, है ना, बिल्कुल सर दर्द हो जाता है उसके बाद, रात में पहुँचते हैं सर में तो दर्द, तेल वेल सर में लगाते हैं तब नींद आती है, चमेली का तेल लगाओ तो बहुत अच्छी नींद आती है, खुशबू बहुत महकती है। सलाम आदाब कबूल करें, बसंत कुमार सिन्हा जी ने ये हमको मेल किया है और लिख दिया है दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से आप हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रेखा बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, नन्हे मुन्ने अन्विका, तनुषी गुप्ता, इतने लोग भी इसमें शामिल है, चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। और हाँ, जो गाना आपने लिखा है वो पुराना गाना है, और उसका इस तरह के गाने वैसे भी फरमाइशी नहीं है, और अगर आप रात में 10 बजे से 12 बजे तक हमारे साथ रहेंगे तो आपको इस तरीके के गाने सुनने को ज़रूर मिलेंगे। किसका मेल रह गया भैया, किसी का रह ना जाए। विकास यादव जी का मेल हमारे पास आया है। नमस्कार, हम विकास यादव आपका प्रोग्राम सुल्तानपुर से सुन रहे हैं, हमें भोजपुरी गाना सुनने में मज़ा आता है, एफएम रेनबो पर ये अनएक्सपेक्टेड लगता है। क्यों लगता है, आप रोज नहीं सुनते हैं क्या? अरे आप रेनबो कैफे जब सुनते हैं तो आपको सब कुछ सुनाई पड़ता है, और आपको हम सुना चुके एक, आगे और सुनाएंगे, ये ना सोचिए, हाँ आप दिल छोटा ना कीजिए। विनीत कुमार का मेल है अगला, और क्या लिखा है इन्होंने, और आप लिखते हैं, अच्छा हमने तो आपका मेल शामिल कर लिया था, आपने लिख दिया कि आप मेरा मेल शामिल किया जाए, आप शायद लगता बाथरूम जो है चले गए थे उस वक्त तो सुन नहीं पाए, तो ध्यान रखा कीजिए, आपको हृदय से धन्यवाद, बारंबार प्रणाम, आपकी हंसी मुझे बहुत अच्छी लगती है, सुपर हिट लाजवाब, हंसते रहें आप हजारों के बीच में सर जी, जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच में, वाह वाह क्या बात है, शेर लिख दिया। और गिरते रहें ईमेल, बरसाते रहें ईमेल, एफएम आकाशवाणी रेनबो पर, भाई वाह क्या बात है, दुआ भी कर दी आपने रेनबो के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बसंत कुमार सिन्हा जी, हमने अभी भी आपका मेल पढ़ा और फिर से एक मेल आ गया। एमा नवाब, आपका मेल पढ़ने के बाद हम गाना पहुंचाएंगे। आदाब अनवारू सर, कैसे हैं? अगर आप कल ना बताते आज हम आ रहे हैं तो हम बोलते हैं सर आज तो चमत्कार हो गया, कल आपने जो गाना बजाया था, अफसाना लिख रही हूँ, ये गाना बहुत अच्छा था, मैंने पूरा रजनीगंधा सुना। अच्छा अच्छा सर, खाना बना रही हूँ, आपको फिर लगा होगा हम पूछने वाले हैं। अच्छा देखिए, इसी को कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं धृष्टता, यानी आप बता रही हैं, पूछ नहीं रही हैं, खाना बना कर आए हैं क्या सर? इन्होंने मुझसे पूछा है कि खाना बना कर आए हैं क्या सर, आपकी मजबूरी समझती हूँ, वापस घर भी जाना है आपको। हाँ बिल्कुल जाना है, घर तो जाएंगे, कल से गए नहीं हैं, यहीं सोए थे, बता चुके हैं आपको, तो आज घर जाएंगे तो खाना कहाँ बना के आए होंगे, हमने पूड़ी और सब्जी खरीद ली है, वो हमारे झोले में रखी है, वही खाएंगे जाके हम, ठीक है। तो चलिए हम गाना बजाने जा रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, आप मजबूरी भी समझती हैं और ये अच्छी बात है। और गाना अभी मैंने कहा था ना कि बस मैं ज़रूर बुंदेली भी कोशिश करता हूँ बच जाए, बुंदेलखंड से ही मेरा बड़ा ख़ास रिश्ता है, रिश्ते तो बहुत जगह से हैं, हम जहाँ जाते हैं वहीं बना लेते हैं वैसे, तो गाना सुनिए आप।

0: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें।
1: वो भूली दास्तां फिर याद आ गई।
0: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

चलिए ये अच्छी बात है कि उन्होंने बता दिया कि इन्होंने कैसे डांस किया और आप लोग कैसे कर रहे हैं या बता सकते हैं। 9:40 बल्कि 41 मिनट हो गए हैं और बस ये ज़रूर कहेंगे कि जब 5 मिनट बच जाएं इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने में तो बस तब मेल जो भी आप भेज रहे हैं उसका सिलसिला रोक दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि उसके बाद अगर मेल आप करेंगे और रह जाएंगे तो फिर आप शिकायत करेंगे। और एक साहब तो बल्कि मुझसे कह रहे थे कि आप बड़े ईगो वाले व्यक्ति हैं, आप तो मेल तक हमारा नहीं शामिल किया। उनका मेल फिर मुझे रजनीगंधा में मिला, यानी रजनीगंधा तक वो मुझे बार बार मेल करते रहे। तो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल रखिएगा वक्त का, आप लिखते हैं तो हम ज़रूर शामिल करते हैं। अगला जो मेल है जयराम खोरवाल, और आपने हमें होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से आपने मेल किया, दिल्ली में आप हमें सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है, दिल वाले हैं आप इसका मतलब है। और सभी प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम में जो भी सॉन्ग है वो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया जय जी। महेंद्र दीपन जी का मेल आ चुका है, लगता है ये पोस्टर वोस्टर बना रहे थे क्योंकि अक्सर ये पोस्टर बना के भेजते हैं, बड़ा खूबसूरत आज भी आपने पोस्टर बना दिया है। FM रेनबो लखनऊ की धड़कन धड़कन लखनऊ की पर आपकी मधुर आवाज़ और शानदार अंदाज में कार्यक्रम सुनना हमेशा एक अलग ही खुशी देता है, आपकी प्रस्तुति में अपनापन मिठास और श्रोताओं के लिए खास जुड़ाव महसूस होता है, और ऐसे ही अपनी मुस्कान भरी आवाज़ से श्रोताओं के दिल जोलते हैं। इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनते हैं आप महन जी, बिल्कुल मैं यही बात कहता हूँ कि हमारी मुस्कान भी रेडियो पर दिखाई पड़ती है, तो रेडियो सिर्फ सुनने का माध्यम नहीं, ब्लाइंड मीडियम ज़रूर है लेकिन अगर मन की आंखों से आप उसे देख सकते हैं तो आप काफ़ी कुछ महसूस कर सकते हैं। महन दीपन जी ने हमें जो है ये मेल कहाँ से किया ये ज़रूर बता दें, हालांकि आप अच्छे से जानते हैं महन दीपन जी ग्राम रूड़ ज़िला नागौर राजस्थान से मेल करते हो, लगातार आप हमें सुनते हैं। लिख रहे हैं कि सर जी आज का प्रोग्राम सुनने का समय नहीं मिल पाएगा क्योंकि आज गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं, अभी गुजरात में हैं, कल सुबह गाँव के लिए निकलेंगे। अच्छा, गुजरात से आप ये मेल कर रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, आप हमें जो है अगर ऐप के माध्यम से सुनते हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से, तो आप कहीं भी हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो, आप रास्ते में सुन सकते हो। और मैं तो हमेशा ये बात पहले कहता हूँ कि आपके काम ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, प्रोग्राम को उतना महत्व मत दीजिए, हम तो आपके दिल में रहते ही हैं, तो ठीक है आपको जब बहुत ज़रूरत हो तो काम आपका ज़्यादा ज़रूरी है उस पर ध्यान दिए। गुड इवनिंग प्यारे आर जी अजीज़ अनवारुल हसन सर जी, आप कैसे आज फिर आप आए हैं प्रोग्राम में, बहुत तो बहुत धन्यवाद आपका। सर 2 दिन बैक टू बैक आए हैं, लग रहा है आप छुट्टी पर जाने वाले हैं। ओफो क्या बताएं हम, सर आप प्रोग्राम बहुत अच्छा पेश कर रहे हैं, जितनी तारीफ कर रहे हैं उतनी कम है, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर जी बहुत सुकून मिल रहा है प्रोग्राम सुन के, आपकी पेशकश बहुत उम्दा है। और आप लिख रहे हैं कि रजनीगंधा स्पेशलिस्ट सर, कल तो बहुत अच्छा लगा आपका रजनीगंधा, और हम घर पहुंचे तो हमको पता अल्ले तो हमने झूठ बोला था कि भेद खुल गया, हम कहते हम यहीं सोए थे। देखिए इसीलिए कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, जब आप झूठ बोलते हैं ना, यानी हम जब झूठ बोलते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो झूठ पकड़ा जाता है। तो अब चलिए कोई बात नहीं, घर में हम यही सुनने में लगा कि बड़े पुराने पुराने गाने बजा दिए, तो हमने बताया नहीं कि किसके लिए बजा रहे थे, है ना। तो सर अब आप किसी दिन गुड मॉर्निंग लखनऊ में ज़रूर आइएगा तो सभी शिकायतें दूर हो जाए, अरे आप बुलाइए तो सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। अजय कुमार जी ने ये फतेहनगर सीतापुर से मेल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण जी आपने लिखा है कि सर आप रात में घर क्यों नहीं जाते, रात में भूख लगती है तो क्या करते हैं, आज भी स्टूडियो के स्पीकर के बाजू में ही सोएंगे क्या। अब कहने का कुछ बचा नहीं इस मेल के जवाब में, बात हो गई इससे पहले ही। चलिए प्रवीण जी कोई बात नहीं, कभी कभी हम यहाँ रुकते भी, ऐसा नहीं है हमेशा हम झूठ नहीं बोलते हैं, कभी कभी हम रुक जाते हैं यहाँ पे, और हमने यहाँ ज़मीन भी देख ली है, पीछे यहाँ पर टावर लगा है, वहाँ पर ज़मीन काफ़ी है, तो अगर ये लोग हमको दे दें तो हम यहीं रुक जाएंगे, अपनी झोपड़ी वोपड़ी बना लेंगे छोटी सी, और इसमें आसानी यह रहेगी कि सुबह हम जल्दी आ जाया करेंगे यहाँ, और इससे पहले कि कोई और आए हम इस कुर्सी पर आगे बैठ जाएंगे तो प्रोग्राम फिर हम ही करेंगे। 9:45 हो गए हैं। रचना मिश्रा जी आपका भी मेल है, हाय सर आप मेरा मेल नहीं पढ़ते हैं, अरे इल्ज़ाम लग गया लीजिए हम पर, कोई बात नहीं आता है तो हम ज़रूर पढ़ते हैं। सर मेरा सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिए।

जी 9:49 मिनट भी हो चुके हैं और आपके मेल बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो फिर हम आपके मेल शामिल कर लेते हैं। सर, हम लखीमपुर से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप गाने बहुत अच्छे बजा रहे हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, गाने तो हम अच्छे बजा रहे हैं, हमको भी लग रहा है आज। अजय कुमार जी का मेल है, चलिए शुक्रिया इसके लिए। और अगला मेल पढ़ देते हैं, मोहम्मद माज अंसारी शाहपुर से आपने हमें मेल किया है, बाराबंकी से सुन रहे हैं। अनवारु सर कैसे हैं आप, कल आबशार और रजनीगंधा प्रोग्राम, अरे तारीफ आ रही भैया, कल की हमारी तारीफ आज आ रही है लगा। और आप हेलो एफएम में आओ और हेलो एफएम का टाइम 8 बजे रात को करो,

अच्छा भैया भैया अब ये हम कर ना पाएंगे तो हम आगे बढ़े जा रहे हैं। आपको कहाँ कहना है ये हम बता चुके हैं। एम के राज जी का मेल है, भानपुर हरोवा जिला लखीमपुर खीरी से आपने लिखा है। कार्यक्रम हर कर आपका हर कार्यक्रम बेमिसाल है और सुनते सुनते बीत गए कई साल हैं। वाह वाह क्या बात है। और आप अगर हमारी ये दो लाइन पढ़ देंगे तो हम दोगुना डांस करेंगे। कौन सी लाइनें पढ़नी है लेकिन? अच्छा वही वाली लाइन थी या नीचे है दो लाइन? अच्छा नीचे है दो लाइन। गर्मी ने कर दी अपनी हदें पार, कोई पानी के लिए झगड़े कोई कहे पंखा इधर घुमाओ यार। अच्छा चलिए देखिए हमने पढ़ लिया, अब आप डांस ज़रूर कीजिएगा बढ़िया से। और यासीन जी आपका भी मेल हमारे पास आया है और ये आपने दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से हमें ये मेल किया और बहुत सारे अपने मित्रों के भी आपने नाम लिखे हैं। गुलफ्शा सिद्दीकी आपका भी मेल हमारे पास आ चुका है और लिख रही हैं संडीला से, और आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा, आपकी मुस्कुराहट का जवाब नहीं आपकी आवाज़। अच्छा आपने तारीफ अकेले नहीं अच्छा लगता तारीफ़ करते, कोई और होना हमारे साथ तो हम उसको इशारा कर देंगे तुम पढ़ो। ऐसा करते थे हम, जब दो लोग होते तो तारीफ़ आती थी आपको बता दे तो दूसरे को इशारा कर देते कि देखो हमारी तारीफ़ आई, जब तुम पढ़ दो तुम्हारी हम पढ़ देंगे। अब ये बताइए किसी को नहीं देखी, बहुत अंदर ये बात आपको बता दी हमने, तो ठीक है आपने आप इसको सुन रही हैं आपको अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, महक अंसारी, ममता गौतम, निशा और रोशनी रावत और बबीता राव, नीलू शर्मा, आपने कहा कि सबके नाम ले लीजिएगा तो चलिए ले लिया है हमने नाम। आगे बढ़ते हैं, सावित्री देवी जी ने रेनबो कैफ़े पसंद किया है और बड़ी अच्छी बात है कि इमोजी मुस्कुराता हुआ सा भेजा और गुड लिख दिया, यानी हमें गुड मिल गया। ये बचपन में भी कभी गुड मिल जाता था तो बड़ी खुशी होती थी, है ना। तो डियर सर जी कैसे हैं आप? प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, आपकी आवाज़ बहुत स्वीट है, आपकी हंसी कि जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। हाँ ये बात है। तो कहाँ से भेजा है? भारतपुर बरगदही से आपने हमें, बरगदी पोस्ट अर्जुनपुर इटौंजा, यहीं से लखनऊ से ही आप हमें सुन रही हैं। अब जल्दी से हम मेल कर देते हैं, जो लोग हमें पहले मेल कर चुके जिनको पढ़ चुके हैं उनके मेल देखिए हम छोड़ रहे हैं। अमित बहेलिया जी चंडीगढ़ से आप सुन रहे हैं और आपको बहुत पसंद आ रहा, चलिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शीलू मौर्या जी आपका भी मेल पढ़ने के बाद, कि पीछे वाले चुप भी हो गए, वो जो बजा रहे थे हमारे पीछे सहयोग कर रहे थे चले गए क्योंकि खाना उनका ठंडा हो रहा था तो वो खाना खाने गए, अब वो नहीं बजाएंगे। तो शीलू मौर्या जी का मेल पढ़ देते हैं। शीलू मौर्या जी ने हमें फैजुल्लागंज लखनऊ से लिखा है, प्रोग्राम में गाने आपको बहुत प्यारे लग रहे हैं, भोजपुरी सॉन्ग अच्छे लगते हैं बट हम लोग भोजपुरी लैंग्वेज बोल नहीं पाते हैं। हाँ ये हमारे साथ भी होता है, किसी दिन मिलिएगा तो हम लोग मिल के सीखेंगे। और मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उससे पूछती थी हिंदी का कोई वर्ड बताती हूँ, फिर कहती कि भोजपुरी अच्छा अच्छा ऐसे सीखने की कोशिश करती थी आप, वो सीख देखिए तब भी नहीं पाई, तो आपने अपनी दोस्ती का कोई फ़ायदा वायदा उठाया नहीं। अब मेल मत कीजिएगा देखिए हैं, क्योंकि अब हम इसको वाइंड अप करने जा रहे हैं, 9:53 हो चुके हैं, एक छोटा सा गाना बजाएंगे, फिर एक विज्ञापन बजाएंगे और फिर एक गाना बजाएंगे और तब हम रजनीगंधा में फिर लौट के आएंगे। तो इजाज़त दीजिए फिर।

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, रात के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा आज महात्मा विदुर सभा कक्ष में आगामी मोहर्रम पर्व के दृष्टिगत जनपद के विभिन्न

थाना क्षेत्रों के पीस कमेटी सदस्यों, ताजिया दारों, संभ्रांत व्यक्तियों एवं गणमान्य नागरिकों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी के दौरान मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सकुशल एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ताजिया जुलूसों के निर्धारित मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत तारों, साफ सफाई, यातायात प्रबंधन एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। एनटीपीसी दादरी ग्रेटर नोएडा में बालिका सशक्तिकरण अभियान का समापन आज हो गया। ये 4 सप्ताह का आवासीय कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा, व्यक्तिगत विकास, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य जागरूकता एवं जीवन कौशलों के माध्यम से सशक्त बनाना था। इस वर्ष जीईएम 2026 में 12 सरकारी विद्यालयों से 113 छात्राओं ने भाग लिया। समापन समारोह में ए के मिश्रा, कार्यकारी निदेशक एवं परियोजना प्रमुख दादरी, तथा काशीना चंद्र मौली, कार्यकारी निदेशक सहित एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारी, छात्राएं एवं उनके अभिभावक उपस्थित रहे। समारोह के दौरान छात्राओं ने स्वागत गीत, गणेश वंदना, गुजराती लोक नृत्य, भांगड़ा नाट्य प्रस्तुति, महाभारत एवं मर्दानी नृत्य सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त वितरण के अवसर पर जनपद रायबरेली का मुख्य कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान एवं कृषि विपणन, कृषि व्यापार एवं कृषि निर्यात दिनेश प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान किसानों ने पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर जनपद हुगली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी किए जाने के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा एवं प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। मुख्य कार्यक्रम में लगभग 200 किसानों ने प्रतिभाग किया। जनपद चित्रकूट के कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि की किस्त हस्तांतरण का लाइव प्रसारण आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के 136 किसानों ने आभासी माध्यम से भाग लेकर पीएम का संबोधन सुना। इस अवसर पर अनुसूचित जाति उप योजना के तहत किसानों को धान की उन्नत किस्म बौना दुबराज का बीज प्रदर्शन स्वरूप वितरण किया गया। धान की वैज्ञानिक खेती, नर्सरी तैयारी, एसआरआई पद्धति, जल प्रबंधन व कीट रोग नियंत्रण पर तकनीकी मार्गदर्शन दिया गया। किसानों ने कार्यक्रम को लाभकारी बताते हुए प्राप्त जानकारी को खेत में अपनाने का संकल्प लिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई। जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए, पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

खुद चले आओ या बुला भेजो, खुद चले आओ या बुला भेजो, रात अकेले बसर नहीं होती, हम खुदाई में हो गए रुस्वा मगर उनको खबर नहीं होती। कभी कभी सितारों की चमक से बहुत ज्यादा रोशन हो जाता है आसमान, खुल जाते हैं आसमान के दरीचे और ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बेचैन हो जाती है रात, मोहब्बत के फरिश्ते चुपचाप देखा करते हैं ये सारा अहवाल सब कुछ, और फिर घबरा कर धरती पर उतर आती है एक और रात, जैसे

आज भी ऐसी ही एक रात न जाने क्या तलाश करने के लिए उतरी है। रजनीगंधा के आंगन में आज भी मोहब्बत के अफसाने भी होंगे, दर्द की दास्तान भी होगी, और आपके साथ रहेगा आपका दोस्त अनवारुल हसन। तो स्वागत करते हैं आप सबका, नमस्कार।

तुम आ रही हो जमाने की आंख से बचकर, तुम आ रही हो जमाने की आंख से बचकर, नजर झुकाए हुए और बदन चुराए हुए, खुद अपने कदमों की आहट से झेपती डरती, खुद अपने साए की जुम्बिश से खौफ खाए हुए।

आंखें मल मल के दिल कैसे बने न दीवाना। क्षमा करे है इशारे जब जल जल के कहो क्या करे परवाना। कोई देखे नशीली आंखें मल मल के दिल कैसे बने न दीवाना। क्षमा करे है इशारे जब जल जल के।

बस पी के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत पलकों पे ना माने।

0: जाना।
1: वो जो नजरों से तुम चलाते हो तीर वो आर पार रहता है। तुम्हारी नजरें कभी तिरछी हैं कभी सीधी हैं, और जो जो तिरछी नजरें हैं जिससे तुम देखते हो तो वो जख्म जिगर में और भी गहराई से समा जाती है। एक ऐसी निगाह जो दिल की हर हसरत को बयां करते है। तुम्हारी इस तिरछी

निगाह का तीर मुश्किल से निकलेगा, और अगर ये दिल से निकलेगा तो ये दिल भी उसके साथ निकल जाएगा। ये त्रिची जो नजर है ना, तलवार की तरह है, बिजली की तरह है। ये निगाह कहीं ठहरती नहीं है, बस फिसल जाती है। तुम्हारी इस नजर में वो गुले रुखसार है, वो गुरूर नहीं है, लेकिन एक ऐसा है कि लगता है जैसे कोई बाहर आ गई हो। कहते हैं कि पहली नजर भी आपकी उफ किस बला की थी, हम आज तक वो चोट है दिल पर लिए हुए।

वक्त हो रहा है रात के 10:22 और 16 सेकेंड। इश्क की खुशबू से गुलजार है रजनीगंधा का आंगन और खूबसूरत रात के चेहरे से आंचल सरका रहा है आपका दोस्त जी हां अनवारुल हसन। तुम्हारा प्यार भी तो आंचल में बांध रखा है, हर सांस उस खुशबू की गवाह बन गई है जो तुम्हारे होने से मिलती है। तुम्हारी आंखों में बसे बहुत सारे ख्वाब, बहुत से ख्याल, दिन रात की दुआ की तरह हर जख्म पर जैसे तुमने फूल रखती हो, बेनियाज, बेपरवाह और बिल्कुल बेहिसाब। जब तुम पास होती हो तो वक्त भी शर्मा जाता है, लफ्जों में एक मीठी सी चुभन, चुपचाप बेरहम मोहब्बत की तरह। मैंने तुम्हारे लिए अपने सारे अरमान लुटा दिए हैं और तुम्हारे आंचल की पनाह में अपनी दुनिया बसा ली है। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे लिए एक फौज की तरह है, हर गम में और हर गम से लड़ने को तैयार, हर जाए पर जीत की तलाश में। तुम्हारी जो आवाज की सादगी है इसमें कभी कभी खो जाता हूं, वो सुकून जो मुश्किल से कहीं मिलता है तुम्हारे ही पास मिलता है, और तुम्हारा प्यार मैंने इसीलिए बांध रखा है तुम्हारे उस आंचल के साथ, जैसे कोई हिजर वफा की किताब हमेशा खुली रखी हो, हर पन्ने पर तुम्हारे जुल्फों की छांव हो और हर लफ्ज पर तुम्हारी महक हो। रोज उसी बांधे हुए प्यार को मैं निहारता हूं जब भी वक्त मिलता है। ढेर सारा प्यार है यहां।

0: मुझे बसली हलचल।
1: हलचल तो मन में भी थी और हलचल ये भी कि वो आएंगे, वो आएंगे और चांदनी रात होगी, न ये बात होगी न वो बात होगी, कटी उम्र सारी इसी कश्मकश में, अगर वो मिलेंगे तो क्या बात होगी। क्योंकि जो उनकी निगाहें थी, वो पहली निगाह भी अजीब सा एक तूफान उठाकर चली गई थी। तुम्हारी उस मुस्कान में एक रहमत भी थी जो खामोश लबों में एक सन्नाटा लिए हुए थी। आज भी उसे बार बार सुनने को तरसता हूं। दिल ने बेखबर होकर दस्तक दी और फिर क्या, कदम रुक गए, सांसें थम गईं, बस एक नाम रह गया। तुम्हारी बातों में वो नजाकत, तुम्हारी बातों में वो इश्क और मेरे वजूद को एक नया मुकाम देने का एहसास जो शायद आज भी कायम है। मैंने सोचा था कि वक्त सख्त है, मगर तुम्हारी आंखों ने मुझे सिखा दिया कि जीत तो मोहब्बत की ही होती है, और अब हमेशा हर बात जैसे मैं वहीं से शुरू करता हूं, उसी ढलती हुई शाम से, उसी मुस्कुराते हुए तुम्हारे अंदाज से, और वो जो आंखें मिली थी, जो नजरें मिली थी ना, उस मिलती हुई नजरों के एहसास से।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

0: मैं आसमान चूम रही हूं मोहब्बत में, तो लोग ख्वाहिश का दामन फैलाकर ऐसे ही चांद तारे समेट लेना चाहते हैं। मगर जब किसी के मुट्ठी भर ख्वाब भी अंजाम तक ना पहुंचे तो बाकी रह जाती है अजीब सी उलझन। हालांकि अभी उस उलझन का वक्त नहीं आया है। उलझन तो कभी कभी खुशफहमी में भी पैदा हो जाती है। किसी को देखा, कुछ महसूस हुआ, लगा कि कुछ हो गया है और फिर कई तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं मन में। कभी कभी ऐसा सवाल भी आता है, कैसा ऐसा
1: तुम।

10:54 और 38 सेकंड हो भी चुके हैं और इसलिए हम जाएंगे तो, लेकिन फिर आ जाएंगे आपसे, फिर से वही कहेंगे कि अगर आपको नींद आ रही हो तो आप सो जाइए, हम लौटेंगे। लेकिन आज हम रोकेंगे आपको, थोड़ी देर ठहरिए, कुछ खास। अक्सर हम चीजों को खास कर लेते हैं, वो होती नहीं है बहुत उतनी खास, बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत से दिवस हम अपने जो पारिवारिक संबंधों को लेकर बनाते हैं, रिश्तों को लेकर बनाते हैं। तो ऐसे ही मुझे लगा कि शायद इस पर कुछ बात हो, कुछ आप तक पहुंचाएं। बदस्तूर सुकून पाने के लिए इंसान अक्सर बहुत सारी चीज़ें तलाश करता है, असल में हम सहारों की भी तलाश करते हैं और अक्सर भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा सहारा घर के उस शख्स की मौजूदगी है जिसे हम पिता कहते हैं। पिता वो मुनासिब साया है जो हर कठिन घड़ी में हमारी हिफाजत के लिए चादर बिछा देता है। वो ताकत एक ऐसी है जो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन खामोशी से काम करने वाली ताकत है, मगर हर मोड़ पर हमारी

रहनुमाई करने वाली ताकत है। बचपन में चाहे वो डांट हो, उसमें भी मोहब्बत का अक्स होता है और उसकी हंसी में दुनिया की रोशनी भी होती है। हमें जिंदगी के हर इम्तिहान में रास्ता मिलता है। कभी वो हमें सीढ़ियां चलना सिखाते हैं, कभी हवा में उड़ाकर भरोसा दिलाते हैं, और उनकी छोटी छोटी कुर्बानियां नजर नहीं आती, मगर यही हमारी तालीम, इज्जत और शख्सियत का बुनियादी हिस्सा बन जाती है। एक पिता की मौजूदगी न सिर्फ परवरिश है बल्कि अमानत भी है, और हमें उसका हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। जो गाना आप तक पहुंचेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, उसके हर अल्फाज को महसूस कीजिएगा। अगर रिश्तों में ये रिश्ता बाकी है तो उसकी इज्जत भी कीजिए और ईश्वर का धन्यवाद भी दीजिए। क्योंकि एक शेर मुझे याद आ गया, इससे पहले कि लौटूं जाऊं मैं एक शेर सुना दूं कि यतीमी साथ लाती है जमाने भर की तकलीफें, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। लौटेंगे थोड़ी देर में।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: नमस्कार, रात के 11 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। इससे उत्तर प्रदेश के 2.17 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए। उनके खाते में 4,352.40 करोड़ रुपए की सम्मान निधि आई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी स्थित आयुक्त सभागार में इस कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। अमरोहा में आज जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नितिन गौड़ की अध्यक्षता में तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजस्व विभाग की 7, पुलिस विभाग की 1, नगर पालिका की 1, विद्युत की 2, पिछड़ा वर्ग कल्याण

की एक, पंचायत राज की एक और जल निगम की एक सहित कुल 14 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। भूमि संबंधी मामलों में पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर भेजा गया। दिवस में अनुपस्थित रहने पर डीएम ने जिला गन्ना अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियंता नलकूप और सहायक अभियंता लघु सिंचाई का स्पष्टीकरण जारी करने के साथ शीघ्रता से जवाब देने के निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी विश्व योग दिवस पर प्रदेश में योग कार्यक्रमों का आयोजन कर योग से निरोग के संदेश के साथ जन जन को योग से जोड़ेगी। विश्व योग दिवस रविवार 21 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक तथा प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में जनमानस के साथ योग करके विश्व योग दिवस मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मंडल स्तर पर विश्व योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित करेगी। पर्यावरण वन मंत्री केपी मलिक ने मेरठ व सहारनपुर मंडल के वन अधिकारियों के साथ वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 और एक पेड़ मां के नाम तैयारी समीक्षा बैठक की गई। प्रेसवार्ता में वन मंत्री केपी मलिक ने बताया कि मेरठ मंडल की वन विभाग की 52 और सहारनपुर मंडल की 38 पौधशालाओं में उच्च गुणवत्ता की पौध उपलब्ध है। वन मंत्री केपी मलिक द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मार्ग पटरी पर छायादार और फलदार पौधों का रोपण किया जाए तथा वृक्षों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए सुरक्षा लिए तारबंदी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और वृक्षारोपण में महिला समूह, स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रेरित करते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम में अधिक से अधिक जोड़ने एवं सहभागिता का प्रयास किया जाए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

कुछ ना किसी से बोलेंगे, तन्हाई में रो लेंगे। हम बेरहबरों का क्या साथ किसी के हो लेंगे, खुद तो हुए रुसवा लेकिन तेरे भेद ना खोलेंगे। जीवन जहर भरा सागर, कब तक अमृत खोलेंगे। नींद तो क्या आएगी फराज, मौत आई तो सो लेंगे। आज फिर किसी ने मन की बात को दिल की दहलीज पर ही रोक लिया है शायद। अंधेरी हो रही है मोहब्बत की दुनिया, लेकिन कहीं से कोई रोशनी आई कि ऐसा लगता नहीं है। कोई खिड़की, कोई दरवाजा, साफ हवा के लिए कोई झरोखा दिखाई नहीं दे रहा। सवाल तो मन में उठते हैं लेकिन उसकी भी जवाब नहीं मिलते। अपने इर्द गिर्द देखता हूं तो बहुत से सवालों के जवाब दम तोड़ते हुए मेरे इर्द गिर्द फर्श पर बिखरे पड़े हैं ऐसा लगता है। रात के 11:05 हो चुके हैं। बिखरे हुए इसी अरमानों का जो मलबा है उसी को समेटने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपका दर्दमंद दोस्त अनवारुल हसन।

0: मन में बहुत से ख्याल आते हैं कभी कभी, और हम उन ख्यालों को लेकर कहीं पहुंच जाते हैं कभी कभी कुछ पाने की हसरत में। वैसे ही जैसे मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं आज, इस उम्मीद में कि कभी दरवाजा नहीं तो ये खिड़कियां तो खुलेंगी, और तब शायद वो बात जो मन में रह गई है एक फांस की तरह, वो कह पाऊंगा तुमसे। कुछ मांगने नहीं आया, सिर्फ एक चाहत की खिड़की खुल जाए, एक मुस्कुराहट, एक नजर, एक बेनाम पनाह, बस बस इतना ही काफी है। अगर तुम चाहो तो अपने हाथ से एक छोटी सी दुआ भेज देना मेरे लिए, तो वो दुआ मेरे सफर को रोशन कर देगी। जिंदगी के इस मोड़ पर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मुझे अपने दिल के अंदर एक छोटा सा मुकाम दे देना, जहां शायद आराम से, खामोशी से कुछ अल्फाज बुन सकूं और शायद तुम तक पहुंचा पाऊं। इसी उम्मीद में, इसी ख्वाहिश में बार बार आता हूं तुम्हारे दर पर।
1: बाबा

तुम्हें लगा था कि तुमने छुपा ली है हर बात, लेकिन सब कुछ पता था मुझे। कई बार दिल में ऐसे राज दफन रह जाते हैं जिन्हें हम सिर्फ खामोशी में पालते रहते हैं। वही खामोशी आज टूटती हुई दिखाई देती है, जुबां पर आ जाती है अक्सर वो बात जो दिल के तहखाने में कहीं छुपा कर रखी थी। नाम नहीं लिया जाता किसी का, मगर हर अल्फाज में उसकी याद का साया बसा होता है। कुछ यादें ऐसी होती हैं कि वक्त उन्हें मिटा नहीं पाता, बस चेहरे पर मुस्कान की एक नर्म परत ओढ़ लेते हैं हम। क्या करें, शिकवा नहीं बस अफसाना रह जाता है, अधूरा लेकिन सच्चा। और अब जब ये जुबान तक पहुंच ही गया है तो शायद कुछ बोझ हल्का हो जाए, कुछ जख्म हो सकता है और गहरे बन जाए। लेकिन खामोशी भी कभी कभी इब्तिदा होती है जुबान की आजादी की और एक दास्तान की भी, वो दास्तान जो छुपा रखी है सीने में कहीं। 11:18:47 ऐसे ही वो अफसाने जो दफन है दिल की गहराई में, ढूंढ रहा हूं उनसे पहचानने के लिए। मैं रजनीगंधा में आज आपका दर्दमंद दोस्त जी हां अनवारुल हसन, और कौन।

अंगड़ाई पर अंगड़ाई लेती है रात जुदाई की, तुम क्या समझो तुम क्या जानो बात मेरी तन्हाई की। कौन स्याही घोल रहा था वक्त के बहते दरिया में, मैंने आंख झुकी देखी है आज किसी हर जाई की। उड़ते उड़ते आस का पंछी दूर उफक में डूब गया, रोते रोते बैठ गई आवाज किसी सौदाई की।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे।

कुछ मुसाफिर जिंदगी के सफर में ऐसे होते हैं जिनका साथ सिर्फ एक मोड़ तक ही मुकर्रर होता है। हमारी दास्तान मोहब्बत भी उसी मुकाम पर आ पहुंची है जहां हर लफ्ज बेमानी और हर खामोशी सजा बन चुकी है। बेहतर यही है कि अगर ऐसा मुकाम आ जाए तो फिर खामोशी अख्तियार कर ली जाए। खंडहर बचे हैं, इमारत नहीं रही। अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही। कैसी मशालें लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही।

मैं समय हूं और मैं हरीश बिमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

11:55 और 42 सेकंड हो चुके हैं और अब रजनीगंधा से इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है। बहुत खूबसूरती के साथ आपने हमारा साथ दिया है और ऐसी ही खूबसूरती के साथ आपको नींद आए सुबह तक, बहुत आराम के साथ यही दुआ है। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए अनवारुल हसन को, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।

नमस्कार, रात के 12 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। अयोध्या में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा जनपद के 13 परीक्षा केंद्रों पर एक ही पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक संपन्न होगी। परीक्षा में कुल 5,214 अभ्यर्थी शामिल होंगे। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक एक मजिस्ट्रेट तथा पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए 65 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा नवोदय विद्यालय के प्राचार्य श्री के मिश्रा को परीक्षा का सिटी कोऑर्डिनेटर नामित किया गया है। प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। जनपद उन्नाव में आज कृषि विभाग द्वारा कृषि प्रसार प्रांगण में प्राकृतिक खेती व जनपद स्तरीय तिलहन मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सदर विधायक पंकज गुप्ता ने किया। इस अवसर पर विधायक पंकज गुप्ता ने मेले में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रही है। प्राकृतिक खेती समय की मांग है, जिससे उत्पादन लागत कम होगी तथा किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने किसानों से कृषि विभाग की सभी योजनाओं का लाभ उठाकर आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान पर खाद्य तेल एवं ईंधन संरक्षण तथा स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाराणसी में भाजपा महानगर कार्यालय गुलाबबाग में हेल्दी फाइबर एवं प्रोटीन युक्त सामूहिक सहभोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष कुसुम सिंह पटेल ने किया। सहभोज में बाटी चोखा, चावल, दाल, खीर एवं सलाद सहित पौष्टिक व्यंजन परोसे गए। भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने कहा कि खाद्य तेल एवं ईंधन की बचत आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा संतुलित भोजन स्वस्थ समाज के निर्माण का आधार है। अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:13 पर, सूर्यास्त शाम 7:02 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार। 100.7 MHz पर आकाशवाणी FM रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 12:24 हो रहे हैं। हमारी यह सभा संपन्न होती है। प्रातः 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।